सुप्रभात। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज गुरुवार है। 1948 के श्रावण मास की 15वीं तिथि तदनुसार 6 अगस्त 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। अब आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयंबटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, उड़ीसा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन, सुखी और सार्थक जीवन। वाचन स्वर है विभूति भूषण भट्ट का।
3: रामचरितमानस के अंतिम अध्याय में एक प्रसंग आया है। पक्षीराज गरुड़ काक भूषणी से पूछते हैं कि आपने हजार योनियों में जन्म लिया है, इनमें सबसे उत्तम योनि कौन सी है। काक भूषणी का उत्तर था कि इनमें से मनुष्य योनि सबसे उत्तम है। मनुष्य योनि के सर्वोत्तम होने के जो कारण काक भूषणी ने गिनाए, उन्हें सुनकर न जाने क्यों पक्षीराज की जिज्ञासा शांत हो गई। उन्हें फिर पूछना चाहिए था कि मानव योनि पाकर क्या मनुष्य अन्य जीव जंतुओं का जीवन जीने के लिए अभिशप्त नहीं है, और यदि है तो इसका उपाय क्या है। संभवतः तुलसीदास जी के युग में मनुष्य योनि एक वरदान ही रहा होगा। उसे देखकर तो यही लगता है कि मनुष्य जीवन की अपेक्षा अन्य प्राणियों का जीवन कहीं अधिक सुखी और सुरक्षित है। बाह्य जगत की आपाधापी और अंतर मन का द्वंद्व आज मनुष्य जीवन के अनिवार्य तत्व बन चुके हैं। इन तत्वों के मिश्रित प्रभाव से उपजे काम, क्रोध, मद, लोभ उसकी नियति बन गए हैं। इनके वशीभूत वो अपनी जीवन नैया को उस दिशा में ले चलता है जहां क्षणिक सुख तो उसे मिल जाता है, लेकिन अंततः पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। ये पछतावा बीते समय को वापस नहीं ला सकता, फिर पछताने से क्या लाभ। सांप जब निकल गया तो रस्सी पीटने से क्या लाभ। मनुष्य योनि मोक्ष प्राप्ति यानी अनंत सुख प्राप्त करने की अंतिम सीढ़ी है। इस सीढ़ी तक पहुंचने के बाद यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को भूलता नहीं तो इंद्रिय सुखों को तुच्छ जानकर वो उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता, और इनसे दूर रहकर आचार, विचार, आहार, संयम और नियम के अनुशासन में बंध कर वो अपने प्रत्येक कर्म को संचालित करता है। ये अनुशासन उसे आत्मानुभूति कराता है कि वो अपने में ही संपूर्ण इकाई नहीं है, वरन वो समाज का एक अंग मात्र है। शरीर तो पूरा प्राणी जगत है, मानव जगत ही नहीं, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पूरा प्राणी जगत का वो एक हिस्सा है। यही है वो अनुभूत जो जीवन को सुखी और सार्थक बनाती है। यही है वो अनुभूत जो मनुष्य को स्वकेंद्रित यानि स्वार्थी होने से बचाती है। समाज के हित में स्व का हित तलाशने की सीख देती है। जीवन का सुख और जीवन की सार्थकता भी इसी अनुभूति में निहित है। इस अनुभूति की प्राप्ति के लिए किसी कठिन जप तप की आवश्यकता नहीं। हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों ने जप तप के कष्टदायक कठिन मार्ग पर चलकर हमारे लिए बहुत ही सुगम मार्ग ढूंढ निकाला है। वो मार्ग है आचार, विचार, आहार, संयम और नियम के अनुशासन को अपने जीवन में उतारने का। जिसने अपने जीवन में इसे उतार लिया, उसे सहज में ही वो सब कुछ मिल जाता है जो ऋषि मुनियों को कठिन तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, सुखी और सार्थक जीवन। वाचन स्वर था विभूति भूषण भट्ट का। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस मातृ वंदना के साथ।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, कर्म को प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं अपने प्रयासों से अपनी पहचान बनाता है। जीवन में अनेक चुनौतियां आती हैं, व्यक्ति की परीक्षा भी लेती हैं। परिस्थितियां किसी व्यक्ति का भविष्य तय नहीं करती, बल्कि उन परिस्थितियों में किए गए उसके कर्म उसकी वास्तविक पहचान और सफलता का आधार बनते हैं। उदित नारायण के स्वर में कार्यक्रम का ये अगला भजन।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। हेमंत पाठक के स्वर में प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंतिम भजन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है ये, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित।

हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक माया नगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस माया नगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा और रात 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज सुबह 7:30 पर शैल संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे रेशमा के गाए जौन सारे लोकगीत। संगत कलाकार होंगे ढोलक पर नानक चंद, दमाऊ पर हेमचंद, हारमोनियम पर अनुज और ढोल पर प्रेमदास। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9 बजे। सुबह 10:02 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज सुबह 10:35 पर हम आपको सुनवाएंगे समूह स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। आज दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा सुनीता भारती के गाए भजन, जिसमें तबले पर मदन लाल जड्डा, बांसुरी पर महेश चंद और हारमोनियम पर मनीष कुमार शाह संगत करेंगे। आज रात 8:15 पर स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में सुनिएगा स्तनपान माँ और बच्चे के लिए ज़रूरी विषय पर डॉक्टर राधिका रतूरी से रमेश चंद्रा की बातचीत। दोपहर 12:30 का समय रहेगा महिलाओं के दैनिक कार्यक्रम महिला जगत का। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर और शाम 5:45 पर सुनिएगा पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का खास कार्यक्रम ग्राम जगत। किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत शाम 7 बजे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 9:05 पर सदाबहार फिल्मी गीतों में। सुबह 10:12 पर सुबह 11 बजे व्हाट्सएप फरमाइश में, दोपहर 1:15 पर, दोपहर 3:02 पर, शाम 7:40 पर और रात 8:30 पर। सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा आज दोपहर 2:30 पर। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून।

0: सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। संसदा षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमं सर्वोच्चन्यायालयस्य संशोधनविधेयकं पारितम्, यत् चर्चोत्तरं राज्यसभया तत् पुनः लोकसभायै प्रेषितम्। लोकसभया एतद् विधेयकं गत सोमवासरे एव पारितम्। अनेन विधेयकेन भारतस्य मुख्य न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या वर्तमानात् 33 इत्यतः 37 यावत् वर्धयितुं सर्वोच्चन्यायालयाधिनियमः 55-1900 इत्यस्मिन् संशोधनं भवति। लोकसभया बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं 20-26 इति पारितम्। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं बैंक अभिलेखानां साक्ष्य संबद्ध नियमं आधुनिकीकांकीय बैंकिंग व्यवस्थया सह अनुकूलयितुमस्ति। विधेयके प्रावधानमस्ति यत् बैंक अभिलेख

0: इतिहासस्य वैद्युतिकः उतवा आंकिकीयाभिलेखः साक्ष्यरूपेण ग्रहीयः वैधः तथा विधितः प्रवर्तनीयः भविष्यति। लोकसभायाः कार्यम् अपराह्णे द्विवादने प्रथम स्थगनानन्तरं पुनः समारब्धे सति केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एतत् विधेयकं प्रास्तौत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान् यत् भारते कथाकथनस्य समृद्धा परंपरा तथा सृजनात्मक प्रतिभायाः विपुलः निधिः वर्तते, यस्य उपयोगेन भारतं वैश्विक सामग्री निर्माणस्य प्रमुख केन्द्र रूपेण विकसितुं शक्यते। असौ सामाजिक संचार पटले संसूचितवान् यत् नवदिल्ल्यां नेटफ्लिक्स इत्यस्य सह मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा टेड सैरंडोज इत्यनेन सह असौ मेलनं कृतवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् तयोः मध्ये भारतस्य मनोरंजन क्षेत्रस्य विशाल संभावना विषये अपि विस्तृतः विचार विमर्शः अभवत्। विश्वस्य प्रमुख सामाजिक माध्यम मञ्चानां मूल संस्थायाः मेटा इत्यस्य मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा मार्क जुकरबर्ग इत्यनेन बाल यौन शोषण सामग्री तदनुषंगिक सामग्री कृत्रिमतया निर्मित सामग्री चेत्येषु अथ मंच संचालने च जात दोषान् अधिकृत्य भारत प्रशासनात् क्षमा याचिता। सूत्राणाम् अनुसारं मेटा संस्थया स्वीकृतं यत् केषाञ्चन प्रकाराणां सामग्रीणां प्रचाराय बहुधनराशिः व्ययिता आसीत्। भारत प्रशासनेन मेटा संस्थायै एतत् स्पष्टीकृतं यत् सा मध्यस्थ परिभाषायाः अन्तर्गतं न आयाति, यतः सा संस्था एव निर्धारयति यत् का सामग्री कस्मै प्रेषणीया इति। मेटा संस्थया स्वदोषः स्वीकृतः तथा तस्मिन् विषये दुःखं च व्यक्तम्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं अफ्रीका देशहि सह समावेशिनम् आवश्यकताधारितञ्च विकास सहयोगं समर्थयति, यत् स्थानीय सामर्थ्यं सुदृढीकृत्य राष्ट्रीय प्राथमिकतानां पूर्तौ सहायकं भवति। ह्यः नवदिल्ल्यां अफ्रीका दिवसावसरे अवदत् यत् अफ्रीका देशानां प्रमुख व्यापार निवेश सहभागीषु भारतमपि अन्यतमम् अस्ति इति गौरवस्य विषयो वर्तते। गतवर्षे उभयोरपि मध्ये 93 अर्ब डॉलर मितः द्विपक्षीय व्यापारः जातः। सः एतदपि अवदत् यत् अफ्रीका देशेषु भारतस्य निवेशः आहत्य 80 अर्ब डॉलर मिताधिकः जातः, येन भारतं तत्रत्य प्रमुख निवेशक देशेषु अन्यतमं जातम्। हॉकी क्रीडायां षोडश भारत कनिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायाः डिवीजन ए इत्यस्य उपांत्य चरणे उड़ीसा पंजाब झारखंड मध्यप्रदेश राज्यानां दलानि प्रवेशं कृतानि। तमिलनाडु राज्यस्य कोयम्बतूर नगरे ह्यः सम्पन्नेषु प्रागुपांत्य चक्रे पंजाब दलेन कर्नाटक दलं 5-2, उड़ीसा दलेन हरियाणा दलं 5-1, झारखंड दलेन समतायाः अनन्तरं शूटआउट पद्धत्या उत्तर प्रदेश दलं अथ मध्य प्रदेश दलेन दादर नागर हवेली दमन दीव दलं च 7-3 इत्यंकांतरालेन पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सैरंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। श्री मोदी ने श्री टेड के साथ मीडिया और मनोरंजन केंद्र पर चर्चा की। नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा की गई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
2: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीकास।
3: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा।

0: भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी संभव संसाधनों को जुटाना सुनिश्चित किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहड़ी ने कहा कि ध्यान चिकित्सा उपचार पर नहीं बल्कि देखभाल पर केंद्रित है और देखभाल उपचार से कहीं अधिक व्यापक है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन ने आगाह किया है कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि बेहद गंभीर मामलों में इलाज जारी रहेगा। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and extraordinary pool of creative talent which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Meanwhile, Netflix India said that during the meeting, the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. The streaming platform also announced the launch of the Netflix India Storytelling Initiative, an investment aimed at nurturing the next generation of India's creative talent through skilling and education partnerships with the Indian Institute of Creative Technologies and the National Film Development Corporation. India has urged Sri Lanka to cooperate in the early release of Indian fishermen and their boats detained by its authorities while retaining

0: अभी आप सुन रहे थे शीर्षक गीत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार उत्तराखंड में ईपीएफओ के क्षेत्रीय व जिला कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवी आशी पुरुषोत्तम ने राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण पर फीडबैक लिया। 19 लाख मतदाताओं को भेजे गए नोटिस। सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने राज्य में निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं की समीक्षा की। 30 सितंबर तक लंबित परियोजनाओं का निर्माण हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। और कांवड़ मेले में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, अब तक 1,80,00,000 शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर रवाना हुए। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह, और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अलग क्षेत्रीय व जिला कार्यालयों की स्थापना के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। केंद्र श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने मुख्यमंत्री को

0: भेजे पत्र में कहा है कि राज्य के सभी सुझावों और मांगों पर ईपीएफओ के प्रचलित मानकों और नीतियों के अनुरूप गंभीरता से विचार किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ईपीएफओ सुविधाओं के विस्तार से कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बेहतर व सुगम सेवाएं मिलेंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ वीवीआर श्री पुरुषोत्तम ने देहरादून में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रगति की समीक्षा कर फीडबैक लिया। उन्होंने बताया कि अब तक 24 लाख नोटिस में से लगभग 19 लाख यानी 77% नोटिस बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं। इसके अलावा फॉर्म 6 के 93,000 से अधिक आवेदन, फॉर्म 7 के 1,39,000 और फॉर्म 8 के 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एसआईआर के दौरान किसी भी नागरिक को अनावश्यक परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने प्रदेश में एसआईआर के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
1: पूरे प्रदेश में एसआईआर का जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में 71,33,000 व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। उसके उपरांत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं और एनोमलीज है उसको चिन्हित किया गया। चिन्हित डेटा के अनुसार पूरे प्रदेश में 19,30,000 एनोमलीज आइडेंटिफाई किया गया है और 5,50,000 व्यक्तियों का मैपिंग न होने के कारण उनको नोटिस इशू किया गया है। वर्तमान तक पूरे प्रदेश में 77% नोटिस को रिसीव और डिलीवरी का रिपोर्ट को प्राप्त हो गया है और उनका सुनवाई का कार्रवाई भी अभी चल रहा है। सभी जनपदों में 1 अगस्त से लेकर अभी 3 सितंबर तक सुनवाई की डेट सुनिश्चित किया गया है।
0: उधर अल्मोड़ा में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के प्रभावी क्रियान्वयन और सुनवाई प्रक्रिया की समीक्षा को लेकर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद दुमका ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में एसआईआर की प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से विस्तृत विचार विमर्श किया गया। श्री दुमका ने जिले में एसआईआर के तहत किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से मतदाता सूची को 100% शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन पात्र मतदाताओं का नाम प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे 13 अगस्त से पहले निर्धारित प्रपत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा कर दें।
2: एसआईआर के तीनों चरणों में अनुभव जनपद में अच्छा कार्य हुआ है। जनप्रतिनिधि ने एसआईआर के तीन चरणों में सुनवाई को लेकर कुछ इश्यूज रेज किए थे, उसका हमने समाधान किया है और साथ ही समस्त मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ कि सुनवाई के दौरान जो जरूरी दस्तावेज है उनमें से कुछ दस्तावेज लेकर के अपने या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बीएलओ को और या हमारे जो बूथ पर बैठे हुए एईआरओज हैं उनको अपने दस्तावेज उपलब्ध करा दें। ऐसे मतदाता जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वो 13 अगस्त से पहले पहले अपना फॉर्म 6 ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जमा कर दें ताकि उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके।
0: देहरादून के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में बेरोजगार युवाओं की को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 अगस्त को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित निजी कंपनियां 559 रिक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर चयन करेगी। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का कार्यालय में पंजीकरण शुरू हो चुका है। अभ्यर्थियों को बायोडेटा, शैक्षिक प्रमाण पत्र, सेवायोजन पंजीयन कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो और वैध पहचान पत्र के साथ पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं से समय रहते पंजीकरण कर रोजगार मेले का लाभ उठाने की अपील की है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने सचिवालय में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्य में निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं और विकासकों को 30 सितंबर तक लंबित परियोजनाओं का निर्माण हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत राज्य में अब तक 6,464 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। और लाभार्थियों को इसका कब्जा सौंपने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बैठक में लंबित परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष चर्चा की गई। सचिव आवास ने लंबित परियोजनाओं की नियमित निगरानी, साप्ताहिक समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को गंभीरता से लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को समय पर सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कांवड़ मेले में अब तक हरिद्वार आने वाले शिव भक्तों की संख्या का आंकड़ा 1,80,00,000 के पार पहुंच गया है। मेले में के सातवें दिन कल लगभग 37,30,000 शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। वहीं श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी लगातार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रमुख स्नान घाटों, कांवड़ मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में सलाहकार समिति की बैठक में शिक्षक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन और शिक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण केवल औपचारिकता न होकर व्यावहारिक होनी चाहिए ताकि उसका प्रभाव विद्यालयों की कक्षाओं में दिखाई दे। जिलाधिकारी ने मॉडल विद्यालयों में विकास, स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षण और समयबद्ध अवसंरचना विकास पर विशेष जोर दिया।
4: इसमें काफी चीजों पे चर्चा हुई कि किस प्रकार से हम जो हमारा एजुकेशन है उसको ज्यादा रोजगार परक बना सकते हैं और इसका एक रिव्यू भी लगातार होता रहे। जितनी भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद ऐसा नहीं है ट्रेनिंग देकर हम टीचर्स को छोड़ दें, रादर उसका हम फॉलोअप भी हमें करना चाहिए। और साथ में जैसे हमारी जो लोकल लैंग्वेज है गढ़वाली लैंग्वेज, उसके लिए भी यहाँ पे डिसाइड हुआ कि जो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक उसकी बुक्स भी सभी प्राइमरी स्कूल्स को दी जाएंगी और बैगलेस डे के दिन उसको पढ़ाया भी जाएगा बच्चों को। इसी तरह से बहुत सारे और भी सजेशन, जैसे हमारे कुछ मॉडल स्कूल्स बनाने के संबंध में भी निर्णय लिया गया, तो उसकी जो हैंड होल्डिंग है या जो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन वाला काम है वो डाइट के माध्यम से कराया जाएगा। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि बेस्ट ढंग से किस प्रकार से हम लोग डाइट को यूज कर सकते हैं अपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए।
0: जिलाधिकारी ने संस्थान परिसर का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और छात्रावास, पेयजल, महिला शौचालय, भवन रखरखाव तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं में शीघ्र सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार उत्तराखंड में ईपीएफओ के क्षेत्रीय व जिला कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवी आशीपुरुषोत्तम ने राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण पर फीडबैक लिया। 19 लाख मतदाताओं को भेजे गए नोटिस। सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने राज्य में निर्माणाधीन आवासीय परियोजना की समीक्षा की। 30 सितंबर तक लंबित परियोजनाओं का निर्माण हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। और कांवड़ मेले में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, अब तक 1,80,00,000 शिव भक्तों हरिद्वार में से गंगा जल लेकर रवाना हुए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शैल संगीत। शैल संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए रेशमा के गाए जौन सारी लोकगीत। संगत कलाकार हैं ढोलक पर नानक चंद, दमाऊ पर हेमचंद, हारमोनियम पर अनुज और ढोल पर प्रेमदास।

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में, क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: शैल संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं रेशमा के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: शैल संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रेशमा के गाए जौनसारी लोकगीत। संगत कलाकार थे ढोलक पर नानक चंद, दमाऊ पर हेमचंद, हारमोनियम पर अनुज और ढोल पर प्रेमदास। यह आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 8 बज रहे हैं, सुनिए समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी

0: अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
2: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
3: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्रनाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र

0: के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 2400 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण

0: वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्र हित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती है महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दिन महीना साल गर्मी आंधी तूफान बरसात कुछ भी क्यों ना हो, ये दिल जो है ये आपके लिए धड़कता है। ये चाहता है कि बस आपसे मिलने के लिए पहुंच जाए। देखिए ना, गुरुवार की सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून लेकर। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। साथ ही स्वीकार कीजिए संगीता सेमवाल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, उत्तराखंड में मानसून अपने पूरे रंग में है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में कहीं कहीं ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। बस आप थोड़ी सी सावधानी बरतें, यदि आवश्यक ना हो तो अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम विभाग और जिला प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। वैसे श्रोताओं, हर मौसम का अपना एक रंग होता है, अपना एक संगीत होता है ना? और श्रोताओं, बरसात का भी अपना एक खूबसूरत रंग होता है। तो बिल्कुल मौसम का आनंद लीजिए नमस्कार देहरादून कार्यक्रम के साथ।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, आज के नमस्कार देहरादून कार्यक्रम में आप सुनेंगे हस्तशिल्प और खादी की महत्ता पर जानकारी देंगे डॉक्टर संजीव रॉय, निदेशक खादी और

प्रमोदक आयोग देहरादून। अलाविन की आप सुनेंगे हिरोशिमा दिवस पर बातचीत श्री अभिषेक दीक्षित, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज परोटीवाला देहरादून। और अब विजय सुनिए चाय की चुस्कियों के साथ अखबारों की सुर्खियां। दून की बदलेगी रफ्तार, हर सफर होगा हरित। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राज्य को कुल 137 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। 11 अगस्त को सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेला, 559 को नौकरी का मौका। मसूरी और नैनीताल में भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने का प्रस्ताव। और देहरादून रामनगर एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन हुआ शुरू। और अब मौसम। मौसम विभाग ने आज देहरादून, चमोली, बागेश्वर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए देहरादून के जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 12 तक व आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। देहरादून में आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये थी अखबारों की सुर्खियां। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

0: शताओ, हैंडलूम यानी हथकरघा हमारे भारत की विश्व प्रसिद्ध विरासत है, जिसे पूरी दुनिया में सराहा जाता है। हथकरघे से बने कपड़े जैसे आंध्र प्रदेश की कलमकारी, गुजरात की बांधनी, तमिलनाडु की कांचीवरम साड़ी, उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी, असम की मोगा सिल्क, ये सभी भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा की अमूल्य धरोहर है। और श्रोताओं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को आत्मसम्मान और स्वावलंबन का माध्यम भी बताया था। कल श्रोताओं, देश 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर देश भर के बुनकरों को सम्मानित किया जाएगा। तो बिल्कुल, हमारे गौरवशाली देश की पहचान है हमारा हथकरघा। इसी विषय पर हमें और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संजीव रॉय, निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग देहरादून। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हथकरघा से हम क्या समझें। अक्सर लोग खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को एक ही मान लेते हैं। कृपया इन तीनों के बीच का अंतर भी सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए।
1: मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि हथकरघा यानी कपड़ा जो हाथ से बुना गया हो, मशीन से नहीं, इसे हम लोग हथकरघा कह सकते हैं। खादी की अगर परिभाषा देखें, यानी जिसका धागा भी हाथ से बनाया गया हो और कपड़ा भी हाथ से बनाया गया है, इसे हम लोग खादी कहते हैं। और अगर हस्तशिल्प के बारे में कहना चाहेंगे तो हस्तशिल्प यानी हाथ से बनी गई कोई भी चीजें, जैसे मिट्टी के बर्तन हो, लकड़ी की वस्तुएं हो, पेंटिंग हो, कढ़ाई इत्यादि, ये हस्तशिल्प के वस्तुएं होते हैं।
0: समय की कमी और मशीनी उत्पाद के चलते हथकरघा का जो काम है वो प्रभावित हुआ है, उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है?
1: मशीनों के तुलना हथकरघा जरूर प्रभावित हुआ है, परंतु हथकरघा का एक अलग ही बाजारों में मूल्य है। जैसे मैं अगर खादी की बात कहूँ तो खादी सिर्फ एक वस्त्र ही नहीं, बल्कि ग्रामीण भागों के करोड़ों परिवारों को आज भी एक रोजगार की पहचान देती है। खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना के माध्यम से नए एवं पुराने कारीगरों को एक नई ताकत एवं आज के नए उत्पादों से निरंतर प्रयासित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वोकल फॉर लोकल के विजन से खादी को एक नई पहचान दी है, एक एवं ऊर्जा भी दी गई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंच पे बुलाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। हथकरघा की महत्ता पर हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संजीव रॉय, निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग देहरादून। श्रोताओ, बिल्कुल, भारत का हर धागा एक कहानी कहता है, हर बुनकर एक सपना बुनता है। उस सपने को श्रोताओ हम सम्मान दें, हथकरघे को अपनाएं और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ अब आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी

0: श्रोताओं, आज 6 अगस्त है। ये दिन हमें याद दिलाता है उस त्रासदी की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया। कुछ ही लम्हों में असंख्य लोगों ने अपने प्राण गंवाए और अनगिनत परिवारों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। हिरोशिमा दिवस पर हमें और जानकारी दे रहे हैं श्री अभिषेक दीक्षित, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज परोटीवाला, देहरादून। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ इस जानकारी के माध्यम से हमारे अनेकों श्रोता इससे यह जान सकेंगे कि आज का दिन किस तरह से इस विश्व इतिहास में अपना स्थान रखता है।
0: हमने अभी बात की, आज हिरोशिमा दिवस है। हिरोशिमा दिवस का वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टि से क्या महत्व है?
1: जैसा कि सब जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 को यह भयावह त्रासदी वाला दिवस था, जिसमें हिरोशिमा पर 8:15 पर प्रातःकाल सब लोग अपने काम में व्यस्त थे। उस समय यह बम गिराया गया जिसका नाम लिटिल बॉय था। यह 4400 किलोग्राम वजनी बम था और इसकी आवाज लगभग 18 से 19 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इसके कारण हिरोशिमा में 70,000 से अधिक लोग तत्काल मौत के गाल में समा गए।

0: और उसके बाद बहुत देर तक इसके शॉक वेव आते रहे और इसके विकिरण से कई वर्षों तक इसके प्रभावित लोग वहां पर मृत्यु के शिकार हुए और आज भी उस विकिरण का कहीं ना कहीं अंश उस हिरोशिमा शहर में दिखाई देता है।
1: परमाणु ऊर्जा की हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग

0: किया जाता है। आज विभिन्न देश इसके लिए अपने यहाँ परमाणु ऊर्जा के माध्यम से, न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से बिजली बना रहे हैं और परमाणु ऊर्जा से ईंधन के रूप में भी कई जगह कई कारखानों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: भारत ने परमाणु विज्ञान और शांति के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं?
0: बिल्कुल सही, इसमें भारत जो कि आप जानते हैं और पूरा विश्व जानता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और साथ में जिम्मेदार देश भी है, क्योंकि भारत जरूर परमाणु संपन्न देश है लेकिन विश्व बिरादरी ने कभी भी आज तक भारत के परमाणु बम या परमाणु जो ऊर्जा है उसको नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा, क्योंकि भारत एक बहुत ही जिम्मेदार देश भी है। तो भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में शांति के लिए स्थापित अपने कार्य करता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के कारखाने, विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर, और अब तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले विज्ञान के समय में परमाणु ऊर्जा से हमारे विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स यानी वाहनों को चलाने की भी बात चल रही है। हालांकि इसका कुछ दुष्प्रभाव है, रेडिएशन का खतरा है, लेकिन भारत का कभी भी इसकी तरफ दुष्प्रभाव या गलत वे से या गलत सोच के साथ भारत कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। इससे पूरा विश्व आश्वस्त है, जब भी भारत परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करेगा तो वह शांति के लिए ही करेगा और भारत के वैज्ञानिक इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत ने अभी अभी परमाणु क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम हासिल किया है जिसको कि पूरा विश्व देख करके अचंभित भी है। इसमें भारत ने जो हाइड्रोजन कोलाइडर है उसकी एक ऐसी स्थिति प्राप्त करी है जिससे कि बहुत बड़े बड़े इंजन, जिसको बड़े बड़े देश नहीं कर पाए हैं और उससे बहुत कम मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करके वे इंजन चलाए जा सकते हैं।
1: श्री अभिषेक दीक्षित, आज के इस विशेष दिन पर आपने परमाणु ऊर्जा को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोतागण इससे जरूर लाभान्वित होंगे और आपने हमें अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद, और मैं आकाशवाणी के माध्यम से जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं उनको यही बताना चाहूंगा कि परमाणु ऊर्जा जितना हमारे लिए नकारात्मक रूप से प्रचलित की जाती है उतना नकारात्मक ना होकर के इसको अगर हम सही वे में लें, सही तरीके से इस्तेमाल करें तो पूरे विश्व के लिए शांति का मार्ग भी परमाणु ऊर्जा से प्रशस्त हो सकता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हिरोशिमा दिवस पर जानकारी दे रहे थे श्री अभिषेक दीक्षित, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज परोटीवाला, देहरादून। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

श्रोताओ, बिल्कुल वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का। चलते चलते एक बात आपसे जरूर साझा करना चाहेंगे श्रोताओ, कि जिंदगी में ख्वाहिशों का काफिला कभी थमता नहीं है। जो हमारे पास है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। तो श्रोताओ, बिल्कुल हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। और अब कार्यक्रम समाप्त करने की संगीता सेमवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार देहरादून।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून, FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार देहरादून से प्रसारित जिले की चिट्ठी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जयवीर और आज हम बात करेंगे चंपावत जिले की चिट्ठी की, जिसमें शासन प्रशासन के कार्यों, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल आदि गतिविधियों और क्रियाकलापों की जानकारी साझा करेंगे। आलेख चंद्र बल्लभ ओली का है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत सोमवार को चंपावत जिले के ग्राम पंचायतों में उप प्रधानों और सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत जिले के सभी चारों विकास खंड के 312 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित उप प्रधानों एवं सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विकासखंड मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारियों द्वारा इन नवनियुक्त उप प्रधानों व सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। चंपावत जिले में महिला सशक्तिकरण के तहत नाबार्ड और आजीविका मिशन के सहयोग से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। जिले में जिला प्रशासन एवं ग्राम विकास विभाग के संयुक्त पहल के तहत आजीविका प्रशिक्षण संस्थान से फास्ट फूड का प्रशिक्षण प्राप्त कर 4 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 50,000 मूल्य के मोबाइल यूनिट कार्ड्स प्रदान किए गए, जिनका जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा शुभारंभ किया गया। जिले की इन 4 महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं मुख्य व्यावसायिक स्थलों जैसे यात्रा मार्गों, डिग्री कॉलेजों, अस्पतालों और राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रमुख स्थानों पर दीदी कैफे के नाम से इन मोबाइल कार्ड्स का संचालन करेंगी। इसके साथ ही जन जन की सरकार सेवा पखवाड़ा के तहत चंपावत जिले के नेपाल सीमा से सटे सीमांत गांव सील बरूड़ी में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों के साथ 15 किलोमीटर पैदल चलकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया व जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद कर समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने मुख्यतः गांव तक सड़क निर्माण की मांग प्रमुखता से रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही मुख्य अभियंता URRDA के एस के पाठक से दूरभाष पर वार्ता की, जिस पर उन्होंने कार्य शीघ्र करने की बात कही। श्रोताओं, साथ ही पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के 49 सदस्य 8वें दल को रविवार को चंपावत जिले के टनकपुर से अगले पड़ाव गूंजी पिथौरागढ़ के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व शनिवार देर शाम दल के चंपावत जिले के टनकपुर शारदा पर्यटक आवास गृह पहुंचने पर सभी श्रद्धालुओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। शनिवार देर शाम पहुंचे दल में 13 राज्यों के 49 श्रद्धालु शामिल थे, जिसमें 38 पुरुष एवं 11 महिला तीर्थयात्री शामिल हैं। यात्रा दल पर आए श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, आत्मीय अतिथि एवं प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना करते हुए इसे अस्मरणीय अनुभव बताया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की भी सराहना की। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान शहरी के तहत नगर पालिका परिषद चंपावत द्वारा कूड़े के पृथकीकरण के तहत घर घर हरा एवं नीला कूड़ादान वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष प्रेमा पांडे के निर्देशन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुपालन के तहत नगर के प्रत्येक घर से कूड़े के पृथकीकरण एवं वैज्ञानिक निस्तारण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरा एवं नीला कूड़ादान वितरण का काम किया गया। इस अवसर पर नगरवासियों को जागरूक किया गया कि जैविक अपशिष्ट अजैविक कूड़े को अलग अलग एकत्रित कर निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही निस्तारित किया जाए। साथ ही सावन माह के तीसरे सोमवार को चंपावत जिले के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर जिले के बालेश्वर, ऋषेश्वर, मानेश्वर, हरेश्वर, कांटेश्वर, सप्तेश्वर, पंचेश्वर, रामेश्वर आदि शिव मंदिरों में भक्तों ने दूध, गंगा जल से जलाभिषेक कर फूल, धतूरे, बिलपत्र से पूजा अर्चना और सुख समृद्धि की कामना की। चंपावत जिले में शिव के अनेकों मंदिर विराजमान हैं, जिनका पुराणों में भी जिक्र किया गया है। मान्यता है कि सावन के महीने में जिले के सप्तेश्वर वाले मंदिरों की पूजा अर्चना करने से सप्तकोशी परिक्रमा के बराबर पुण्य का फल मिलता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उदयमान उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 3 अगस्त को चंपावत जिले में जिला स्तरीय बालक वर्ग चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। जिले के गोरलचौड़ मैदान में आयोजित चयन ट्रायल में 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों ने प्रतिभाग किया, जिसमें जिले के चारों विकासखंडों, 3 नगर पालिकाओं एवं 2 नगर पंचायतों से 330 से अधिक प्रतिभावान खिलाड़ियों ने छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। योजना का उद्देश्य प्रदेश के प्रभावशाली खिलाड़ियों को प्रारंभिक स्तर पर आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के तौर पर तैयार करना रहा। इसके साथ ही जिले की चिट्ठी का आज का अंक समाप्त होता है। मुझे यानी जयवीर सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 9:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ। फिल्म है खुद गर्ज़।

सदाबहार फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म है महबूब की मेहंदी।

श्रोतों, प्यार का बंधन वो खूबसूरत एहसास है जो बिना किसी शर्त के दो दिलों को जोड़ता है। ये विश्वास है, सम्मान है और साथ ही वो मजबूत डोर है जो हर मुश्किल वक्त में इंसान को हिम्मत देता है। सच्चा प्यार शब्दों से ज़्यादा भावनाओं और एक दूसरे की परवाह में झलकता है। प्यार में अगर भरोसा है तो दूरी और मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। ये रिश्ता कमियों के साथ भी एक दूसरे के दिल को स्वीकार करना सिखाता है। ऐसा ही एक गीत आपको सुनाते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म है एक दूजे के लिए।

सदाबहार फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सुबह के 9:22 हुए हैं स्टूडियो क्लॉक में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म हीरो से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। जी हाँ श्रोताओं, शान से प्यार करने वाले लोग बेहद खास होते हैं। वे अपने असूलों पर जीते हैं और दिल के साफ होते हैं। किसी के सामने झुकना उन्हें पसंद नहीं, उनका स्वाभिमान ही उनके लिए सबसे ऊपर होता है। उनकी शान उनका अहंकार नहीं बल्कि उनका आत्मविश्वास है। और जब ऐसे आत्मविश्वासी लोग प्यार करते हैं तो ये

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नागिन फिल्म से। इस गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

कार्यक्रम का अगला गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म ड्रीम गर्ल से है। संगीत बत किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

सुनो, प्यार में पर्दे की अपनी एक अलग ही गहराई और संवेदनशीलता होती है, जहाँ एहसास शब्दों से ज़्यादा खामोशी और नज़रों से बयां होता है, जहाँ बातें कम और आंखें ज़्यादा बोलती हैं, मिलन से ज़्यादा इंतज़ार में एक अलग बेचैनी और अपनापन होता है। इस तरह किया गया प्यार अक्सर दिखावे से दूर रूहानी और गहरा होता है। आशा भोसले की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शिकार से।

0: कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म हंसते जख्म से, शब्द रचना कैफी आजमी की है, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की, और इस गीत को संगीत दिया है मदन मोहन ने। लीजिए, एंजॉय कीजिए इस कार्यक्रम के आखिरी गीत को।
1: हाय,

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी देहरादून है। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप सुनिए FM न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BV आशु पुरुषोत्तम ने देहरादून में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रगति की समीक्षा की। अब तक 24 लाख नोटिसों में से लगभग 19 लाख नोटिस BLO के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचाए गए। सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सचिवालय में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्य में निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं की समीक्षा की। सभी कार्यदायी संस्थाओं और विकासकों को 30 सितंबर तक लंबित परियोजनाओं का निर्माण हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। कांवड़ मेले में हरिद्वार आने वाले शिव भक्तों की संख्या का आंकड़ा 1,80,00,000 के पार पहुंचा। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने केंद्रीय औषधि भंडार चंपावत का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दवाओं के भंडारण, गुणवत्ता नियंत्रण और रिकॉर्ड व्यवस्था की गहन जांच की गई तथा गुणवत्ता परीक्षण के लिए 8 दवाओं के नमूने प्रयोगशाला भेजे गए। अल्मोड़ा जिले के राजकीय इंटर कॉलेज तड़ाकताल में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत सेवा पखवाड़ा शिविर का आयोजन। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उसका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देहरादून के क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 अगस्त को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित निजी कंपनियां 559 रिक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर चयन करेंगी। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमेली का स्थलीय निरीक्षण कर विद्यालय में संचालित शैक्षणिक और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कक्षाओं का भ्रमण कर विद्यार्थियों से संवाद किया और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। राज्य के विभिन्न जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। देहरादून, चमोली, बागेश्वर और पौड़ी में आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
0: 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:02 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। पिछले दिनों में मुझे बहुत से ऐसे ईमेल्स कॉल्स आए जिसमें लोगों ने लगभग एक जैसे प्रॉब्लम का जिक्र किया है। हम लम्हे प्रोग्राम सुन के बहुत मोटिवेटेड है, कुछ करने की ठानी है, करना शुरू भी करते हैं, पर कुछ दिनों बाद में दोबारा पहले जैसा हो जाता है। मेरा सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिसाइड करता है कि इंग्लिश बोलना सीख के रहेगा, पर कुछ ही दिनों में उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। कोई रोज़ 10 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बनाता है, पर 10 दिन भी उस पर नहीं चल पाता है। कोई अपने ब्लॉग पर काम करना शुरू करते हैं, कोई एक्सरसाइज करने की ठान लेते हैं, कोई अलग अलग रेजोल्यूशंस बनाते हैं, पर टिक नहीं पाते। हो सकता है आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा। आई थिंक ये बहुत नेचुरल है, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। फॉर इंस्टेंस, एक बार जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गया। ठीक होने के बाद रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज करने लगा, बट देन ये सब कुछ दिन चला और वापस मैं पहले के जैसा आ गया और पिछले वाली रूटीन पे आ गया। तो सवाल उठता है कि अगर हम कुछ अच्छा शुरू करते हैं तो उस पर कैसे टिके रहे, कैसा अपना मोमेंटम बनाए रखे, कैसे अपने काम को अंजाम तक पहुंचाए। सबसे पहली चीज़, काम तभी शुरू करें जब आप उसके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हो। दूसरों को देखकर या कुछ पढ़ के मोटिवेट होकर अगर आप कुछ शुरू करते हैं तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आप जल्द ही उसे छोड़ देंगे। अपनी लाइफ और अपने गोल्स को अलाइन करिए, बहुत सोच विचार करके ही कुछ काम शुरू कीजिए, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का काम हो या फिर बिजनेस स्टार्टअप करने का। शुरू करने से पहले उसके बारे में खूब सोचिए, पढ़िए, क्या यह वाकई आपके लिए ज़रूरी है, आपके इंटरेस्ट का है, ना किया तो क्या, किया तो क्या। जब अंत अंत तक लगे कि हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तभी वो काम शुरू करिए और शुरू करने के बाद उस पर पूरी तरह से फोकस रहिए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट मोटिवेशन। मेरी समझ से मोटिवेशन माइंड की एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम खुद को किसी काम को करने के लिए बहुत चार्ज्ड अप महसूस करते हैं। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि यह महज दिमाग की एक स्थिति है। एक ही इंसान बिल्कुल एक जैसा परिस्थिति में मोटिवेटेड भी फील कर सकता है और डीमोटिवेटेड भी। यानी मोटिवेशन इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर हमें मोटिवेटेड रहना है तो इंटेंशनली हमें अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना होगा, अपने थॉट्स को पढ़ना और कंट्रोल करना होगा। खुद को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए मैं अपने आप को खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए एक लम्हे प्रोग्राम लिखा था, कैसा रखना है खुद को अपने आप को पॉजिटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स के बारे में, और वो प्रोग्राम आपने सुना भी है। मोटिवेटेड होकर काम करने पर हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब हम उतने ही समय में अधिक काम कर पाते हैं। पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि अगर काम ज़रूरी हो तो हम डीमोटिवेटेड स्टेट में भी उसे कर सकते हैं, भले हमारी एफिशिएंसी थोड़ी बहुत कम हो जाए। इनफैक्ट ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ इसी स्टेट में काम करते हैं। तो जब हम डीमोटिवेटेड रहकर दूसरों के लिए काम कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं। जब आपने डिसाइड कर ही लिया कि आपको ये काम करना है तो इसका मतलब आपको ये काम करना ही है। अब काम का होना इस बात पर नहीं डिपेंड करता कि एट द मोमेंट आप मोटिवेटेड है या डीमोटिवेटेड। मैं लम्हे के लिए कई प्रोग्राम्स लिख चुका हूं दोस्तों, जिसमें हजारों कोट्स के ट्रांसलेशन भी शामिल है। व्हाट डू यू थिंक, मैं हमेशा चार्ज्ड अप और हाईली मोटिवेटेड होकर ही काम करता हूं? नो, मेनी अ टाइम्स इट बिकम्स बोरिंग एंड टीडियस, स्पेशली ट्रांसलेशन का काम। लेकिन तब भी मैं काम करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये करना मेरे लिए और मेरे प्यारे श्रोताओं यानी आपके लिए जरूरी है। इसीलिए कभी डीमोटिवेटेड होने का एक्सक्यूज मत दीजिए, काम करना है तो करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515
8255227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। फ्रेंड्स, आपने ध्यान दिया है कि ऐसा कब होता है कि हम डिमोटिवेटेड स्टेट में भी काम कर ले जाते हैं। हम ऐसा तब कर पाते हैं जब काम करने की अर्जेंसी होती है। पूरे साल मस्ती चलती है, पर एग्जाम आता है तो पढ़ाई हो जाती है। कभी

0: सुबह नहीं उठ पाते हैं, पर जब ट्रेन पकड़नी होती है तो नींद खुल जाती है। काम का होना तब पॉसिबल हो जाता है तब हमारे अंदर ऐसा करने की अर्जेंसी आ जाती है। व्हाट इज दिस अर्जेंसी? ये अर्जेंसी है क्या? अर्जेंसी दरअसल एक तरह का डर है। न पढ़ने पर फेल होने का डर, न उठने पर ट्रेन छूटने का डर। डर भी एक तरह की इमोशन है जो हमेशा बुरी नहीं होती। यह हमसे जरूर काम करा ले जाती है। तो इसका मतलब हम जो अचीव करना चाहिए, अपने अंदर जो चेंजेस लाना चाहते हैं, वो तब तेजी से आ पाएंगे जब हमारे अंदर उसे लेने की अर्जेंसी आ जाए, या यूं कहे उसके ना होने पर किसी लॉस का डर आ जाए। पर प्रॉब्लम यह है कि हम जो करना चाहते हैं उसका न होने पर हमें किसी तरह का डर नहीं दिखता। शायद हम सबकॉन्शियसली सोचते हैं कि ये तो हमारे बनाए गोल्स हैं, इसे नहीं अचीव किया तो क्या, कोई हमसे हिसाब करना थोड़ी आएगा। और नहीं, हम अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। आप ऐसा मत करिए। मैं नहीं जानता आप किस चीज से डरते हैं, पर मैं भीड़ बनने से डरता हूं। क्या आपने कभी अपने आसपास की भीड़ पर ध्यान दिया? स्टेशन से निकलते वक्त, ऑफिस जाते हुए, हजारों लोग सड़कों पर चींटियों की तरह चल जा रहे हैं। पता नहीं इस भीड़ को देखकर आप क्या सोचते होंगे, पर मैं अक्सर यही सोचता हूं कि इसे अलग कैसे हूं, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो मुझे खास बनाता है, ये मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मुझे खास बना दे। अगर मैं भी औरों की तरह विदाउट इमोशन अगर वर्क करता हूँ, रोजी रोटी के चक्कर में ही अपने लाइफ बिताता हूँ, तो मेरी अपनी नज़र में मेरे लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होगी। मुझे कुछ खास करना है, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो मेरा ही नहीं करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दे। और ऐसा करने के लिए मेरे पास इनफिनिट टाइम नहीं है। मुझे तो इस छोटी सी लाइफ में ही बहुत कुछ करना है। मैं किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं इसका इंतज़ार नहीं कर सकता कि कोई बाहर से आए और मुझे मोटिवेट करे, क्योंकि जो भी बाहर से आता है उसका भी मोटिवेशन एक हद तक ठीक रहता है, बाद में उसका भी खुद का काम होता है, वो निकल जाता है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी कुछ ढूंढना हो तो बाहर मत ढूंढिए। इसीलिए एक कहावत है, द पैराडाइज लाइज विद इन। हाँ जी, जो भी आपको चाहिए अपने में ही है। जो ऊर्जा, जो शक्ति आपको मिलना है अंदरूनी है, उसे जगाइए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। विद दिस लवली इंफॉर्मेशन, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर द मोमेंट। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:12 होने को हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कुमार सानू के साथ अलका याग्निक की आवाज़ में कार्यक्रम का पहला गीत है, फिल्म है गुलाम।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। अगला गीत है उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ में फिल्म यलगार से।

0: मेरी हमरथ, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
1: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
0: आप सुन रहे हैं FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून। सुबह के 10:30 हुए हैं, सुनिए प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप जयवीर सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राज्य के 8 जिलों में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की चेतावनी को देखते हुए देहरादून, चमोली, बागेश्वर और पौड़ी में आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास में नेपाल के कार्यवाहक राजदूत डॉ. सुरेंद्र थापा से मुलाकात कर संस्कृत के बढ़ते वैश्विक महत्व और भारत नेपाल के बीच शैक्षणिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने संस्कृत के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षण, विद्वता और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। डॉ. थापा ने संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के लिए उत्तराखंड के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से नेपाल में संस्कृत शिक्षा और अनुसंधान को नई गति मिलेगी। बैठक में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन पर भी चर्चा हुई। इससे संयुक्त अनुसंधान, शिक्षण छात्र आदान प्रदान और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के युवा शोधार्थियों और विद्वानों को संयुक्त शोध परियोजनाओं तथा प्रकाशनों के लिए प्रोत्साहित करने पर भी सहमति बनी है। पौड़ी जिले में श्रावण मास के कांवड़ मेले में नीलकंठ महादेव धाम पहुंच रहे लाखों शिव भक्तों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने विशेष निगरानी अभियान तेज कर दिया है। अभियान के तहत देहरादून से मोबाइल यूनिट टेस्टिंग लैब को लक्ष्मण झूला क्षेत्र में तैनात किया गया है। इसके माध्यम से खाद्य पदार्थों की निःशुल्क और त्वरित जाँच की जा रही है। इस सुविधा का लाभ व्यापारी और आम उपभोक्ता दोनों उठा सकते हैं। देहरादून के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 अगस्त को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित निजी कंपनियां 559 रिक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर चयन करेंगी। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का कार्यालय में पंजीकरण शुरू हो चुका है। अभ्यर्थी को बायोडेटा, शैक्षिक प्रमाण पत्र, सेवायोजन पंजीयन कार्ड, पासपोर्ट

0: कार के दो फोटो और वैध पहचान पत्र के साथ पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं से समय रहते पंजीकरण कर रोजगार मेले का लाभ उठाने की अपील की है। पिथौरागढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रभावी नियंत्रण, वैज्ञानिक कूड़ा निस्तारण और व्यापक स्वच्छता अभियान को लेकर जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक की आपूर्ति श्रृंखला तोड़ने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्लास्टिक के निर्माता, वितरक और उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध लगातार जांच व चालानी कार्यवाही करने पर जोर दिया। साथ ही इसके दुष्प्रभावों को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाते हुए सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी बात कही। जिलाधिकारी ने नगर निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण स्थलों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया विकासखंड स्थित राजकीय इंटर कॉलेज तड़ाकताल में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत सेवा पखवाड़ा शिविर लगाया गया। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविर में 954 लोगों ने भाग लिया। विभिन्न विभागों से जुड़े 191 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 182 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसके अलावा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने के साथ ही दिव्यांगजनों को मौके पर ही दिव्यांग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:35 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए समूह स्वर में गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं समूह स्वर में गाए कुमाऊनी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं समूह स्वर में गाए कुमाऊनी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, 11 बजे ही प्रस्तुत है कार्यक्रम बरसा फरमाइश। प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोताओं, बरसात का मौसम, रिमझिम बारिश की बूंदें बड़ी ही सुहावनी लगती है, पर श्रोताओं तभी अच्छी नहीं लगती जब यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसलिए बरसात के इस मौसम में अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें, स्वस्थ रहें और बारिश के मौसम का आनंद लेते रहें। आइए आपके पसंदीदा कार्यक्रम बरसा फरमाइश का आगाज करें। लेते हैं आप सभी की फरमाइश का ये पहला गीत। मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं बाला वाला देहरादून से। गणेश भारद्वाज, बिजलवान, दरबान सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह नेगी, सुरेंद्र मुंडेपी, कुलदीप रावत और साथ में लियाकत रजय वाले। मोटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता हैं जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना मन मानस और साथ में है कनिका पटेल। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्टो, रोजी पर्ल और विले से डिकेस्टो। फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है गांव भोपा जिला मुजफ्फरनगर से हैं जनेश्वर कुमार अहलुवालिया, बालेश्वर कुमार, राकेश कुमार, डुग्गू, नंदू, किट्टू, सारांश, वेदांश और साथ में चिक्कू अहलुवालिया। साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान अल्लाह, फरहान समय, राजमीन गुड़िया। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं मौलागढ़ नई बस्ती बरेली से तरन्नुम अंसारी, तरान अंसारी, अजहरुद्दीन, मोहम्मद हसन अंसारी और इनके परिवारजन। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत। आवाज़ें सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे की फिल्म का नाम है चांदनी।

कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, वर्षा सुमन और माधुरी किरण। फरमाए श्रोता हमें लिखते हैं मोहल्ला हलवाई एंड शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। साथ ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं संगम विहार रतिया मार्ग न्यू दिल्ली से रणधीर गुप्ता, धीरज परिचय गुप्ता, निश्चल गुप्ता। साथ ही फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र भाई, माला रूपा, साक्षी, कंगना और नेहा रानी। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं सहारनपुर से महफूज अहमद, फरहानाज, नबील अहमद और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोताओं ने लिख भेजी है आप है किशोर नगर अमरावती से हीरा मन शेंडे, सिद्धार्थ गोडानी। साथ ही फरमाइश श्रोता लिखते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों को फिल्म का नाम सावन को आने दो।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, मुन्ना भाई निशा, परवीन तमन्ना, आशिक हुसैन अंसारी। साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास, मानिकपुरी राजा दास और साथ में है रानी। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं बहलोर नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखबीर, काजल, लखबीर, रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदू, परवीर शीतन और सान भी इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, सुल्तानपुर यूपी से हैं यशमीत, यशुनी, रंजन सिंह, सौम्य और साथ में हैं अवीरल सिंह। और इसी गीत को सुनना चाहा है मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवांडकर, सरिता प्रिंस और एकांश गवांडकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवांडकर, सिद्धांत अर्जुन गवांडकर, साथ में इनके परिवारजन। फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आप हैं भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मस्किन, रीति का, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ और साथ में इनके परिवारजन। गांव दूलापुर जिला मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और साथ में नरगिस खातून। बीडी शहर से नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, जय श्री मैतेरे, अंजलि करवा, बाला साहब और साथ में इनके परिवारजन। इसी गीत को सुनना चाहा है गांव जगोड़ी जिला यमुनानगर से रणधीर बागड़, गुरमेज, कौरव, परवीन, युवम, बीरेन, मन कीरत और साथ में है मनराज। फरमाइश श्रोताओं ने लिख भेजी है, संबलपुर काकेर से फागू राम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिखते हैं, लक्सर रोड गांव सुवाहड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शाह नवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद सोहेब कैकश और साथ में इनका पूरा परिवार। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम पाकिसा।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने व्हाइट विल बंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव द्विवेद भूषण संस्कृति और पौरुष। साथ ही फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। साथ ही फरमाइश श्रोता लिखते हैं जिला कासगंज UP से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत और साथ में इनके बहुत सारे मित्र खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य, लाडू कोयल मल्होत्रा, इनके पापा जी हैं नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुगुर, साथ में हैं भाविक सिक्का। फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है लगान पंडेरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल और भारती बघेल। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं श्रोता आर्यनगर को का भिलाई से उत्तम सिंह जगेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और साथ में नंदिनी जगेल। धमदा गांव सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आयुषी योशिका, आदित्य और साथ में अंजलि जगेल। इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी और साथ में इनकी प्रभुलाल बागरी। बागरी मोहल्ला रटलाई झालावाड़ राजस्थान से मन भावन, नैना, सत्यरण, कपिल, शोभा और साथ में हैं फुंदीबाई बागरी। इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है आप हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपा ढींगिया। गुजरात गांधी ग्राम से परवीन सोनी, पूजा पायल और साथ में हैं जगदीश जोहरी। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल स्वर, फिल्म का नाम बरसात की रात।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना आशीष राजा चैतन्य मेगा मस्किन, पंचकुला चंडीगढ़ से राल खुराना रचिता किशोरी दान खुराना। साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप हैं लदावली मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना। फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, तेलहारा से हैं प्रकाश पोहरकार, नर्मदा और कुमारी सुजाता पोहरकार। इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है तेलंगाना राज्य कामारेड्डी जिला भवानीपेट गांव से मोहम्मद इनायतुल्ला इशरतुल्ला इबादतुल्ला। साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं, लोर में चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और साथ में रेशम। इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप हैं मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज। और इसी गीत को सुनना चाहा है, आप हैं हाँसी से सुभाष योगी, सुशील बब्बू डब्बू राजू और बबीता मेघलानी। फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत पवीन, शाहनवाज, फरदीन, सुहान, अरजानब और अब्बान और अब्बासी परिवार की सभी सदस्यगण। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर आशा भोसले, दिलदाज कौर और साथियों को फिल्म का नाम सत्य पे सत्ता।

कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी के अनुरोध पर दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी और साथ में है प्रांजल राय कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा अमित कुमार साथ में है पी राय फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं गांव के रोज जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शमी रजनी आकाश दीपन हरदो साथ में इनका पोता है गुरु शब्द इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल ने रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहो और देवंती जायसवाल ने फरमाइश होता लिखते हैं भवानी तापका तालुका कमाल नगर बिदर कर्नाटक से संजीव उद्बले आकाश विकास करण और मंगला इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार प्रमिला भावेश कुमार और साथ में सन्नी भावसार फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप हैं गांव बुड्ढा घेड़ा कातला जिला सहारनपुर से मोहम्मद जुनेद कुरेशी भाई महबूब कुरेशी भतीजी अलीशा कुरेशी यास्मीन कुरेशी और इसी गीत को सुनने के लिए ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरू निशा शबिस्ता पलक लुबना और साथ में ही यश मंसूरी फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप गुन्नौर सिंह शुभदीप गुरलाल और साथ में अविराज सिंह इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है आप हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी नसरी नौरी नासना और साथ में मोहम्मद कैफ अंसारी फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा विशु विशाल लाडी शालिनी दिवांशी और साथ में इनके परिवारजन फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप हैं बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद मुणत नेहा जैन दीपक मैगुणत चेतन हटा दिलीप सिंह पवार और साथ में दीक्षा कुश मुणत सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में गीत फिल्म का नाम प्यासा सावन

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: समय 11:35 और 2 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की फरमाइश पर, बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूराइशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, आमना आशु जूही और साथ में इनके परिवारजन। फरमाइश होता हमें लिखते हैं मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, साथ इसी गीत को सुनना चाहा है ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी नाम कारी मीना कारी पुंजरा जारती आकर्षण, और साथ में है जयश्री। गांव जाखुद राजस्थान से शंभोदयाल खटक विमला देवी अमरजी सुंदरलाल योगेश कुमार दीपक और कुमारी पूजा, और इसी गीत को सुनना चाहे फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया सरोज सुबोध संजू लल्ला पूजा पिंकी बाबू शिवा और साथ में इनकी परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवान मीनाक्षी पुलोमा डॉक्टर ईशानी, साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं लाल कुर्ती रोड की कैंट से राजेश वर्मा मंजू वर्मा निशांत कौशिकी दीपाली युवान और साथ में आर के राजा। चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश होता लिखते हैं आप ही नेहरू चौक पैटर्न से डॉक्टर सुरेश यादव अनिता आरती पूजा प्रसाद सोनल बेबी सिया यादव, जालना शहर से सोमनाथ यादव गीता ओम सुभाष चंदन एकनाथ और साथ में संगीता यादव, भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र रंग अंजुलो मोहिते लक्की तानिया नारंग, कस्बा चिलकाना से नदीम अंसारी आयशा नदीम अजीम शान अरहम अंसारी और साथ में इनके परिवारजन, और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल कमला रानी भानु प्रकाश और साथ में गीतिका खोरवाल। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त को, फिल्म का नाम है काला बाजार।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की पसंद पर। जिला झारखंड बड़ा बम्बो सुपाई साई गांव से देवेंद्र ताती, राकेश तांती और प्रकाश तांती, साथ ही फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं प्रमोद कुमार साहू बिड़ाई जिला बालोद से, आप ही के साथ साथ फरमाइश श्रोता लिखते हैं प्रमोद कुमार सहोच और इनके बहुत सारे मित्र। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। नयापारा भिराई छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, प्रमोद कुमार सरोज ठाकुर और साथ में पप्पू ठाकुर। गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और साथ में करमजीत कौर। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं श्रोता नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और साथ में समस्त छाबड़ा परिवार। फरमाइश श्रोताओं ने लिख भेजी है पूर्णा जंक्शन से मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा चेतन और साथ में है सुलोचना भगत। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। मैसेज श्रोताओं ने लिख भेजा है गांव ककराली पंचकुला से वेद प्रकाश प्रजापति, लक्ष्य अंजलि नेहा और साथ में इनके परिवारजन। अब्दीपुर जिला बिजनौर से मैसेज लिखने वाले श्रोता आप हैं मनोज कुमार, बबीता, आदित्य राज, राजमन राज और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है मरहरा दरवाज़ा इटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज, नबीद, सुहेल, अनम, यशप और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं झीलों की नगरी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती विनीत नाचानी, मिथिल और साथ में प्रगति नाचानी। पुरानी भिलाई चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद बेगम, हमीमुद्दीन जी शान और साथ में इनके परिवारजन। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की, फिल्म का नाम है जुनून।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने उच्च पट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष शिवन्य और साथ में अनु गोस्वामी। फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से, भाई रफत साहिब सईद, भाई राशिद, भाई असद, भाई फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और साथ में नगमा नाज मंसूरी। इसी गीत को सुनना चाहा है, आप हैं सहारनपुर से आशा नारंग सोनाली और साथ में सुरेश नारंग। फरमाइश होता है, हमें लिखते हैं अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा नाज, असद अरहा, मोहम्मद आलम हाशमी। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष। साथ ही फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है गांव भोजपुर तगा चिलकाना से सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत और साथ में मोहम्मद इंतज़ार। और इसी गीत को सुनने के लिए ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक दली, सविता निकेत, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका और साथ में हैं सानिका दली। और इसी गीत को सुनने के लिए ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं गोकुल चौक गंगजला शहर सबिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राधे, राकेश, रंजन, राजीव, रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं जिला मुरादाबाद गांव दूलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, काजल सीमा, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और साथ में बलवीर सिंह। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा रजत और मयंक भाटिया। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता लिखते हैं महबूबपुरा सनावर से मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री जैद और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं तिलक नगर नई दिल्ली से आर एस सी टी और रानीगंज बंगाल से आर के शुक्ला। सुनते आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है दामिनी।

आइए श्रोतम, बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश के अगले गीत के मैसेज। हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुश दिल, सगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता आरजू, हंसमुख लाल बुलबुल, शक्ति और साथ में इनके परिवारजन। मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं सहारनपुर से, मोहम्मद साजिद अब्बासी, शमीम असमा, शेबा मोहम्मद, बिलाल अब्बासी, खुशी मंतशा, साथ में बेबी इस्माइल। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश होता हमें लिखते हैं गुनार से, यूपी से हैं यमुना, मिसबा, सुहेल, मोहम्मद बाबू और साथ में इनकी परिवारजन। साथ ही फरमाइश श्रोता है लिखते हैं, आप हैं दुलोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और साथ में आयान बाबू। और इसी गीत को सुनना चाहे तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंदे श्रीवास, करुणा, आयुष, बेबी आयुष श्रीवास। फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शो, अजय कुमार गुप्ता, रिमी तनुश्री गुप्ता, पीरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका रियाजिया, टूशी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, ये फरमाइश लिखते हैं, नाज रेडियो क्लब करेली जिला बरेली से निसार अहमद अंसारी, महजब निसार, बेटी नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद, साथ में इनके परिवारजन। मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, देहरादून चक्रात रोडीद गांव मोहल्ला से सुनील चावला, मीना, साक्षी, दिनेश चोपड़ा, तनु नानू, राधिका रानी, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, बेनीपट्टी जिला मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश और साथ में है नियति कुमारी। और इसी गीत को सुनना चाहा है, आप हैं गंज डिडवारा से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और साथ में इनकी बहुत सारे मित्र। मुंदीचक भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी, रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीन बानो और साथ में एली नायब। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, समस्तीपुर बिहार से हैं मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहिताश बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह। साथ ही फरमाइश श्रोता लिखते हैं, सोंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से कोमल सेन तोशन और साथ में विनायक सेन। और इसी गीत को सुन

इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी थी जिला नांदेड़ ताला से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल शुभम प्रसाद दरना और साथ में इनके परिवारजन, गुमला झारखंड से एसएम जावेश गुप्ता अंजुम साथ में नजमुल हुदा। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आपने मैसेज लिखे हैं नई बस्ती गंज डिंडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी नाजमा बेगम, मोहम्मद तौशिफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर साथ में मोहम्मद कलीम अंसारी। फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं पाकुंड झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता की श्वेता शुअर्णम और साथ में सत्यमानंद। फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण तरुण और साथ में प्रतीक चौहान। फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं गांव सोरई जिला ललितपुर यूपी से संतोष नामदेव, अभय अनिल अजित अनिता ज्योति संजना और साथ में इनके परिवारजन। फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनी जयपुन, विशाल पिया दिशानी और साथ में नियमित आहूजा। फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिखी है गाँव गाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार मलकित कौर, आरती रानी राघोहर हरमन साथ में इनके परिवार के सभी सदस्यगण। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना, योगेश मेहंदी सौरभ और साथ में ही निवास शर्मा, रानीगंज बंगाल से रवि और इंद्र। फरमाइश लिखने वाले श्रोता फिर तेलंगाना छोटू पास से कस्तूरी रामायडू को मधु और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोताओं ने लिख भेजी है। आपने नाम लिखे हैं जलगांव जंक्शन से डॉक्टर दिनेश कुमार काली, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, आदेश कुमार और साथ में वंदना जी। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं श्री गणेश अविकाट, श्री रामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका सानु कुम्भार और साथ में अर्चना। मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं जसपुर रोड दूलापुर मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महमूद, मोहम्मद समीर, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अर्शिफा परी और साथ में इनके परिवारजन। साथ

0: इसी गीत को सुनना चाहा था मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार शेख सगीर शेख वजीर और साहिल शेख। श्रोताओं, इसी के साथ आज का एक कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
2: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
1: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होना निर्धारित है। वहीं राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे शिवसागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने सुषमा स्वराज को सौम्यता और सादगी की मिसाल बताया।

0: श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the Lok Sabha paid tributes to the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. Lok Sabha Speaker Om Birla stated that today marks 81 years of the tragic atomic bombings in Japan.
2: 81 years ago, in Hiroshima and Nagasaki cities of Japan, on 6th and 9th August 1945, atomic bombs were dropped. In this terrible tragedy, lakhs of innocent people lost their lives and innumerable people were seriously injured. This house reaffirms its commitment to freeing the world from weapons of mass destruction.
1: The House also observed silence in memory of the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah on alleged police action during students' protests. The Speaker said question hour is an important part of the proceedings which provides every member an opportunity to raise issues. Mr. Birla added that Parliament is meant for discussion, for raising questions and for meaningful exchange of ideas. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. Earlier, the Rajya Sabha was adjourned till 12 noon following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the ministers laid papers on the table of the House. The reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce, Industries and Chemicals and Fertilizers were tabled in the House. After that, Chairman C.P. Radhakrishnan took up 0 hour amid opposition uproar. Some of the members raised issues of urgent importance. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said every member of the House is expected to maintain decorum and speak about relevant issues. He said during the speech a member can express views freely, but it should be in an orderly and meaningful manner. However, due to opposition uproar, the chairman adjourned the House till 12 noon. Prime Minister Narendra Modi today said the earth is the nurturing mother of all life. Sharing a Sanskrit quote in a social media post, Mr. Modi said humanity should live in harmony with the earth and the moral order that sustains her should be respected. Union Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi today said that the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has crossed 50 lakh beneficiary households in India. Addressing the CII International Energy Conference and Exhibition in New Delhi, the minister highlighted that currently 19 lakh households are receiving zero electricity bills. Mr. Joshi said with the scheme, over 12 lakh households have earned 421 crore rupees by selling the surplus electricity. Talking about the non-fossil capacity, he said the country is well on the path to achieve the target of 500 gigawatts by 2030. The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Jharkhand, Gangetic, West Bengal, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Bihar, Chhattisgarh, Rajasthan, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, parts of Northeast India and the Andaman and Nicobar Islands for the day. India's javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, secured places in the final rounds of their respective events at the World Athletics Under-20 Championships in Eugene in the USA. The finals will be played on Sunday. In hockey, teams from Odisha, Punjab, Jharkhand and Madhya Pradesh have advanced to the semi-finals of the 16th India Junior Men's National Championship Division A after winning their quarter-final matches in Coimbatore and Tamil Nadu yesterday. Benchmark domestic equity indices were trading on a positive note in forenoon trade today. The Sensex gained 225 points to 78,806, while the Nifty added 23 points to 24,647 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
4: के कार्यों की प्रगति और वन स्वीकृति की समीक्षा की। ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की प्रगति और वन स्वीकृति की समीक्षा की। सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश के संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास में नेपाल के कार्यवाहक राजदूत डॉ सुरेंद्र थापा से मुलाकात कर संस्कृत के बढ़ते वैश्विक महत्व और भारत नेपाल के बीच शैक्षणिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा की। कांवड़ मेले में हरिद्वार आने वाले शिव भक्तों की संख्या का आंकड़ा 1,80,00,000 के पार पहुंचा। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। पौड़ी जिले के नीलकंठ क्षेत्र में श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर खाद्य सुरक्षा अभियान तेज। कांवड़ मेले में मिलावट पर प्रशासन कर रहा कड़ी निगरानी। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से हो रही मौके पर निःशुल्क जाँच। चंपावत जिले के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा के 9वें दल को पिथौरागढ़ के गूंजी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 48 सदस्य इस दल में 12 राज्यों से 48 श्रद्धालु शामिल हैं। देहरादून के क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 अगस्त को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित निजी कंपनियां 559 रिक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर चयन करेंगी। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने सिंगल यूज प्लास्टिक की आपूर्ति श्रृंखला तोड़ने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के अधिकारी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्लास्टिक के निर्माता, वितरक और उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध लगातार जांच और चालानी कार्यवाही करने पर जोर दिया। देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, चमोली, बागेश्वर और पौड़ी में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहे। और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
3: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:12 हुए हैं। लीजिए सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए सुनीता भारती के गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर मदन लाल चड्डा, बांसुरी पर महेश चंद, हारमोनियम पर मनीष कुमार शाह। तो आइए सुनते हैं सुनीता भारती के गाए भजन।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सुनीता भारती के गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर मदन लाल चड्ढा, बांसुरी पर महेश चंद और हारमोनियम पर मनीष कुमार शाह। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब बहने सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत।

0: नमस्कार बहनों, आप सभी का स्वागत है महिला जगत रेडियो सखी फोन इन कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी सखी सुमन बगासी। बहनों कैसी हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगी और खुश होंगी। बहनों, हम सब के जीवन में सुख दुख का साथी हमारा परिवार होता है, मगर जो लोग काम, पढ़ाई या किसी भी कारणवश अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो उनकी हर मुसीबत में, सुख दुख में जो सबसे पहले काम आते हैं, वो होते हैं उनके पड़ोसी। पड़ोसी हमारे सबसे पहले रिश्तेदार बन जाते हैं, जो हमारे साथ किसी भी मुसीबत में साथ खड़े रहते हैं। हमें अपने पड़ोसियों की खुशियों में शामिल होना चाहिए और संकट की घड़ी में मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। बहनों, आस पड़ोस में किसी भी तरह की गलतफहमी या वाद विवाद को गुस्से से नहीं बल्कि शांति से आपस में बातचीत करके सुलझाना चाहिए, क्योंकि गुस्से से केवल नफरत ही बढ़ती है। हमें अपने आस पड़ोस में सभी के साथ सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, तभी तो हमारे आसपास का माहौल खुशहाल बनेगा। परिवार के दूर रहने पर भी पड़ोसी हमें उनकी कमी का एहसास नहीं होने देते हैं। हमारे साथ हमारी हर खुशी को, हमारे दुख को बांटते हैं, हमारे सुख दुख के साथी बन जाते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: बहनों, आज है 6 अगस्त। आज के दिन को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था, जिससे शहर का अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो गया था। हजारों लोगों की जान चली गई। इस परमाणु बम के रेडिएशन के असर से कई पीढ़ियों तक वहां के लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हुए। बहनों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक शांति को बढ़ावा देना और दुनिया भर में परमाणु हथियारों के भयानक परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम में अब वक्त है अपनी सखियों से बातचीत करने का, तो चलिए लेते हैं अपनी पहली कॉल। हेलो रेडियो सखी में आपका स्वागत है। किससे बात हो रही है हमारी?
2: मैंने सानिया मलिक बात कर रही हूँ।
0: सानिया जी, कैसी हैं आप?
2: बताइए सुमन बगासी मैम, कैसे हुआ?
0: अरे वाह, आपने हमें पहचान लिया।
2: आप क्या बात है?
0: अच्छा सानिया जी, क्या करती हैं आप?
2: मैं घर पे रहती हूँ।
0: घर पे रहती हैं? घर में रह के क्या काम करती हैं आप?
2: मैम मैं वैसे तो रहने वाली अगवान है, देखिए लड़की हूँ और मैं अपने बहन बड़े सिस्टर यहाँ पर आई हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा सानिया जी, आपके घर में कौन कौन है?
2: मम्मी भी है, अब्बू भी है, भाई भी है, भाभी है, बच्ची भी है, सेनाज है, मेरी बहन मेहराज है, इब्राहिमपुर से मेहराना है।
0: अरे वाह। अच्छा सानिया, आपके घर में जैसे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, कभी आपस में अगर कोई बात ऐसी हो जाए जिसका आपको बुरा लग जाए, तो आपको क्या लगता है कि आप मान जाती हैं या सामने से वो आपको मनाते हैं बहुत?
2: नहीं मैम, देखो लोग जो तो हो ही जाए, जब परिवार में है, एक दूसरे कुछ बोल देते हैं तो नजरअंदाज कर देना चाहिए, इग्नोर।
0: अच्छा
2: जी, तो मुझे सर कोई कुछ बोल सकता है तो मैं वापिस जवाब नहीं देती, बस चुप लेती हूँ और फिर देखती हूँ। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं था जैसे आप समझ रहे थे, गलत फहमी थी, फिर जब माहौल सही लगता है ना फिर बाद में बोल देती हूँ।
0: अच्छा, तो सानिया जी आपको क्या लगता है कि हमें दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना चाहिए?
2: वक्त के साथ हमें जिंदगी में बदलाव कर लेना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल। अच्छा सानिया जी, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: उदित नारायण जी।
0: अच्छा, इनका सॉन्ग सुनवाए आपको?
2: जी अच्छा सा सॉन्ग सुनवा दिया।
0: सानिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। रेडियो सखी में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: पता है 2026-27 से केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन का भुगतान SNA स्पर्श प्लेटफॉर्म लाभार्थियों को किया जाना है।
1: अच्छा,
0: अब पेंशन का भुगतान केवल उन्हीं लाभार्थियों को किया जाएगा जिनकी सही सही जानकारी समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल SSP.UK

0: और GOV.in पर उपलब्ध है।
1: तो उसके लिए क्या करना होगा?
0: बताता हूँ, बस आपके आधार संख्या विभागीय पेंशन पोर्टल पर सही सही दर्ज हो, बैंक खाते में आधार जोड़ने के साथ ही DBT की सुविधा भी चालू हो, जिसके लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी मानक छूटा हो तो तुरंत अपने क्षेत्र के सहायक समाज कल्याण अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 6395221188 पर कॉल करें या हमें ईमेल आईडी swditsale@gmail.com पर लिखें। समाज कल्याण निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो, रेडियो सखी में आपका स्वागत है।
3: दीदी नमस्ते।
2: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
3: दीदी कहते हैं फूलों पे रहती हूँ, तितली मेरा नाम है। फूलों पे रहती हूँ, तितली मेरा नाम है। कलियों पे मंडराती हूँ, शबनम अब्बासी मेरा नाम है।
2: शबनम जी,
3: जी
2: कैसी हैं आप?
3: दीदी हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हो, स्टाफ के सभी लोग कैसे?
2: बिल्कुल, हम सभी अच्छे हैं और बहुत खूबसूरत शायरी के साथ कार्यक्रम में जुड़ी हैं।
3: थैंक यू दीदी। दीदी हम आपसे जुड़े, आपकी आवाज बहुत मिलती है और इसलिए हम आपसे जुड़ते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत टाइम के बाद
2: बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा शबनम, क्या करती हैं आप?
3: दीदी मैं ब्यूटिशियन हूँ।
2: ब्यूटिशियन, ओहो, तो यानी कि आप लोगों के रंग रूप को संवारती हैं।
3: जी दीदी।
2: अच्छा शबनम, आप ब्यूटिशियन हैं तो जी। काम करते करते आपको कभी कभी कुछ ऐसे कस्टमर आते होंगे जिनका व्यवहार शायद आपको पसंद ना आता हो?
3: जी दीदी, कुछ लोग हाँ आते हैं, ऐसे बेरुखे इंसान होते हैं, मगर उन्हें प्यार से जब हैंडल करते हैं तो हो जाते हैं। अच्छा। तो हम प्यार से बात करेंगे।
2: मतलब आप मानती हैं कि अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो सामने से भी हमें अच्छा ही व्यवहार मिलेगा, है ना?
3: जी दीदी, जब हम प्यार से बोलेंगे तो उनके दिल में भी प्यार जगेगा कि ये लोग हमसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, हम भी इनसे प्यार से बात कर रहे हैं।
2: जी, मतलब आप मानती हैं कि दूसरों को बदलने से पहले आपको खुद को बदलना बहुत जरूरी है?
3: जी दीदी, जी जी दीदी, जब हम खुद सही होंगे तो सामने वाला हमें देखकर खुद अच्छा बनने की कोशिश करेगा।
2: अच्छा शबनम, बताइए कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
3: उनका नाम रहेगा रंग, और गाने से बोल रहे हैं तेरी मोहब्बत दिल में मकाम कर दिया।
2: बेहद खूबसूरत आवाज में आपने हमें गाना सुनाया है। हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं। रेडियो सखी में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
3: थैंक यू दीदी, बाय।

0: हेलो हेलो, रेडियो सखी में आपका स्वागत है। किससे बात हो रही है हमारी?
1: नमस्ते मैम,
0: नमस्ते, आपका नाम?
1: ये मैं ग्राम कतरवा जिला रामपुर से सारा खान बात कर रही हूँ।
0: सारा जी, कैसी हैं आप?
1: जी हम बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। आप बताइए मैम, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। सारा जी, क्या करती हैं आप?
1: मैम हम घर पे रहते हैं और घर के काम काज करते हैं और रेडियो सुनते हैं।
0: रेडियो सुनना अच्छा लगता है आपको?
1: बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मैम, हम सारे गाने हम आपको सुनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सारा
1: जी
0: जी, घर में कौन कौन है आपके?
1: घर में हमारे बहुत बड़ा परिवार है, हमारे पापा हैं, भाई हैं, भाभी हैं, भतीजे हैं।
0: अच्छा सारा
1: जी
0: जी, बच्चों को हम बोलते हैं कि मोबाइल मत देखिए, तो जब हम बच्चों
1: जी
0: को ऐसा बोलते हैं, बच्चे आसानी से नहीं मानते हैं। आपको क्या
1: आसानी
0: लगता
1: नहीं
0: है,
1: मान
0: उन्हें मनाने का क्या तरीका सही है?
1: जी, बच्चों को मोबाइल देखने से देना, हम भी मोबाइल को नहीं देखेंगे,
0: जी, बच्चे क्योंकि
1: मतलब
0: जैसा
1: हम उनके
0: देखते
1: सामने
0: हैं,
1: मोबाइल देखेंगे तो वो हमसे ज्यादा देखेंगे।
0: बच्चे वैसे ही सीखते हैं। मतलब अगर हम
1: जी
0: चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति में बदलाव आए, तो पहले हमें
1: हाँ,
0: खुद में ही परिवर्तन लाना पड़ेगा, है
1: खुद में
0: ना?
1: ही परिवर्तन करना चाहिए।
0: जी।
1: बिल्कुल
0: अच्छा
1: सही है
0: सारा जी,
1: जी
0: कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप?
1: जी आज मेरी कॉल लगी है तो मैम मैं बादल फिल्म का गाना सुनना चाहूंगी
0: बादल फिल्म का कौन सा सॉन्ग
1: जी। ना मिलो हमसे ज्यादा, कहीं प्यार हो ना जाए। और
0: सुनाइए।
1: मैम दो नाम रहेंगे,
0: हाँ
1: एक
0: बताइए।
1: मेरी सखी शमा परवीन और एक शमनम अब्बासी, उन्हीं को डेडिकेट करना चाहूंगी।
0: अच्छा, आप अपनी सहेलियों को ये गाना डेडिकेट करना चाहती
1: जी
0: हैं। सारा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे
1: बहुत बहुत
0: हैं।
1: शुक्रिया मैम, थैंक यू।
0: रेडियो सखी में कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो रेडियो सखी में आपका स्वागत है। किससे बात हो रही है हमारी?
0: मैम, मैं नीतू बोल रही हूँ।
1: नीतू जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: मैं रुड़की से बोल रही हूँ।
1: रुड़की से बात कर रही हैं। नीतू जी कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ
1: क्या करती हैं नीतू जी आप?
0: मैम, मैं एक हाउसवाइफ हूँ।
1: अच्छा नीतू जी आपके घर में कौन-कौन है?
0: मेरे घर में मेरा एक बच्चा है, मेरे हस्बैंड है, मेरी सास है, जेठ है, जेठानी है, उनके
1: जॉइंट
0: बच्चे हैं।
1: फैमिली है।
0: जी मैम,
1: नीतू जी आपको क्या लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारा सम्मान करें, अच्छे से हमारे साथ व्यवहार करें, इसके लिए क्या जरूरी है?
0: अगर हम चाहते हैं कि कोई हमसे अच्छे से बात करे, हमारे साथ अच्छे से रहे, तो पहले हमें उनके साथ अच्छे से रहना पड़ता है मैम।
1: जी
0: और चाहे सामने वाला कुछ भी करे, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके साथ अच्छे से ही रहें।
1: मतलब सम्मानजनक व्यवहार करें हम।
0: जी मैम, अगर हम घर में बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं डिसिप्लिन, तो उसके लिए पहले हमें खुद डिसिप्लिन में रहना चाहिए मैम,
1: जी जी बिल्कुल।
0: तभी बच्चे वो देख के सीखते हैं।
1: बिल्कुल। किसी और के अंदर अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो पहले आपको खुद में भी परिवर्तन करना पड़ेगा ना।
0: जी मैम,
1: अच्छा नीतू जी कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप?
0: मेरा छाया मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए आप।
1: अच्छा नीतू जी आपसे बात करके अच्छा लगा। रेडियो सखी में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं।

बहनों, अगर आप भी रेडियो सखी का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकती हैं। रेडियो सखी की रिकॉर्डिंग होती है हर बुधवार दोपहर 1:30 से 2 बजे तक, और इसका प्रसारण होता है अगले दिन गुरुवार दोपहर 12:30 बजे महिला जगत कार्यक्रम के अंतर्गत। रेडियो सखी में कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7088001382। तो बहनों, अब अपनी सखी सुमन बगासी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी मैंने सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आपको याद दिला दें, रात्रि 8:15 पर स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत सुनिएगा डॉक्टर राधिका रतूड़ी से बातचीत। विषय रहेगा स्तनपान माँ और बच्चे के लिए ज़रूरी। युवा साथी के लिए युवाणी कार्यक्रम शाम 5:10 पर होगा। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत प्रसारित किया जाएगा संध्या 5:45 पर। श्रोतव, ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार।

0: Mar. लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। इस दौरान मंत्रियों ने सदन के पटल पर कई दस्तावेज रखे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, लेकिन ये व्यवस्थित और सार्थक ढंग से होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। मौसम विभाग ने बताया है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है। हालांकि तेज बारिश के कारण भुवनेश्वर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में फिर से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। आशीष ने पुरुषों के समूह ए में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69.87 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अमानत ने 52.58 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए समूह ए में 6ठा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को जारी नोटिस का घर जाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। पौड़ी जिला प्रशासन ने कांवड़ मेले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की तैनाती की और देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता, और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। साथ ही वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने तथा वैध और कानूनी रूप से लागू करने का प्रावधान भी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों को 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर जारी नोटिस का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं गढ़वाल के मंडलायुक्तों सहित सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी जिलों के डीईओ को फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच कर उनका समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियों के चरण में एक मतदाता 5 से अधिक मामलों में दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर रहा है, तो इसके लिए नियमानुसार ईआरओ स्वयं अपने स्तर पर जांच और सत्यापन की कार्रवाई करें। श्री पुरुषोत्तम ने मंडलायुक्त कुमाऊं दीपक रावत और मंडलायुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप को अपने अपने मंडलों में जिलेवार निरीक्षण कर जांच करने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग उत्तराखंड पीएम ई बस सेवा योजना के तहत जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये बसें देहरादून और हरिद्वार में संचालित की जाएंगी। यह योजना वर्ष 2027 में होने वाले हरिद्वार कुंभ मेले में भी अहम भूमिका निभाएगी। इससे श्रद्धालुओं और जनता को बेहतर और प्रदूषण मुक्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने बताया कि योजना के तहत आधुनिक चार्जिंग स्टेशन, बस डिपो और डिजिटल टिकटिंग व्यवस्था विकसित की जाएगी। इससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के साथ ही कुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुगमता मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि यह योजना समय पर पूरी होती है तो वर्ष 2027 के हरिद्वार कुंभ में इसका फायदा मिलेगा।
1: भी इसमें सहायता मांगी है कि हमें कुंभ के लिए कुछ बसेस प्रोवाइड कराए जाएँ, जिससे कि और स्टेट से जो कुंभ में यात्री यहाँ पर आना है उनको सहूलियत मिले। तो सभी मैं सोचता हूँ कि स्टेट्स में हम लोग जो है कुंभ की बसें चलाएंगे, जिससे कि यात्रियों को आने में सहूलियत है। और एसी और इलेक्ट्रॉनिक बसेज होंगी तो मैं सोचता हूँ कि ग्रीन मोबिलिटी जो हम लोग उसको बढ़ावा देंगे। हम लोगों ने लोकल व्हीकल्स के लिए किया है, जो हमारे विक्रम्स हैं, टैक्सीज हैं, अगर वो ईवी की तरफ जाते हैं तो उनको सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है 50% का। तो वो पॉलिसी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है और उत्तराखंड में पहली बार ये पॉलिसी लागू हुई है। तो मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में पहली बार सारे काम कर रहा है। उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बन रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है। सचिव संस्कृत शिक्षा

0: कुमार ने कल नई दिल्ली में इंडोनेशिया के कार्यवाहक राजदूत युधो सासोंको से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा के वैश्विक प्रसार के लिए उत्तराखंड और इंडोनेशिया के मध्य शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संस्कृत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि इंडोनेशियाई भाषा में संस्कृत मूल के अनेक शब्द आज भी प्रचलित हैं, जो दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों का सशक्त प्रमाण हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इंडोनेशिया के शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित होने से संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा का व्यापक प्रसार होगा और दोनों देशों के युवा अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को और अधिक गहराई से समझ सकेंगे। कांवड़ मेले में नीलकंठ महादेव धाम पहुंच रहे कांवड़ियों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पौड़ी जिला प्रशासन ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब को तैनात किया है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा पीसी जोशी ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी के तहत कांवड़ यात्रा मार्ग और नीलकंठ क्षेत्र के स्थायी और स्थायी खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से दूध, पनीर, मिठाई, खाद्य तेल, पेय पदार्थ सहित विभिन्न खाद्य सामग्री की मौके पर ही वैज्ञानिक जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा ताकि मिलावटी और निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और श्रद्धालुओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। कैलाश मानसरोवर यात्रा के नौवें दल को एआरटीओ प्रवर्तन मनोज बगोरिया ने टनकपुर से हरी झंडी दिखाकर अगले पड़ाव गुंजी के लिए रवाना किया। इससे पूर्व कल 12 राज्यों के 48 सदस्यीय यात्री दल का टनकपुर पर्यटक आवास गृह पहुंचने पर कुमाऊनी रीति रिवाज से भव्य स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आगामी 11 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक ली। इस अवसर पर श्री जोशी ने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ यह अभियान आज एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राज्य के 8 जिलों में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते अधिकांश क्षेत्रों में कई संपर्क मार्गों पर आवाजाही बाधित है और संबंधित विभाग बंद मार्गों को खोलने में जुटा हुआ है। वहीं प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं।
1: रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश होने के कारण और मौसम विभाग के द्वारा भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और जिससे कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में और चमोली जिले में भी ज़्यादा बारिश होने के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी का जो जलस्तर है वो अपने खतरे के निशान पे है अभी, जिसके कारण कि हम लोगों ने यहाँ पे जो नदी के किनारे रह रहे लोगों से अपील भी की है कि वो नदी के किनारे अनावश्यक न जाएं और जो नदी के किनारे रह रहे हैं उन लोगों को मतलब कि सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दी जा रही है और लगातार उनको एहतियात बरतने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को जारी नोटिस का घर जाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। पौड़ी जिला प्रशासन ने कांवड़ मेले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की तैनाती की और देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। समय 1:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

वो कौन थी? अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से एक गीत। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, शब्द थे राजा मेहंदी अली खां के, संगीत मदन मोहन का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया। कार्यक्रम में ये अगला गीत मुकेश की आवाज़ में, फिल्म का नाम यहूदी।

गीतकार थे साहिल उद्यान भी और संगीतकार थे रवि। श्रोता म्यूजिक के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिर परिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओं, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओं, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे दो मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं, एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? और क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकाल कर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूँगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है, फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओं, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओं, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह जी उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को। आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं जी। और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
2: May I come in, Mr. Henry?
3: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
2: आपने बुलाया था सर?
3: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
3: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
4: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
2: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
4: दूसरे दिन

0: वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
0: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
2: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
3: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
4: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
3: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
5: बिल्कुल सही कहा आपने।
4: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
5: जी जी चलो चलो देखते हैं।
4: हाँ, चलो चलो चलो चलो चलो जल्दी चलो।
6: अहोम के महाराज की जय हो।
7: जय हो जय हो।
6: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बिशु के साथ।
8: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: Output. Ati sundar. हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
4: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
5: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
6: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
4: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
6: अच्छा।
4: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
6: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
4: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
6: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
4: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
6: ओ।
4: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू

0: होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
1: अरे वाह, सर मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
0: बिल्कुल ठीक कोमल, ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
1: ओह,
0: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
1: अच्छा।
0: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
1: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
2: जी।
1: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
0: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
1: जी।
0: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
1: बहुत सुंदर मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा, तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना

0: मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी। खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

0: वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।
1: वाओ, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर फूल हैं, और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे, चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा, पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो, कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया है इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई? अरे नमस्ते दीदी।
1: अरे भैया।
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे,
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो। शाबाश
2: बेटा, मामा जी आए हैं। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी, एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा, ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है, आई पसंद। और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है, देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना।
2: हाँ।
0: नो, शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी, आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी,

0: चली गई बिना खिलाने लिए।
1: आंटी आंटी नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: अंकल नमस्ते।
3: नमस्ते बेटा।
2: खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
1: क्या है मामा?
2: देखो ना ताशु आई है।
1: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
4: नहीं ताशु आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
1: क्या हो गया? तुम तो मेरे साथ खेलती भी नहीं हो।
4: नहीं ताशु मेरा खेलने का मन नहीं है।
1: खेल लो प्लीज।
4: प्लीज ताशु मुझे नहीं खेलना है।
1: प्लीज
4: नहीं।
1: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
4: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
6: वाह चिड़िया कितनी अच्छी है। तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं। फूल फूल फिर से, वाह। तोते तितलियां रंग बिरंगी लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी
2: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
6: मैं तो बाहर जा रही हूँ। हम अरे वहाँ देखो चिड़िया तोते कितने सुंदर हैं।
2: अरे सुन तो।
6: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
2: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
3: एक बार देखे तुमने?
2: हाँ।
3: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, वो बहुत खुश रहती है।
2: सही कहते हो आप।
3: हे ईश्वर, हे भगवान, तुमने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
5: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
7: तो श्रोताओ अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 2 बजने को अब समाचार होंगे।
10: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Lok Sabha adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues. Rajya Sabha also adjourned till 2:15. Bombay High Court convicts former Tehelka editor Tarun Tejpal in 2013 sexual assault case. Amarnath Yatra resumes after day-long suspension due to security reasons.

0: के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नियत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
1: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी

0: कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
1: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गदेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
2: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
1: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले एएचएफ एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। सैनिक साथियों, एक सैनिक की वर्दी में इतना आकर्षण है कि एक सच्चा वीर देशभक्त उसको पहनकर देश के लिए सर्वस्व तक अर्पित करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ही थे कैप्टन मनदीप सिंह, जिन्होंने अपनी देशभक्ति, समर्पण और जुनून से देश की रक्षा की। इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे, पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

सैनिक साथियों, कैप्टन मनदीप सिंह का जन्म 19 मई 1969 को पंजाब के जालंधर शहर में हुआ था। ये शहर अपनी देशभक्ति भावना और युद्ध परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। बचपन से ही इनकी राष्ट्र सेवा की इच्छा थी और इन्होंने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और कॉलेज के समय ही मनदीप सिंह अनेक गतिविधियों में

भाग लिया करती थी। ये पढ़ाई में उत्कृष्ट होने के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में रुचि लिया करती थी। खेलों के प्रति समर्पण और जुनून ये रहा कि ये मिस्टर पंजाब और मिस्टर जालंधर सहित कई प्रतियोगिताओं में इन्होंने भाग लिया। पर भारतीय सेना में शामिल होने का सपना इनका तब पूरा हुआ जब इन्होंने संयुक्त रक्षा सेवा की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की और वर्ष 1991 में इन्होंने वायु रक्षा तोपखाना में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ, जिसे वायु रक्षा कोर के नाम से भी जाना जाता है, जो हवाई खतरों से राष्ट्र की रक्षा करती है। चर्चा जारी है, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथियों कैप्टन मनदीप सिंह को 49 वायुरक्षा रेजिमेंट में तैनात किया गया, जहां उन्होंने परिचालन स्थलों पर अपनी सेवाएं दी। इनकी दक्षता व कर्तव्य निष्ठा के लिए इन्हें 4 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में बाद में तैनात किया गया, जो गहन आतंकवाद विरोधी अभियान और रक्षात्मक अभियान में दुर्गम इलाकों में सेवाएं प्रदान करती है। और वैसे तो आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के समापन की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद कई दिनों तक तनाव बना रहा। अगस्त 1999 में अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में जवानों को अनंतनाग में तैनात किया गया था, जिससे सुरक्षा व्यवस्थाएं इधर कम कर दी गई थी और इसका फायदा सक्रिय आतंकवादी समूहों ने उठाया। और 6 अगस्त 1999 की सुबह कुपवाड़ा जिले के चकबुटनोसा गांव में स्थित 4 राष्ट्रीय राइफल्स के सेना शिविर पर पूर्व नियोजित हमला हो गया।

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारे सैनिक अंतिम सांस तक देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और सैनिक साथियों, 6 अगस्त 1999 की सुबह जब कुपवाड़ा ज़िले के चकभुटनुसा गांव में राष्ट्रीय राइफल्स के सेना शिविर पर हमला कर दिया गया था, तो लगभग रात्रि 1:15 मिनट पर इस सेना शिविर में हमले को कंपनी कमांडर कैप्टन मनदीप सिंह ने तुरंत स्थिति को संभाला। और हमले की अचानक भीषण गोलीबारी के समय कैप्टन मनदीप सिंह अपनी अद्भुत सूझबूझ और नेतृत्व का उन्होंने परिचय दिया। साथ ही सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए लगातार जवाबी हमले करते रहे। ये आतंकवादियों की भीषण गोलीबारी में अचानक से उलझ गए और इनके सीने में बाई ओर एक गोली लगी। ये घायल हो गए लेकिन फिर भी लगातार अपने साथियों का नेतृत्व करते रहे और तब तक युद्ध भूमि में डटे रहे जब तक कि इन्होंने गंभीर रूप से घायल होकर नीचे नहीं गिर पड़े। सैनिक साथी मनदीप सिंह की देश के लिए शहीद हो गए, पर साथ ही इनके साथी 3 जवान और शहीद हुए, नरेंद्र सिंह राणा, नायक मिथिलेश पाठक और सोहन सिंह सोलंकी। सैनिक साथियों, आज कैप्टन मनदीप सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर देश के सर्वोच्च बलिदान के लिए हम इनको सलाम करते हैं।

सैनिक साथियों, इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न हुआ। हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3 बजे ही आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप मुद्दता से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव और केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास से मौसम की स्थिति की जानकारी ली। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दी। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देशभर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिलेगी। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स आयोजित किए गए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। कुमायूं

0: आयुक्त दीपक रावत ने हल्द्वानी तहसील के विभिन्न मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। आज जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अगले माह प्रस्तावित खेल महाकुंभ की तैयारियों की सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष और गृहमंत्री ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्य सरकार ने तीलू रौतेली राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार के लिए चयनित नामों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए और अब तक 1,80,55,000 से अधिक शिव भक्त गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्रीय है। 3:02 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने।

के साथियों की यह आवाज़ें थी। फिल्म का नाम था भूल भुलैया, गीत था समीर का और संगीत प्रीतम का था। आइए आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने का ये अगला गीत, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ में। फिल्म का नाम सूर्यवंशी।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

ये थे उस्ताद राशिद खान, फिल्म का नाम था जब वी मेट, शब्द थे इरशाद कामिल के, संगीत संदेश शांडिल्य का था। श्रोताओं, गाने नए तराने प्रसारित किए जा रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए सुनते हैं पलक मुच्छल की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम स्वीटी बर्ड्स एनआरआई। गीत को संगीतबद्ध किया है शाहजा अली ने।

अब हमारे श्रोता जहाँ, हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

कुमार के शब्दों को संगीत दिया था विशाल शेखर ने। ये आवाज़ें थी शफ़क़त अमानत अली और साथियों की, फिल्म का नाम था रावण। श्रोताओं, 3:30 और 24 सेकंड हुए हैं। गाने नए तराने आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं गुरु रंधावा की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है तुम्हारी सुरु। गीत और संगीत गुरु रंधावा का।

ये थे पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह, फिल्म का नाम था आशिकी टू। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीतकार जीत गांगुली। आइए आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने का ये अगला गीत, आयुष्मान खुराना की आवाज़ में, फिल्म का नाम विक्की टूनर।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

पिनोकियो रानी की प्रेम कहानी। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत। आवाजें थी अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और साथियों की। श्रोतम गाने नए तराने आप सुन रहे हैं FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। रोचक कोहली का संगीत, मनोज मुंतशिर का गीत, आवाजें जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की, फिल्म का नाम सत्य में जयते।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: आइए अब सुनते हैं गाने ने तराने का ये अंतिम गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बैटमैन। गीत को संगीत दिया है अमित।

आप सुन रही थी गानी नहीं दरानी, FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजने को ही अब थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: वो वादे, वो इरादे, वो कस्में, वो गुजारिश, वो कविता, वो गीत, वो नहर, वो आकाश, वो पहाड़, वो समुद्र, वो खिलखिलाते चेहरे, वो फूल, वो पत्तियां और वो मिट्टी जिसके ऊपर आप और हम खड़े हैं, वो मिट्टी जो हमें अनाज देती है, वो मिट्टी जो रहने के लिए घर, काम करने की ऊर्जा, एक पहचान देती है। उस मिट्टी का तिलक कर अगर हम सर उठा के खड़े हों तो कोई भी पहचान लेगा कि हम भारतीय हैं। और इसी मिट्टी में जहां हम अनाज उगाते हैं, हरी भरी वादियों में उसके लुत्फ उठाते हैं, यहां पर देश की रक्षा करने के लिए फौलाद भी जन्म लेते हैं। और ऐसे ही जांबाज इंडियन आर्मी के अफसर ब्रिगेडियर सुशील तंवर हमारे साथ, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। देशवासियों के साथ, हमारे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के साथ, मैं ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी का स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग।
0: सबसे पहले तो पूरे देश की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि यू आर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी बट यू डिड फाइंड द अपॉर्चुनिटी। आपने जो भी रेगुलर नेसेसरी परमिशंस थी वो ली और अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: नहीं, मेरे लिए खुद भी एक बहुत खुशनसीबी का मौका है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूं, आपके श्रोताओं से बात कर सकूं। इट्स रियली एन ऑनर।
0: मुझे ये बताइए कि क्या हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो जांबाज अफसर होते हैं, जिन्होंने बहुत एक काबिल तरीके से एक ऑपरेशन या बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, वो इसी तरह मीठी जुबान बोलते हैं? मतलब कभी कभी वो कड़क साउंड नहीं करते, वो इट्स सम सम लाइक अ कैमोफ्लेज।
1: नहीं, मेरे ख्याल से ये संगति का असर है। आपका लहजा खुद इतना सुहाना है कि शायद हमारे लहजे में भी आपकी मिठास आ गई है।
0: ओके, तो दुश्मन को मीठा मीठा कह के थोड़ा सा उसको सॉफ्ट डाउन करो एंड देन टारगेट है, इज दैट द आईडिया?
1: या दैट्स इट।
0: तो अपने सुनने वाले को बता दूं कि ब्रिगेडियर सुशील तंवर एक अलुमनाई है मिलिट्री स्कूल अजमेर के, नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे खड़गवासला के और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के। आप प्रेस्टीजियस मिलिट्री कोर्सेज करने के लिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज विंगटन और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस डायरेक्टर्स कोर्स IIDC जो किंग्स कॉलेज लंदन में होता है वो करने भी जा चुके हैं। और ये महारत हासिल करके आपने, ये कहूँ कि वो द कोवेटेड यूनिफॉर्म ऑफ द इंडियन आर्मी पहनी।
1: बिल्कुल, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी का मौका है। मैं तो एक्चुअली बचपन से ही, हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़ा हूँ जैसे आपने

0: और हमारे स्कूल का ये मकसद था कि छात्रों को डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर्स के लिए ट्रेन किया जाए।
1: जी
0: उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी चले गए। सो बचपन से ही यूनिफॉर्म हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, एंड दैट इज़ वाई वी फील ब्लेस्ड कि हमें मौका मिला देश की सेवा करने का, वर्दी पहनने का।
1: और इसके साथ साथ अपने देशवासियों को बता दें कि आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं ब्रिगेडियर सुशील तंवर, आपने 17 साल जो योगदान दिया भारतीय आर्मी को अभी तक, उसमें काउंटर टेररिज्म एनवायरनमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में था, वहां पे इलीट 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट को कमांड किया है। यंग ऑफिसर होने के नाते इन्होंने बहुत सारे जोखिम झेले। ऑपरेशन रक्षक में आप एक बैटल कैजुअलिटी के शिकार हुए, लेकिन शरीर शिकार हुआ, हौसला नहीं, हौसला नहीं हारा और आगे बढ़ते गए। नॉर्दर्न कमांड की कमीशन कार्ड और साथ ही साथ इन्हें COAS कमीशन कार्ड 2 बारी मिल चुका है। इनके बारे में और हम बात करेंगे, लेकिन विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, ये सफर शुरू कहाँ हुआ आपका? व्हेन डिड यू वांट टू कम टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस?
0: जैसा मैंने पहले बताया कि हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़े हुए हैं।
1: जी
0: 10 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन हो गया था, तो मेरे ख्याल से शायद मैं 5वीं 6वीं क्लास में रहा होगा जब मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे भी फ़ौज में जाना है, सेना में जाना है। और एक बार हम स्कूल में आ गए तो हमारा रूटीन, लोग कहते हैं कि मैंने 17 साल फ़ौज में दिए, 20 साल दिए, 25 साल दिए, लेकिन हम स्कूल वाले, हम जो फ़ौज में आ गए, हम कहते हैं कि हम बचपन से ही पीटी परेड करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई थिंक इट वॉज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट आई रियली वॉन्टेड टू ज्वाइन।
1: तो जो बचपन से ही आप एक डिसिप्लिन माहौल में रहे होंगे।
0: हाँ, डिसिप्लिन था, काफ़ी डिसिप्लिन था जो हमारे जीवन में था। सुबह टाइम पर उठना, पीटी करना, क्लासेस टाइम पे जाना, शाम को गेम्स, स्टडी पीरियड। और वैसे पुराने जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका एक अलग डिसिप्लिन और एक
1: जी
0: रूटीन
1: जी
0: था, खासकर हमारे मिलिट्री स्कूल्स, 5 मिलिट्री स्कूल हैं पूरे देश में। तो मैं अजमेर में पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे स्कूल में बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती थी कि डिसिप्लिन में रहें और फौज की तैयारी करें और हम आगे फौज में।
1: पर साथ साथ में और भी बहुत सारे सवाल पूछता रहूंगा लाइफ की फिलॉसफी से जुड़े। आपको लगता है कि तब का डिसिप्लिन, बड़े होने के बाद जो डिसिप्लिन है, यू हैव नो रिग्रेट्स, कि डिसिप्लिन से ही जो जिंदगी है ना वो थोड़ी सी और निखरती है, लुक्स मोर कलरफुल?
0: हाँ, मे नॉट बी कलरफुल बट सर्टेनली डिसिप्लिन ब्रिंग्स एन ऑर्डर। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन रहने से आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक निखर जाती है। उसमें एक तरीका आता है, एक सलीका आता है, आपका आपके आसपास वाले लोगों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। और सेना में तो डिसिप्लिन ही ज़िंदगी है, तो इसीलिए अगर हम ना भी चाहें तो भी हमें डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा।
1: पर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, दैट इज द रीजन कि इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द टॉप आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड।
0: सर्टेनली सर्टेनली, एंड हम लोग यूएन जाते हैं, बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारी एक्सरसाइज होती हैं।
1: एब्सोल्युटली।
0: और वैसे तो वर्ल्ड ओवर आर्मीज़ आर नोन फॉर डिसिप्लिन, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सेनाओं में इतना अनुशासन नहीं है, लेकिन भारतीय सेना की बात ही कुछ और है।
1: क्योंकि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मिले जुले सवाल भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे सिविलियन हमें सुन रहे हैं, हमें पूरा देश इस समय सुन रहा है, क्योंकि आकाशवाणी के लगभग सारे स्टेशन इस समय ट्यून्ड हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से बहुत सारे हमारे NRIs जो हैं वो इस प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं। हमारा व्हाट्सएप का जो मशीन है वो मैं खोल लेता हूँ, एंड ऑफकोर्स अभी अभी मेरे पास मैसेज आया कि ऑस्ट्रेलिया से कोई हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे, और उनका नाम है जोया। खैर, उन्होंने कुछ सुझाव दिए वो मैं बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या खास बात है इंडियन आर्मी में आज की डेट में, इतने मॉडर्नाइजेशन पीरियड में हम लोग जा रहे हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में, ये कहना सही होगा?
0: बिल्कुल सही है, हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं और दुनिया बदल रही है, साथ में सेना बदल रही है।
1: जी
0: दी वॉर्स आर चेंजिंग, दी एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बैट इज चेंजिंग, तो काफ़ी बदलाव आ रहा है।
1: जब आपने पहली बार आपने वर्दी पहनी, उसके बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई?
0: हाँ, जब हम 97 में कमीशन हुए थे तो हमारी यूनिट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी, मणिपुर में, तो कुछ साल मैंने वहाँ गुजारे। लेकिन उसके बाद जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, ज़्यादातर वक्त मैंने जम्मू कश्मीर में गुजारा, लेकिन शुरुआती 2-3 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुजारे थे।
1: तब का नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अब का बहुत फर्क आ गया होगा।
0: फ़र्क तो हर जगह आया
1: जी
0: है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मुझे जाने का इतना मौका नहीं मिला,
1: ओके
0: बीच बीच में जाता रहा, बट एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट, नॉट एक्चुअली सर्व नहीं किया मैंने वहाँ पे इतना ज़्यादा। लेकिन जो हमारे साथियों वो बताते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, तरक्की हुई है, लोगों के नज़रिया बदला है, सड़कें बदली
1: जी
0: हैं, डेवलपमेंट हुई है, तो आपके मीडल ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुए हैं, तो ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही बदल गई है, और साथ ही ज़िंदगी जीने के तरीके भी बदल गए हैं।
1: सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर पोस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। उस समय बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था जब आप वहाँ आपकी पोस्टिंग।
0: जी, मैंने जम्मू कश्मीर में 15 साल से ज़्यादा गुजारे हैं, और पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, रजौरी, आपने बात की 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट की,
1: जी जी
0: 12 मुला में मैं रहा, तो
1: ओके
0: तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर से मेरा एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है, वहाँ के लोगों के
1: ओके
0: साथ बहुत मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि मैंने इतना वक्त गुजारा है, और मुझे कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा जो फर्स्ट होम इज़ जम्मू एंड कश्मीर।
1: वाह, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा। मतलब फौलाद भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की बात ही कुछ और है।
0: बात ही कुछ हो रहा है, वहाँ के
1: जी
0: लोगों के साथ
1: जी
0: हमने बहुत काम किया, उनके साथ हमारे जाति ताल्लुकात हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सोल्जरिंग के सारे पहलू वो सामने आते हैं, चैलेंजिंग है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, और लोगों के साथ एक मिलने जुलने का सिलसिला है। तो अगर हम कहते हैं कि पी स्टेशन में कोई दिल्ली में है, कोई मथुरा में है, कोई पुणे में है, इसके बनस्पत कोई जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने से उसको सोल्जरिंग का जो रियल वैल्यू है वो सामने आती है। सो इट्स टफ, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग।
1: आप हमारे सिविलियंस को इस वार्ता के, आपके और मेरे बीच जो वार्ता चल रही है उसके माध्यम से आप ये बताना चाहें कि चाह रहे हैं कि जब हमारी इंडियन आर्मी वहाँ, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अफसर हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप यूनिफॉर्म पहने और आपने गन पकड़ी है, यू आर अ ड्रेडेड यू नो मैन इन अ यूनिफॉर्म। आप लोगों से मिक्सअप भी होते हैं। जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली यूथ के लिए।
0: बिल्कुल, और आपने एक ड्रेडेड वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि थोड़ा सा नकारात्मक होता है उसके मायने, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हिसाब से देखते हैं तो वी आर नॉट सीन एज ड्रेडेड, आई थिंक वी आर सीन मोर एज प्रोटेक्टर,
1: नो, इट्स
0: और
1: ड्रेडेड
0: हमारा
1: फॉर दी
0: यस या
1: पीपल
0: ड्रेडेड, इट
1: हु
0: इज़
1: यू
0: ड्रेडेड फॉर
1: फाइट
0: पीपल,
1: अगेंस्ट।
0: या वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, सो
1: या
0: दैट वे यस, बट अदरवाइज़ आजकल जिस तरीके का माहौल है,
1: जी
0: कई तबकों में सेना को एक ड्रेडेड आइडेंटिटी भी दी जाती है, लेकिन आई थिंक वी आर वेरी टफ विद पीपल हुम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, बट वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन हु इज़ ऑन आवर साइड।
1: तो आप इतना टाइम थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ की लैंग्वेज वगैरह कुछ सीखी?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो ज़रूरी है,
1: ओके
0: लोगों के साथ अगर हमारे को रिश्ते जोड़ने हैं तो फिर वहाँ की भाषा भी सीखनी पड़ेगी।
1: राइट, कुछ बताइए ना वहाँ पे, अब जब आपकी पहले पोस्टिंग हुई, या कोई कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपको याद आता हो, एंड यू सेइंग फाइनली मैं अब आर्मी के साथ हूँ और मैं ऑपरेशंस में हूँ।
0: देखिए, वहाँ तो day 1 से ऑपरेशंस चलते हैं,
1: ओके
0: मुझे अभी मैं बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा किसी ऑपरेशन के,
1: ओके
0: लेकिन जैसे आपने बताया मुझे वहाँ पर गोली भी लगी एक एनकाउंटर में
1: ओके
0: जो सुरनकोट में हुआ था।
1: ओ आई सी, आप
0: इसके
1: कुछ
0: अलावा
1: इलाबोरेट करना चाहेंगे?
0: नहीं,
1: ओके
0: बस एक एक जगह थी जहाँ पर हमें सर्च ऑपरेशन करना
1: ओके
0: था,
1: डन
0: और वहाँ पर जैसा कि किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है, आतंकवादियों से सामना हो गया और मुझे गोली लग गई,
1: ओके
0: बट नॉट इट वाज नॉट वेरी सीरियस इंजरी,
1: ओके
0: और ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, और इसमें बाद में हमें आइडेंटिफाई किया हमने कि कौन था इसके पीछे,
1: ओके
0: लेकिन इस तरीके के वाकये मेरे साथ हुए हैं, मैं बच गया, लेकिन हमारे बहुत बहादुर जवानों और अफसर्स ने अपनी जान की बाजी लगाई है, अपनी जान का बलिदान दिया है। मेरे बहुत साथी, मैं जिस बैच से बिलोंग करता हूँ उस बैच में वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट 30 of our batchmates for various reasons.
1: Oh, I see.
0: So the cost is quite high.
1: Yes.
0: But that is a cost that needs to be paid.
1: For the nation.
0: Yeah, for the nation. And for the people of this country.
1: एक नशा है ना आप लोगों को कि नहीं यार वर्दी पहनी है बस अब सिर्फ देश ही दिखता और कोई नहीं दिखता
0: नशा है जुनून है एंड आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट लव
1: मैंने नशा इसलिए बोला क्योंकि आपने एक सॉन्ग सेलेक्ट किया हुआ है उसके बोल ही कुछ ऐसे हैं
0: हाँ पहला नशा
1: जी
0: और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना
1: एनी स्पेसिफिक रीजन
0: हाँ इसका रीजन दो तीन रीजन है पहला रीजन उसका ये है कि ये मूवी जो जीता वही सिकंदर मैंने यही दिल्ली में रिड्स थिएटर होता था कश्मीरी गेट के बाहर तो मेरे भाई के साथ मैंने ये मूवी देखी थी मैं आई थिंक 11th या 12th में था और वो मुझे याद है वो गाना पूरा इट इज इम्प्रिंट ऑन माय माइंड और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैंने इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून भी लगाया था तो सब लोग सोचते थे ये क्या है पहला नशा तो आई यूज्ड टू से जो मैंने अभी आपको कहा है कि आर्मी इज आवर फर्स्ट लव
1: सर बात तो आर्मी के आगे भी होगी इस गाने को सुनते हैं फिर पूछता हूँ किसके लिए आपने गाया था ये संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप और हमारे साथ ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं स्टूडियो में

0: तो हम अपने सुनने वाले को बता दें कि आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो अभी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और इंडियन आर्मी की शान। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, माध्यम व्हाट्सएप का ही है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें व्हाट्सएप भेजकर अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स। मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस की जो सेलिब्रेशंस हैं, जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं, तो आप अपने भाव यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं। नंबर है 9868107070, 9868107070। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी से मैं अभी जानना चाहूँगा कि आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो बहुत लंबा अरसा आपने वहाँ पे बिताया है। यू मस्ट हैव सीन द समर्स एंड द विंटर, सारे वेदर आपने वहाँ पे देखे होंगे, तो कुछ शायरी वारी भी तो निकली होगी कभी ना कभी, कुछ मन तो किया होगा ना, कुछ गुनगुनाने का, जैसे आपने ये गीत हमें सुनवाया, कुछ और भी आपने कुछ लिखा, कुछ भाव प्रकट किए वैसे?
1: हाँ, जम्मू कश्मीर में मैंने वक्त गुजारा, वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुक बनाए
0: जी,
1: और दो किताबें मैंने लिखी हैं।
0: ओके,
1: एक किताब है मुखबिर, विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज।
0: मुखबिर, ओके,
1: मुखबिर मतलब इन्फॉर्मर होता है, और ये 17 कहानियाँ हैं इसमें।
0: ओके,
1: सब जम्मू कश्मीर की कहानियाँ हैं।
0: अच्छा,
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की कहानियाँ हैं।
0: ओके,
1: वहाँ के लोगों की कहानियाँ हैं।
0: ओके,
1: और दूसरी किताब मेरी अभी आई है, अमन के फरिश्ते। ये कहानी है, दिस इज़ नॉवल, ये जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रांत के पुंछ जिले में सूरनकोट एक जगह है।
0: okay.
1: वहाँ पर एक यंग मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसकी कहानी है, और ये किताब अभी 5 महीने पहले ही आई है। दोनों किताबें राजपाल एंड सन्स ने पब्लिश की हैं, और इन दोनों किताबों में मैंने जो भी जम्मू कश्मीर में देखा, मेरे साथियों ने जो देखा, सो इट इज़ जस्ट ए कलेक्टिव एक्सपीरियंसिस, ऑफ कोर्स इट इज़ फिक्शन एंड रियलिटी कम्बाइंड।
0: मैं आपसे मुखबिर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, आपने कहा कि उस वहाँ पे तरह तरह की कहानियाँ हैं, तो ये कहानियाँ जब आप वहाँ सर्व कर रहे थे आपने तब लिखी या तब मन में बनाए और फिर बाद में?
1: ये कहानियाँ मेरे दिमाग में आती रही, जो मैं देखता रहा
0: जी,
1: जो मेरे साथी देखते रहे। हालांकि किताब ये 3-4 साल पहले आई है
0: जी,
1: कुछ कहानियाँ मैंने तब लिखी जब मैं वहाँ से वापस आ गया
0: जी,
1: और कुछ कहानियाँ मैंने वहाँ पर रहते हुए लिखी, तो मिला जुला संगम है ये। लेकिन जहाँ तक फीडबैक का सवाल है, काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इन किताबों को पढ़ के, इन कहानियों को पढ़ के उन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में एक नया नज़रिया मिला।
0: ओके,
1: और मेरे लिए एज ए राइटर
0: जी,
1: इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती।
0: कुछ कुछ कहानियों का कुछ अंश यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहेंगे?
1: हाँ, इसमें 17 कहानियां हैं, जैसे कहानी मुखबिर जो पहली कहानी है मुखबिर, जिसके टाइटल जिसका ऊपर है किताब का, वो कहानियां एक बारामूला के पास गुलाम हसन नाम का इंसान रहता है।
0: ओके,
1: जो कि फौज के लिए मुखबिरी करता है।
0: ओके, दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल नेम्स राइट?
1: या सम ऑफ दीज नेम्स आर रियल,
0: रियल आल्सो,
1: बट मोस्टली इट इज हाइपोथेटिकल। मैंने क्या किया इसमें, जो मेरे साथ रहे लोग
0: जी,
1: जो मेरे साथ रहे, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, जो मेरे साथ जुड़े रहे, हमने कहीं ना कहीं जो किरदार थे एज माई ट्रिब्यूट, हमने उनके नाम रख दिए। सो मे नॉट बी रियल, बट समवेयर दे डू एग्जिस्ट।
0: स्पाई नेम्स कह लो?
1: हाँ, स्पाई नेम्स कह लीजिए। कई असली नाम हैं, जैसे मेरे कोई साथी हैं उनके नाम पर, जो मेन किरदार है उनके नाम पर।
0: मेरा भी एक नाम है,
1: आपके नाम पर भी लग देंगे अगली किताब।
0: मेरा नाम रखा हुआ है।
1: अच्छा, क्या रखा हुआ आपका नाम?
0: फाल्कन वन।
1: अच्छा, आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल में भी फाल्कन वन आया था, जब आपने मुझे पहली बार कॉल किया था तो मैंने कहा ये फाल्कन वन कहीं किसी खतरनाक किसी इंसान का फोन आ रहा है। लेकिन फिर जब मैंने आपसे बात की और आपकी आवाज़ सुनी, तो मुझे फिर पता लगा कि अच्छा, आप तो ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहे हैं, लेकिन जो

0: स्क्रीन पे नाम आया था फैल्कन, वो सच में काफी खतरनाक था।
1: मेरे एक दोस्त भी हैं, आज ही बने, उनका नाम है टैनी।
0: हाँ, वो उनसे आप मिलते रहिए, आपको उम्मीद है मजा आएगा।
1: मेरे सामने बैठे हैं टैनी।
0: हाँ,
1: सही कह
0: मुझे
1: रहा हूँ,
0: फौज में, हाँ मुझे फौज में लोग, फौज में एक रिवायत है
1: आपके भी
0: निकनेम्स
1: व्हाट्सएप
0: की।
1: व्हाट्सएप की इमेज के साथ आया था टैनी स्पीकिंग।
0: हाँ, तो हमारी फौज में एक रिवायत है
1: जी
0: निकनेम्स की। मडवाल को मैडी बोल देते हैं,
1: ओके
0: संवाल को सैम बोल देते हैं, तो यशराज तो यश बोलेंगे। तो यू नो, वी हैव ए विद लव एंड विद अफेक्शन वी गिव निकनेम्स।
1: ओके
0: शायद हर पेशे में होता होगा, लेकिन फौज में कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा अपनापन है। तो मुझे फौज में लोग टैनी कहते हैं, सीनियर जूनियर सब। कोई सर भी बोलता है तो टैनी सर बोलता है, तो दैट इज़ हाउ
1: एंड यू
0: टैनी
1: एंजॉय
0: केम।
1: इट, वी एंजॉय दीज नेम्स,
0: या
1: इज़न्ट?
0: बिकॉज दे आर सेड आउट ऑफ अफेक्शन, और कुछ फिर आदत बन जाती है लोगों
1: आदत
0: की।
1: बन जाती है, एक अपनापन भी होता
0: एक
1: होगा।
0: अपनापन तो है, काफ़ी अपनापन है।
1: तो ये जो फिल्म्स में हम देखते हैं, जैसे टाइगर कॉलिंग बारा सिंगा, बारा सिंगा टू टाइगर, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे।
0: हाँ, क्योंकि जब आप रेडियो पर खासकर बात करते हैं
1: जी
0: तो कुछ कोड वर्ड्स होते हैं,
1: ओके
0: तो टाइगर, लैम्ब, लायन, इस तरीके के होते हैं जो सेट होते हैं, और इसके बाद कुछ इंडिविजुअल नेम्स होते हैं।
1: ओके
0: सो दीज आर कॉल साइंस बेसिकली।
1: कॉल साइंस, यस,
0: तो यस, दिस इज़ ट्रू, बट फिल्मों में थोड़ा ज़्यादा ग्लैमरस कर देते हैं उसको।
1: ग्लैमरस कर देते हैं। जी हाँ, मुझे याद है कि यहाँ पे हमने ग्रुप कैप्टन मुनीश यादव को आमंत्रित किया था संदेश टू सोल्जर्स में। द पायलट हु फायर्ड एट द टाइगर हिल फ्लाइंग द मिराज 2000 अलोंग विद ग्रुप कैप्टन रघुनाथ नाम्बियर, तो वो आए थे। तो हम बताया, वो जो 25 या 26 सेकंड की जो क्लिप है यूट्यूब में, जहाँ एयरफोर्स ने टाइगर हिल पे अटैक किया था लेजर गाइडेड बॉम्ब, तो मैंने उनसे पूछा था आपका कॉल साइन क्या है, तो हंसने लगे, बोले इट वॉज टॉम कैट।
0: हाँ, एयरफोर्स में बड़े स्टाइलिश नेम्स होते हैं,
1: जी।
0: उनके कॉल साइंस आर क्वाइट स्टाइलिश, दैट वे वी आर ए लिटिल ग्राउंडेड।
1: तो कमिंग बैक टू गुलाम अहमद,
0: हाँ, गुलाम हसन,
1: गुलाम हसन,
0: गुलाम
1: ओके
0: हसन, तो ये गुलाम हसन की कहानी है
1: जी
0: जो कि वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के साथ काम करता है,
1: जी
0: और किस तरीके से वो अपने आप को साबित करता है। ये वो कहानी है, उस इलाके में एक टेररिस्ट ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आ जाता है,
1: ओके
0: और वहाँ पर जो टीम कमांडर है वो उसको टास्क देता है,
1: ओके
0: कैप्टन अभिमन्यु, कि आप पता करें, और वो पूरी जी जान लगा देता है। और देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट इन दी एंड अबाउट व्हाट हैपेंस टू गुलाम हसन। तो ये
1: ओके
0: कहानी है,
1: ओके
0: एक कहानी है मुजाहिद, जो एक बहुत यंग लड़के इम्तियाज़ की कहानी है, ये सूरनकोट की कहानी है,
1: ओके
0: और इसमें जो मेन किरदार है वो इम्तियाज़ है, और
1: ओके
0: दूसरा कैप्टन समर है। कैप्टन समर इम्तियाज़ को ट्रेन करता है, उसको पाकिस्तान भेजता है लश्कर तौबा के साथ काम करने के लिए, और फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है वो आप किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। बट इट इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी टेंडर एंड येट ए वेरी करेजियस स्टोरी। फिर एक
1: इट्स
0: कहानी है लव जिहाद,
1: लव
0: उसमें
1: जिहाद, ओके
0: लव जिहाद एक कहानी है पाकिस्तानी टेररिस्ट की, जो हिंदुस्तान आता है घुसपैठ करके जिहाद के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको हंडवारा में एक लड़की के साथ इश्क हो जाता है, और उसी वक्त वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं कर्नल ऋषभ, उनको ये सब बात पता लगती है। तो वो किस तरीके से इन दोनों के रिश्ते को यूज़ करते हैं, और किस तरीके से तीनों मिलकर फिर भारतीय सेना के लिए काम करते हैं, ये उस कहानी का मेन प्लॉट है। तो आप पढ़ें कहानी, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस।
1: लेडीज के हाथ में वो पावर होती है, दे कैन चेंज एनी बडी, है
0: या आई आई दैट्स व्हाट
1: ना?
0: एवरीबॉडी
1: कुछ होता
0: सेज,
1: है सर,
0: दैट्स व्हाट एवरीबॉडी
1: कुछ ना
0: सेज।
1: कुछ तो होता है सर। मेरे पास बहुत सारे ना ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी वो भी लेता हूँ। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें मैसेज कर चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। तेलंगाना से एम आर मधुसूदन आपको 80th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय, और हमारी कंट्री जो 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है एडवांस में ही, वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं।
0: मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं।
1: जी विश विजय कुमार विश्वनाथन जी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से हमें एक मैसेज भेज रहे हैं। संदेश टू सोल्जर्स दोस्तों आप सुन रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ इस समय ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं, केवल एसएमएसएस, केवल व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। नंबर है 9868107070, 9868107070।

0: और एक और मैसेज हमारे पास आया है, एंड दिस इज शमीम रजा. लोकेशन कहाँ से वो उन्होंने नहीं बताई, सो वी विल नॉट आज दैट. मिस्टर पाटिल ने हमें एक मैसेज भेजा है, और उन्होंने आपके बचपन और शिक्षा के ऊपर जो बात पूछी है उसके बारे में आप बता ही चुके हैं. जय हिंद सर. सर, मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ. मैं नियमित रूप से पढ़ नहीं पाता, और एनडीए के लिए अगर कोई किताब आप मेंशन कुछ सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ बताएं. सूर्य कुमार हैं ये, कुछ आप कहना चाहेंगे?
1: हाँ, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आजकल जो 12th का सिलेबस होता है, रिटन एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसके लिए काफ़ी गाइड्स एंड काफ़ी गेस्ट पेपर्स आते हैं.
0: जी
1: तो मुझे तो अभी अंदाज़ा नहीं है. एक्चुअली मैंने तो एनडीए 25-30 साल पहले किया था,
0: एब्सोल्युटली.
1: लेकिन आई विल चेक कि अभी आजकल लोग किस किताब को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा सफलता किसमें मिल रही है. लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर आप 11वीं और 12वीं का जो CBSE का सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से करें, तो शायद आपको एनडीए का रिटन एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी. और एनडीए में रिटन एग्ज़ाम सिर्फ पहला पड़ाव है, क्योंकि मेन उसमें SSB होता है. तो अगर एक बार आप रिटन की तैयारी कर लेते हैं और उसमें क्लियर कर जाते हैं, तो देन SSB इज़ एक्चुअली ए टफर नट टू क्रैक.
0: राइट देन. यहाँ पे यश शिंदे मुंबई से हमारे को मैसेज भेज रहे हैं. ब्रिगेडियर सुशील जी के जज्बे को सलाम. ऐसे वीरों को हर हिंदुस्तानी सलाम करता है. आपकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं. भारत माँ के सच्चे और वीर संतान हैं आप. सुशील जी, आपकी सेवा और त्याग नमन है. इस मुल्क की हिफाजत को मजबूत चट्टान की जरूरत है, वो आप हैं. इज ऑलरेडी बिकम अ फैन ऑफ यू सर.
1: और मैं ये सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है. मुझे क्या, पूरे हमारे जितने भी साथी हैं, हम सिर्फ इस भरोसे से, इस उम्मीद के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं ताकि ये देश महफूज रहे, ताकि देशवासी खुश रहें. और जब हमारे देश के लोग इस तरीके का जज्बात जाहिर करते हैं, तो फिर और भी अच्छा लगता है,
0: बहुत सारे
1: और
0: और
1: हमारा
0: मैसेज.
1: जो
0: जी,
1: निश्चय है, वो दृढ़ संकल्प है, वो और मजबूत होता है.
0: दैट्स वंडरफुल. कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जल्दी से लेना चाहूँगा. आस्था शर्मा हिमाचल प्रदेश से, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी टू लिसन टू यू. और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि उन्होंने भी एनडीए के एग्जाम दिए हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं. फायरमैन भरत कुमार चमोली गढ़वाल से लिख रहे हैं कि हमारा सल्यूट जो है वो स्वीकार करें. एंड ऑफकोर्स हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, उनके खुद के दादा पापा और 3 भाई आर्मी में सर्व कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है. तंवर जी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. श्री गंगानगर जिला से डॉक्टर गणेश अरोड़ा हमारे को ये मैसेज भेज रहे हैं. नितेंद्र दास ने असम से हमें मैसेज भेजा है. सूरत से उल्हास पाटिल हमें मैसेज भेज रहे हैं. यू आर द रियल हीरो. वृंदावन से भी मैसेज आ गया रोहित रे का. एंड ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सारी बातें, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं जनाब, जिनका नाम है शशि सिंह यादव. एंड ऑफ कोर्स एक और मैसेज हम लेना चाहेंगे यहाँ पे, कि दिल से सलाम कर रहे हैं मोनीश इद्रिस उत्तर प्रदेश से, बिलासपुर से आपको. सो यंगस्टर्स हैं बहुत सारे जो मैसेज भेज रहे हैं. मैंने आपसे कहा था कि लिसनिंग बहुत ज़्यादा है संदेश टू सोल्जर्स की. इससे पहले कि हम अगला म्यूजिकल ब्रेक लें, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारी जो प्रेमी इंस्टीट्यूशन है वहाँ के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं. कुछ आप बताइए कि जब आप नई जनरेशन के युवाओं को देखते हैं, व्हाट चेंजेस डू यू सी कंपेयर टू द यंगस्टर्स इन योर टाइम?
1: हाँ, मैं भारतीय सैन्य अकेडमी जो देहरादून में है, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहा था,
0: जी
1: और बहुत गर्व महसूस होता है जब हम नई पीढ़ी को देखते हैं,
0: ओके
1: उनकी उनकी काबिलियत, उनका जुनून, और हाउ वेल इन्फॉर्म्ड दे आर. बहुत ये बातें होती हैं कि नई पीढ़ी में कमज़ोरी है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकते,
0: ओके
1: उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू आर विद यंग पीपल, यू योर सेल्फ फील यंगर. आपको लगता है कि इनकी एनर्जी जो है वो कमाल की है. और जब आप एकेडमी में होते हैं, तो आपको मौका होता है एज ए इंस्ट्रक्टर टू शेप देयर पर्सनैलिटी, एंड आई थिंक दैट्स ए प्रिविलेज. और अभी भी जब हमारे जो कैडेट्स हैं, अब अफसर बन गए हैं सारे, जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है देख के कि उनको, वी हैव सीन देयर इंटायर जर्नी, दे केम एज नोविसेज एंड नाउ दे आर कमांडिंग बटालियंस एंड डूइंग सो वेल. सो इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टू इंटरेक्ट विद
0: तो
1: यंग.
0: आपका जो द प्रोसेस ऑफ डीलिंग और टीचिंग देम और ट्रेनिंग देम इज एज टफ एज योर गुरुज वर, और इट्स गॉन टफर और अंडरस्टैंड नहीं यार इसको,
1: देखिए ये जो है डिबेट हमेशा रहती है,
0: रहती है।
1: हमें लगता है कि हमने ज़्यादा मुश्किल वक्त झेला है और हमारे बाद वाली, अब मैं पीठ तो नहीं बोलूँगा ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ,
0: अरे
1: लेकिन
0: नहीं सर, यू लुक
1: लेकिन
0: एब्सोल्युटली फिट,
1: या सो
0: फाइन,
1: लेकिन
0: यंग।
1: वी आर फ्रॉम द सेम जनरेशन, बट आई थिंक दिस इज एवरी वन सेज कि वी हैव सीन टफर टाइम्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सही है, शायद हमने ज़्यादा मुश्किलें झेली हैं।
0: ओके, आपने एक सॉन्ग सजेस्ट किया था, कुछ आपके ट्रेनिंग टाइम्स और कुछ आपके ग्रुप से रिलेटेड, जो मैं चला चुका हूँ।
1: हाँ ये कजरारे गाना है, जब हम IMA में पोस्टेड थे तो हम यंग ऑफिसर्स वी वर इंस्ट्रक्टर्स, तो हम ये गाना इतना चलाते थे दिन रात, तब ये नया नया गाना आया था, और ये गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, मेरे दोस्त याद आ जाते हैं, एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग।
0: थोड़ी और याद ताज़ा करते हैं आपकी, ये गाना हम भी चलाते हैं, और कुछ ताज़ी, उस समय की ताज़ी बात कुछ याद आ जाए तो आप शेयर करिए हमारे साथ। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली और मेरे साथ खास मेहमान बैठे हैं ब्रिगेडियर।
2: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम ने

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मुनीश जॉली और मेरे साथ यहाँ डियर सुशील अमर जी बैठे हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ और ढेर सारे श्रोता जो हैं जो हमें मैसेज भेज रहे हैं, उनके नाम मैं बहुत जल्दी लेना चाहूंगा। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी से कैप्टन वी के एस करके IPS हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें मैसेज भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस मैसेज के लिए। कोटा राजस्थान से राम गोपाल शर्मा जी हमें यहाँ मैसेज भेज रहे हैं, एंड ऑफकोर्स मीरा तिवारी नोएडा से कह रही हैं कि आपके बारे में, ब्रिगेडियर सुशील नवर जी के बारे में सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद कोर ऑफ सिग्नल में थी जब कारगिल युद्ध चल रहा था। दैट्स वंडरफुल टू नो मैम। आशा है कि आज की जनरेशन इनकी कहानी सुन के इंस्पायर हो और देश की इज्जत रखें और नेशनल डेवलपमेंट में योगदान दें। हम भी यही आशा करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम सुशील जी से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। वीर सैनिकों को नमन कर रहे हैं शंभवी पांडे, एंड ऑफ कोर्स वी आर मूविंग अहेड विद लॉट ऑफ अदर मैसेजेस, जहां पर हमारे को सूर्य कुमार एक मैसेज भेज रहे हैं, वो भी NDA ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहम्मद अली ने विशाखापट्टनम से 80वें इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं लिखी हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपकी लिखी हुई किताब जरूर पढ़ूंगा, और उन्होंने कहा है इंशाल्लाह मैं भी अपने देश भारत के लिए सर्व करूंगा एक दिन। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ मैसेजेस हमारे पास जो आ रहे हैं। ग्राम ढाणी कुतुबपुर तहसील जिला हासी हरियाणा से रामधारी अवाना ने हमको मैसेज भेजा है और बहुत प्यारा सा मैसेज बनाकर आपके लिए भेजा है, एंड ऑफ कोर्स बाकी जो नाम मैं लेता रहूंगा धीरे धीरे बहुत जल्दी से, जैसे भवानी उन्नाव से सुनील कुशवाहा ने हमें मैसेज भेजा है, भुवन जोशी हल्द्वानी से हमें मैसेज भेज रहे हैं और तिरंगा भी उन्होंने भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके साथ जब हमने ये गाना सुना, खैर मैं फोकस कर रहा था मैसेजेस पे, वी विल गेट बैक टू इट लेटर, आप हमने बात की कजरारे की, तो वर यू आल्सो वेरी नॉटी जब आप एकेडमी में थे, कुछ आपने मिस्चिफ नहीं की था?
1: हाँ, मिस्चिफ तो हर इंसान करता है मेरे ख्याल से।
0: ओके,
1: हमने भी किए, सबने किए।
0: ओके,
1: शायद लेकिन उतने नहीं किए जितने अब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा और करना चाहिए था।
0: ओके,
1: लेकिन आज आप लगता है सारे राज खुलवाने की ठान कर आए हैं।
0: अच्छा लगेगा ना, सिविलियन, देखिए सिविलियन को लगता है कि हम आर्मी के जवान, हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो अफसर हैं, कभी मुस्कुराते नहीं हैं। आप मुस्कुरा भी रहे हैं, वो कभी मीठा नहीं बोलते, आप तो मिश्री हैं। अनुराग पांडे एक रेडियो जॉकी हैं यार मथुरा में, वो एक मैसेज भेज रहे हैं और ही इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू, तो हमारे सिविलियंस की थोड़ी सी वो बदल जाएगा ना, कि आपकी उस यू नो सॉलिड बॉडी के अंदर भी एक विनम्रता, नम्रता, दिल है।
1: हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फौजी जो होते हैं वो बहुत नरम दिल होते हैं।
0: ओके,
1: इनसाइड द सॉफ्ट एक्सटीरियर, हार्ड एक्सटीरियर इज अ वेरी सॉफ्ट इंटीरियर, और जब आप लोगों से मिलते हैं तब उनको अंदाजा होता है, तो शरारतें तो लाजमी हैं।
0: पर आप लगते नहीं सर कि आपने शरारती की होगी।
1: नहीं, जैसे आप वाकई की पूछ रहे थे
0: जी,
1: तो मुझे याद है हम यंग ऑफिसर थे।
0: okay.
1: तो वेरी ब्रीफली माऊ में हम यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे। okay. उस टाइम टाइटैनिक मूवी आई थी।
0: okay.
1: ओपन एयर थिएटर है, बहुत मज़ेदार, वहाँ पर बहुत मस्ती होती है ओपन एयर थिएटर में माऊ के इन्फेंट्री स्कूल में। तो जब टाइटैनिक में वो शिप डूबने लगा तो किसी ने बोला यार कुछ ये शिप डूब रहा है तो हम भी कुछ करते हैं, तो मैं चुपके से हम लेके गए थे एक पटाखों की लड़ी।
0: okay.
1: तो बाकी तो कोई गया नहीं, मैं गया और जैसे ही मैंने वो लड़ी जलाई, उजाला हुआ, उधर शिप डूब रहा था और उधर सबको पता लग गया कि ये भाई साहब जो हैं, और उसमें से एक पटाखा हमारे एक DS थे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, वो उनकी मैडम भी आई हुई थी देखने के लिए, और वो पटाखा सीधा उनकी झोली में जाके गिरा, शायद बड़ी कीमती साड़ी में छेद हो गया, तो पीछे से मुझे आए कि आप जरा बाहर आइए।
0: बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, सर के ऊपर गिरता तब तक ठीक था,
1: लेकिन उस टाइम लोग थोड़े ज्यादा जिंदा दिल थे ऐसा मुझे लगता
0: पर
1: है।
0: हुआ क्या उसके बाद?
1: कुछ नहीं, मुझे बताया गया कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा एक इमेज अच्छी थी, पर यह हुआ कि उसके बाद वो जो हमारे सर थे उन्होंने और बाकी सब इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे क्रैकर बॉय कहना शुरू कर दिया।
0: okay.
1: तो क्रैकर बॉय कम एयर, बट अच्छा था, देयर वाज नो इल विल, तो ऐसे कई सारे किस्से हैं।
0: टैनी द क्रैकर बॉय,
1: यस,
0: ऐसे बुलाते होंगे आपको?
1: हाँ, मतलब अपने अपने अंदाज से बुलाते थे।
0: राइट, यहाँ पे एक जनाब और हैं दीपू, उन्होंने कहा सर आप अपनी किताब के नाम दोबारा ले लेंगे, बहुत सारे लोग परचेज करना चाह रहे हैं, दे वांट टू रीड दी इंसिडेंट्स एंड दी एक्सपीरियंसेस।
1: हाँ, तो पहली किताब है मुखबिर, जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, और दूसरी किताब है अमन के फरिश्ते। ये दोनों किताबें हिंदी में हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में हैं, और राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित की हैं।
0: राइट देन, राजकुमार पाल यूपी जौनपुर से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी बातें सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल हैं, वो आपको सलाम भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी बहादुरी और राष्ट्र सेवा को सलाम। मैं हरियाणा पुलिस में एक सिपाही हूँ, लेकिन हमारी सीमाएं आप जैसे वीरों की

0: से सुरक्षित हैं। ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ मस्त और व्यस्त रखें। राम हरि अवाना। और ये किस जगह पे हैं वो सिक्योरिटी कारण से हम लोग नहीं बता सकते, बट साथ ही साथ कश्मीर से एक मैसेज आया है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, एंड केश राजपूत है, वो एक मैसेज भेज रहे हैं। मेरे पास लगभग 12 मिनट बचे हैं सर, कैन वी डू सम टफ टॉकिंग?
1: या श्योर
0: ओके, नाउ दिस इज द रियल टॉक सर, इसमें कोई भी स्क्रीनिंग नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, अवेयरनेस हुई। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ऑफ कोर्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मॉडर्न एरा कॉम्बैट, लेकिन हमारी आर्मी में, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में दिन पर दिन कोई ना कोई इनोवेशंस, कोई क्रिएशन अलग सी तो हो ही रही होगी
1: हाँ, आप अखबार में
0: मजे का भी।
1: पढ़ते हैं
0: जी
1: और पब्लिसाइज भी होती है कई
0: ओके
1: चीज़ें, और लड़ाई के मायने बदल रहे हैं, किस तरीके से जंग लड़ी जाती है वो मायने बदल रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, ड्रोन, सैटेलाइट्स और बाकी प्रिसीजन वेपन्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका आउटलुक भी चेंज हो रहा है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, दी वैल्यू ऑफ नैरेटिव, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं और होनी भी चाहिए।
0: मुझे ये बताइए, अभी जैसे ईरान, अमेरिका, इज़राइल को लेके जो भी वहाँ पे कॉम्बैट हो रहा है, या कहीं पर भी विश्व भर में यूक्रेन, रशिया को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर भी हमारे कोई ना कोई इंटेलिजेंस, कोई टैप तो रखते होंगे ना कि क्या क्या वेपन यूज़ हो रहा है, कौन सा वेपन कहाँ काम आ रहा है, कितना यूज़फुल है, नहीं है। एम आई राइट टू मेंशन लाइक दैट?
1: यस, बिकॉज आर्मी इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये नहीं कि सिर्फ हमारी सेना, बट वॉर्स कैसे लड़ी जा रही हैं उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन रिफाइन आर टैक्टिक्स, वी कैन रिफाइन दी वे वी यूज़ आवर वेपन्स। तो दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और सेना में लोगों को लगता है कि जब लड़ाई नहीं हो रही तो क्या कर रहे होंगे, जब हम लड़ाई नहीं हो रही तो हम लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, और उस तैयारी में ये सब स्टडी करना भी शामिल है।
0: ओके सर, मैंने आपसे बोला था मैं सीधे सवाल सिविलियन के पूछूंगा आपसे। 24 घंटे हम लोग चौकन्ने हैं बॉर्डर पे, अपनी स्काईज को देख रहे हैं कि कोई वहां से कोई वर्सेटाइल ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा।
1: हाँ ऑब्वियसली, आई मीन ना सिर्फ स्काई, टुडे थ्रेट इज फ्रॉम एवरीवेयर। एंड जब तक आपने जंग की बात की, मैं ये भी बोलूँगा कि इट्स नॉट आर्मीज विच फाइट ए वॉर, इट इज़ नेशंस विच फाइट ए वॉर।
0: जी
1: तो हम सब चौकन्ने हैं, हम सबको चौकन्ना रहना भी चाहिए।
0: तो आपकी इंटेलिजेंस 24 घंटे काम करती है। कुछ देर पहले आपने कहा कि हम, हमारे भी कुछ लोग जो हैं सरहद पार जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके आते हैं, हमारे भी जाते हैं, बट लेट मी टेल यू दैट वी आर नॉट बॉर्डरिंग द वेस्ट, वी आर बॉर्डरिंग 360 डिग्री, हमें अपनी रखवाली करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि थ्रेट हमें एक ही कंट्री से, या हमें चौकन्ना नहीं होना बाकी जगह। तो हर जगह का पैटर्न अलग है इंटेलिजेंस का, क्योंकि भाषाएं अलग हैं, टेक्नोलॉजी किसी के पास सुपीरियर है, किसी के पास नहीं है।
1: देखिए, एडवर्सरी डिफरेंट हैं, हालात डिफरेंट हैं, ज्योग्राफी डिफरेंट है, पॉपुलेशन डिफरेंट है, सो थ्रेट्स भी डिफरेंट हैं, कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज भी होती हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, ये ज़रूरी है कि हम उन डिफरेंट पैटर्न्स को समझें, इसीलिए हर तरफ देखना पड़ता है।
0: इज इट इजी टू प्रिपेयर द स्पाइस और पीपल इन द इंटेलिजेंस, हाउ डिफिकल्ट अ जॉब इट इज किसी भी कंट्री के लिए?
1: इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ डेंजरस, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।
0: एक टफ सवाल पूछ लूं सर,
1: पूछिए, आप
0: अगर
1: टफ ही
0: आपका,
1: सवाल पूछ रहे हैं।
0: आप आपका मन करे तो जवाब दीजिएगा। जब हम कहते हैं हमें इंटेलिजेंस चाहिए, तो इट्स नॉट लिमिटेड टू आर ओन कंट्रीमैन, इट कैन एक्सपैंड टू वेरियस अदर नेशनैलिटीज ऑल्सो, इज दैट ट्रू सर?
1: हाँ, अगर आप देख ही रहे हैं रोज दुनिया में क्या हो रहा है,
0: जी
1: हर जगह कोई ना कोई एजेंट पकड़ा जा रहा है, सो यू यूज ऑल मीन्स एट योर डिस्पोजल।
0: राइट, एक रसगुल्ला खिलाने का मन कर रहा है। आपको कोई भी प्यार व्यार नहीं हो सर? यू वर नेवर रोमांटिक इन योर लाइफ?
1: देखिए, हर इंसान रोमांटिक होता है,
0: आप भी थे।
1: और थे नहीं हैं, लेकिन किस मद्देनजर, किस मायने में है वो थोड़ा सा
0: नहीं, वो ठीक,
1: कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, बट
0: देश देश
1: यस।
0: से बहुत प्यार है, माय फर्स्ट लव। ठीक है सर, आपने गाना अपनी प्लेलिस्ट में हमें दिया है, बाहों में चलेगा, इसका क्या रीजन है?
1: हाँ, ये पुराना गाना है, अनामिका पिक्चर का, मूवी का,
0: कोई ना कोई तो रीजन
1: और
0: होगा सर।
1: हाँ, एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, उनको बहुत अच्छा लगता था ये गाना।
0: ओहो थी सर,
1: हाँ थी, और
0: ओहो
1: वो गाती भी थी गाना, और मैंने आपको बाकी गाने भी दिए हैं जो बाकी दोस्तों के हैं, लेकिन आप इसी

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, मेरा नाम है मुनीष जॉली। और एक और गाना है जिसकी ख्वाहिश यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर साहब ने रखी है, और वो गाना बड़ा सॉलिड है, मिक्का सिंह का। व्हाट अबाउट दिस? आई मीन वी आर जस्ट गेटिंग क्लोज, यू नो, एट द ब्रिंक ऑफ द आर टू क्लोज दिस शो, बट व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट दिस सॉन्ग सर? एकदम से मतलब पुरानी और फिर नया दिल में बजी गिटार।
1: नहीं, जब आपने मुझे बताया कि आप पसंदीदा गाने बनाएं
0: जी
1: बताएं, तो फिर एक मेरे अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों मिलके गाना बहुत एंजॉय करते थे,
0: ओके,
1: तो बस सुनी की याद आ गई और उन्होंने बोला ये गाना अगर नहीं बजेगा तो फिर देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
0: आप परफेक्ट बंदे हो इंटेलिजेंस के लिए, सारी बातें बोल देते हो पर कुछ भी नहीं बोलते। मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, उन्होंने कहा था अगर नहीं बजेगा तो बाहों में चले आओ, चलाया था, बहुत अच्छा लगता था। पहला नशा चलाया क्योंकि वो अच्छा था, कजरा रहे डांस करते थे बस, वो बताया आपने कुछ भी नहीं, यू नेवर रिवील्ड, बट आई थिंक इंडियन आर्मी ने सही बंदे को चूज किया सर इंटेलिजेंस के लिए।

0: तो समय ना हमारे पास बहुत कम है। क्या होता है ना, जब हम अपने फौजी भाइयों के साथ, फौजी अफसरों के साथ जो प्रोग्राम करते हैं ना, हमें लगता है कि एक घंटा बहुत कम है, अब बातें और होनी चाहिए। बट यू आर बीन हर्ड अक्रॉस द बॉर्डर, यू आर बीन हर्ड अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास आए हैं। सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। लेकिन अब यहाँ से आपका सफर कहाँ जाता है, वेयर डू यू टेक योरसेल्फ फ्रॉम हियर?
1: हम तो फौज में कुछ कह नहीं सकते कि अगला मुकाम, अगला पड़ाव क्या होगा। तो जहाँ भारतीय सरकार, भारतीय सेना में भेजेगी, वहाँ जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि वापस जम्मू एंड कश्मीर की तरफ रुख करेंगे और वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं, उसी शिद्दत, उसी जुनून के साथ।
0: तो वो एक कहावत ही ना, इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इज देयर इन कश्मीर, कुछ अलग बनाता है आपको। आपको प्यार हो गया उस जगह से, आप गए थे भारत माँ की रक्षा करने, आप रक्षा भी कराए और अपना दिल भी दिया है कश्मीर को।
1: नहीं, दिल, हाँ दिल की तो बात है, जम्मू कश्मीर मुझे पसंद है, लेकिन जहाँ पर भी मैंने

0: बहुत प्राउड फील होता था, बहुत गर्व महसूस होता था हमारे को दूसरे देश में जाके हिंदुस्तानी सेना का नाम रोशन करने में। इट वॉज एक्चुअली ए ब्लेसिंग।
1: तो अभी चलते चलते, क्योंकि अब समय की पाबंदी है, प्रोड्यूसर साहब ने इशारा कर दिया बहुत जल्दी हमें ये प्रोग्राम क्लोज करना है, आपके फाइनल वर्ड्स, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है।
0: ये जो भारतीय सेना एक पेशा नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस देश की सेवा करें। एंड हमारे सैनिक, वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी ब्रेव, वेरी करेजियस सोल्जर्स। और जो हिंदुस्तानी सेना और तीनों सेनाओं का मैं बात करूँगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, एंड ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस, आई थिंक वी जस्ट सर्व सेल्फलेसली, सेल्फलेसली। और हमें उम्मीद है कि इस देश और इस देश के नागरिक भी उसी शिद्दत के साथ देश की सेवा करेंगे जैसे हम करते हैं।
1: इट्स अ शेयर प्रिविलेज टू होस्ट यू सर।
0: इट वॉज एक्सट्रीमली गुड, एंड द वे पीपल वर रिएक्टिंग, आई थिंक इट जस्ट मोटिवेट्स अस इवन मोर। बहुत मज़ा आया।
1: देयर सो मेनी जिनके मैं मैसेजेस नहीं ले पाया, बट ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, आई थिंक जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देश की तरफ से, ये मेरा सैल्यूट कबूल कीजिए सर। जय
0: थैंक यू
1: हिंद।
0: सो मच। जय हिंद।
1: और इसी तरह हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को मंजूरी दे दी है। इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, गोबर, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। यह योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी। इससे कंप्रेस्ड बायोगैस देश के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख आधार बनेगी। योजना का उद्देश्य घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना, बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और देश भर में चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे चार लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
2: पहला फैसला बायोगैस से संबंधित है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम एक बनी है। और दूसरा असम में एक 4 लेन हाईवे का फैसला लिया गया है। टोटल 32,000 करोड़ रुपीस के ये दोनों प्रोजेक्ट और स्कीम्स मिला के हैं। हम सब जानते हैं कि भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है उसमें करीब 50% इम्पोर्ट करना पड़ता है। इस 50% इम्पोर्ट को कैसे कम करें उसके लिए लगातार कई प्रयास चल रहे हैं।
1: संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ

0: अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुदान की मांग लोक लेखा समिति की 39वीं रिपोर्ट में पहचाने गए 2 विशिष्ट मदों से संबंधित है। उधर लोकसभा ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को प्रतिबंधित करने के लिए कड़े औषधि नियमों को अधिसूचित किया है। यह नियम औषधि नियम 1945 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दायर सभी आवेदनों पर लागू होगा। इस संशोधन के बाद आवेदक को एक निश्चित अवधि के लिए आगे आवेदन करने से रोक दिया जाएगा। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। और खेलों में तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चाहिला और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। सायं के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा, रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर में सायं 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम में ईट राइट हैकाथॉन पर मेघा जखमोला और अनु अंथवाल से परिचर्चा, संचालन करेंगी रितिका पिंजोला। पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहता है सायं 5:45। इसमें आज श्रोता सुनेंगे चिट्ठी पत्री के साथ लोकगीत। किसान साथी कृषि जगत कार्यक्रम में आज सायं 7 बजे सुनेंगे प्रीति मंदोलिया से जानकारी, पहाड़ी अनाज पोषण और स्वाद का खजाना।

उम्मीद की किरण कार्यक्रम का समय रहेगा सायं 7:50। आज रात्रि 8 बजे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे भेंट वार्ता में डॉक्टर राधिका रतोड़ी से रमेश चंद्रा की बातचीत। विषय रहेगा स्तनपान माँ और बच्चे के लिए जरूरी। आपकी फरमाइश के फिल्मी गीत हमारे श्रोता सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

कल सुबह 11:10 पर श्रोता सुनेंगे 12वें हथकरघा दिवस के अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम का प्रसारण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

कल प्रातः 7:30 पर शैल संगीत कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे दुर्गा पटवाल के गाए गढ़वाली लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहता है प्रातः 8:30 पर। कल सुबह 9:30 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम अनुभव। 10:02 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा लम्हे। 10:35 पर लोक संगीत कार्यक्रम में हमारे श्रोता कल सुनेंगे धर्म सिंह राणा के गाए जौनसारी लोकगीत।

कल दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत हमारे श्रोता सुनेंगे मंजीत सिंह और साथियों के गाए शब्द। 12:23 पर बहने सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। कल इसमें आप सुनेंगे श्रीमती ज्योत्सना जोशी की कहानी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर। कल अपराह्न 4:02 पर हमारे श्रोता सुनेंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से राग मधुमत सारंग में बांसुरी वादन। कार्यक्रम होगा शास्त्रीय संगीत। अपराह्न 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम में कल के कलाकार होंगे पार्श्व गायक सुरेश वाडेकर। सायं 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। सायं 5:45 पर पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत में हमारे श्रोता सुनेंगे श्री गणेश कुमार काला से भेंटवार्ता। विषय रहेगा स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का खातिर आत्मिक ऊर्जा। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सायं के 5:10 हुए हैं। युवा साथी सुने कार्यक्रम युवाणी।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में आपका स्वागत है। मैं रीतिका।
1: और दोस्तों, मैं हूँ अतुल्य रावत। दोस्तों, कभी कभी इतिहास के कुछ दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं होते, बल्कि पूरी मानवता की स्मृतियों में दर्ज ऐसे अध्याय बन जाते हैं जिन्हें याद करना इसीलिए जरूरी है ताकि भविष्य उनसे कुछ सीख सके।
0: कल्पना कीजिए, एक शहर में हर दिन की तरह सुबह हुई है, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में हैं, लोग अपने काम पर निकल रहे हैं, सब कुछ सामान्य है। फिर एक तेज चमक और कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदल जाता है। एक शहर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाती है। उस दिन ने मानवता को ये एहसास कराया कि युद्ध की सबसे बड़ी कीमत अक्सर आम लोग चुकाते हैं।
1: बिल्कुल, और ऐसा ही एक अध्याय हमें लगभग 8 दशक पीछे ले जाता है दोस्तों। एक ऐसा क्षण जिसने विज्ञान, युद्ध और मानव जीवन को के अर्थ को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ ही सेकंड में एक पूरा शहर बदल गया दोस्तों, और मैं बात कर रही हूँ जापान के शहर हिरोशिमा की, जो कि 6 अगस्त 1945 की सुबह लगभग 8:15 पर इतिहास का पहला युद्धकालीन परमाणु बम, जिसका नाम लिटिल बॉय था, हिरोशिमा पर गिराया गया। अनुमान है कि वर्ष 1945 के अंत तक लगभग 1,40,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इसमें केवल सैनिक ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में सामान्य नागरिक, बच्चे, शिक्षक, डॉक्टर और परिवार भी शामिल थे।
0: और इस घटना के केवल 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा बम फैट मैन गिराया गया। वर्ष 1945 के अंत तक वहां भी लगभग 70,000 यानी 70,000 लोगों की जान जा चुकी थी। इन दोनों घटनाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा तो बदली, लेकिन साथ ही दुनिया के परमाणु हथियारों की भयावह क्षमता से भी सबको परिचित कराया।
1: दोस्तों, विस्फोट से हुई तबाही केवल उसी दिन तक सीमित नहीं रही। विकिरण के कारण आने वाले वर्षों में अनेक लोगों को कैंसर, रक्त संबंधी बीमारियां और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया और अनेक बच्चे ऐसे वातावरण में बड़े हुए जहां युद्ध के निशान दशकों तक दिखाई देते रहे।
0: दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी आज भी इस बात के साक्षी हैं कि परमाणु हमले की पीड़ा केवल उस समय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी गूंज कई पीढ़ियों तक सुनाई देती है। शायद यही वजह है कि आज दुनिया के अधिकांश देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात पर लगातार जोर देते हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में मानवता के हित में नहीं हो सकता। इतिहास की यही सीख हमें याद दिलाती है कि परमाणु हमला कभी भी समाधान नहीं हो सकता। यही कारण है कि हर वर्ष इन घटनाओं को दुनिया भर में केवल इतिहास के रूप में ही नहीं बल्कि मानवता की साझा स्मृति के रूप में याद किया जाता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और ये स्मृतियां हमें याद दिलाती हैं कि विज्ञान और शक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य मानवता की रक्षा और बेहतर भविष्य का निर्माण होना चाहिए। आइए इसी सकारात्मक सोच के साथ अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म उरी से, जिसे आवाज दी है शाश्वत सचदेवा और शांतनु ने।

0: दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
0: दोस्तों, उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण पहल ईट राइट यूथ हैकाथॉन 2026 के कार्यक्रम हाल ही में देहरादून के लोक भवन में आयोजित हुआ, जिसमें विजेताओं को टीम में सम्मानित भी किया गया। उसका उद्देश्य युवाओं के नवाचारों के माध्यम से स्वस्थ खानपान को बढ़ावा देना और भारत को कुपोषण मुक्त करना है। और इसी हैकाथॉन के विजेताओं से बातचीत कर रही हैं रितिका बिंजौला, चलिए सुनते हैं।
3: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैं रितिका और आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित ईट राइट यूथ हैकाथॉन के विजेता मेघा चकमोला और अनुज अंतवार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
3: और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने प्रथम पुरस्कार जीता है, और कैसा लग रहा है आपको अभी?
4: हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हमारा आइडिया सबकी नज़रों में आया है और हम ईट राइट यूथ हैकाथॉन भी जीते।
3: किस चीज़ की आपने पढ़ाई की है?
4: मैं SGRPG कॉलेज देहरादून में BSc PCM का छात्र हूँ।
5: मैं मेघा चकमोला, BA फाइनल ईयर।
3: तो क्योंकि आप एक ट्रेडिशनल साइंस बैकग्राउंड से नहीं आती, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस था, क्या आप सोचती हैं साइंस के बारे में और इस आइडिया के बारे में?
5: एक्चुअली 12th तक मेरे पास साइंस ही थी, उसके बाद मैंने आर्ट्स ऑप्ट की सिविल सर्विसेज के लिए, तो हमेशा से ही मुझे रुचि रही है ऐसे साइंस टेक एक्सपेरिमेंट्स में।
3: अनुज, कैसा आपका प्रोजेक्ट था, क्योंकि आपने फर्स्ट प्राइज जीता है, पहला इनाम है वो आप ही को मिला है, तो क्या आप सोचते हैं कि कैसे ये आपका इनोवेशन है वो यूनिक था?
4: तो हमारा सोल्यूशन था एक सोलर पावर्ड स्मार्ट कार्ड, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं यानी कि ठेले वाले भैया दीदी, वो सब्जियां बेचने के लिए जो कार्ट यूज़ करते हैं, हमने उसको अपग्रेड करने की सोची। उनकी सब्जियां दिन में धूप से और डस्ट पॉल्यूटेंट से ख़राब हो जाती हैं, तो उसका सोल्यूशन हमने ढूंढा था कि हम एक ऐसा कार्ट बनाएंगे जो सूर्य की आने वाली गर्मी से जो सब्जियां ख़राब हो जाती हैं उससे भी बचा सके, और जो पॉल्यूटेंट्स हैं उससे भी सब्जियों को बचा सके। तो हमने कार्ट डिज़ाइन करा और उसके चारों ओर PVC पैनल्स एंड सोलर पैनल्स लगाए, जिससे उसमें एनर्जी फ्लो होती रहे, और साथ ही साथ सेंसर्स एंड इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम रखा जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके और फल एवं सब्जियां लंबे समय तक सुरक्षित रह सके।
5: तो इसका सबसे पहला फ़ायदा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को होगा, इनकी रोजी रोटी सिक्योर होगी। अगर हम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनको फ्रेश और हाइजीनिक प्रोड्यूस मिलेगा। साथ ही साथ इसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव के साथ भी अलाइन हो रहा है, क्योंकि हमने जो मॉडल डिसाइड किया था वो एक रेट्रोफिट हब इस्टेब्लिश करने का था, जहाँ पे इनके एग्जिस्टिंग वुडन कार्ट को अपग्रेड किया जाएगा और यहीं पर इनका रजिस्ट्रेशन होगा एंड स्कीम्स के साथ भी इनको कनेक्ट किया जाएगा, जैसे स्वनिधि एंड मुद्रा योजना। तो अभी रिसेंटली 2025 में गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया है कि वेंडर्स के पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तो हमारा आइडिया भी उनके साथ अलाइन करता है।
3: तो क्या चीज थी ऐसी जिसने आपको मोटिवेट किया इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, इसके बारे में प्रेरणा कहाँ से आई?
5: एक्चुअली जब हम कॉलेज से जाते थे तो बीच में सब्जी मंडी भी पड़ती है, तो तब हम देखते थे कि कितनी ज़्यादा सब्जी शाम तक कभी गिरी पड़ी रहती है या फिर कितने नुकसान होता है धूप, आजकल गर्मी भी जैसे ज़्यादा बढ़ रही है, तब हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए इस पे रिलेटेड। और फिर ये हैकेथॉन आया तो हमें लगा कि ये एक माध्यम बन सकता है इन लोगों की परेशानी को सुलझाने के लिए।
3: बिल्कुल, तो कहाँ से आपको इस हैकेथॉन की जानकारी मिली?
4: इसकी जानकारी हमारे SGRPG कॉलेज की NSS की जो नोडल ऑफिसर हैं उन मैम ने हमें बताया था, और पूरे कॉलेज में जानकारी सर्कुलेट की गई थी कि एक ऐसा हैकाथॉन जिसका नाम ईट राइट यूथ हैकाथॉन है वो पूरे उत्तराखंड राज्य में ऑर्गेनाइज हो रहा है, और वहीं से हमें इसकी जानकारी मिली थी।
3: और पूरे उत्तराखंड से वहाँ पे छात्र आए थे, कितने कॉलेजेस ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था?
4: इसमें 387 टीम्स थी और जिसमें 1600 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था।
3: अच्छा, आप बताइए कि कैसे कैसे आइडियाज़ वहाँ पे आए थे, कौन से आइडियाज़ आपको पर्सनली अच्छे लगे थे?
4: इस हैकाथॉन में जो भी विनिंग आइडियाज़ थे उनके बारे में पता चला, और इसमें सिर्फ टेक्निकल फील्ड ही नहीं और भी जो अदर फील्ड्स हैं जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो उसमें कई सारे आइडियाज़ हमें देखने को मिले। जो मेरा सबसे फेवरेट आइडिया था वो था मैत्री पोषण। उन्होंने एक ऐसी थाली डिज़ाइन की थी जिसमें पूरी न्यूट्रिशन से भरी हुई थाली थी और उसमें जो सारे इंग्रेडिएंट थे वो उत्तराखंड के लोकली इंग्रेडिएंट थे, तो वही मेरा सबसे फेवरेट आइडिया था।
5: सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उत्तराखंड के लोकल प्रोड्यूस को एक प्रमोट करने का काफ़ी अच्छा जरिया मिल गया था, क्योंकि वो जैसे मिड डे मील स्कीम में कई बार लोगों तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, साथ में रागी वगैरह भी इतना लोग उतनी जानकारी नहीं रखते या फिर उसको कंज्यूम नहीं करना चाहते। अवेयरनेस तो है बट लोगों की हैबिट में अब तक वो मतलब ऐड नहीं हुआ है। तो यूथ थे, उन्होंने ऐसे इनोवेटिव आइडिया बनाए जिससे लाइक उनका न्यूट्रिशन भी पूरा हो रहा है और जैसे हमारे लोकल प्रोड्यूस है उनको भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी।
3: बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि ऐसे जो मौके हैं वो यूथ को कितने मिलने चाहिए और इनोवेशंस आइडियाज में कैसे वो अपने आप को आगे लेकर आ सकते हैं?
4: मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार के हैकाथॉन या कंपटीशन उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत के यूथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे युवा जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ इनोवेट करना चाहते हैं उनको एक बेहतरीन मौका मिलता है ऐसे सारे इवेंट से।
3: अच्छा, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं अपार्ट फ्रॉम साइंस? आप इनोवेशन इन सब में रुचि रखते हैं, लेकिन इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने खाली समय में करना पसंद है?
4: मेरी हॉबीज़ हैं चेस खेलना और साथ ही साथ हिंदी लिटरेचर पढ़ना और कविताएं लिखना।
5: और मेरी हॉबीज़ गाना सुनना, गाना गाना या फिर गार्डनिंग, कुकिंग भी बहुत अच्छी लगती है।
3: अनुज, इस आइडिया से पहले कितने आइडियाज़ पे आपने काम किया, क्या क्या वो प्रोसेस क्या रहा आप दोनों के बीच और कैसे ये टीम डेवलप हुई?
4: इस आइडिया से पहले हमने 25 से ज़्यादा आइडियाज़ के बारे में सोचा, उसके बाद रिसर्च करा। कुछ आइडिया हमें प्रैक्टिकल लगे पर उस रिसर्च करने के बाद पता चला कि वो आइडिया पहले से एग्जिस्ट करते हैं और कुछ आइडिया सुनने में बहुत अच्छे थे पर प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम नहीं कर सकते थे। तो अंत में जाके हमें सोलर कार्ट वाला आइडिया सबसे बेहतरीन लगा, इसमें टेक्नोलॉजी भी थी और साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल भी फील हो रहा था।
3: कुछ और आइडियाज़ जो आपको लगता था कि आप प्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन क्योंकि आपको एक ही लेकर जाना था, कुछ ऐसे आइडियाज़ जो और अच्छे थे आपके पास?
4: इसके अलावा एक मूविंग कोल्ड स्टोरेज ट्रक के आइडिया था, पर वैसा आइडिया पहले से एग्जिस्ट करता है और उसको बनाने के लिए एज अ स्टूडेंट बहुत खर्चा चाहिए जो काफ़ी टफ हो जाता है एज अ स्टूडेंट, तो उस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा था। साथ ही कुछ और आइडियाज़ भी आए थे जैसे PCOS और PCOD से जो पीड़ित महिलाएँ होती हैं उनके लिए न्यूट्रिशन के लिए कुछ फूड रिलेटेड आइटम ढूंढना जो उत्तराखंड में लोकली अवेलेबल हो, वो आइडिया भी ड्रॉप कर दिया था, उसमें हम कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाए थे।
5: इसके अलावा हमने ये आइडिया सोचा था जैसे चार धाम की यात्रा होती है तो उसमें कई बार प्रसाद वगैरह वेस्ट हो जाता है तो उसके अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमने ऐसे सोचा था कि मेन रीज़न ये है कि उसको बायोडिग्रेडेबल उसमें बना ले, लाइक जैसे पूरा पत्थर सिस्टम कर दे जैसे प्लास्टिक का थालियाँ होती हैं, ताकि हम उसका कुछ इथेनॉल टाइप्स कुछ बना सके। बट फिर हमने बाकी जनों से भी पूछा, जो हमारे सीनियर्स थे, हमारे जो बड़े टीचर्स, सबसे पता किया, तो तब हमें पता चला कि ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम सब ने मिलकर काफ़ी सारे आइडिया सोचे थे, थोड़े मनभेद भी चल रहे थे कि मतलब हमारा आइडिया क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है, बट आखिर में हमारा ये सोलर कार्ट ही सक्सेसफुल इमर्ज करा।
3: कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, आपको क्या लगा?
4: हैकाथॉन का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार था, हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर मिला और जो उत्तराखंड की यंग माइंड्स हैं उनके साथ कनेक्शन मिला और काफ़ी सारे CEOs जो ज्यूरी मेंबर के तौर पर वहाँ आए थे उनसे भी हमें मिलने का मौका मिला और उन्होंने हमें आइडियाज़ डेवलप करने और कैसे बिजनेस डेवलप करना है इसका भी बहुत सारा ज्ञान दिया। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि अगर हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो हमें उसमें पार्टिसिपेट भी करना है और अगर हम कोई अच्छा सोल्यूशन लेके आते हैं गवर्नमेंट के सामने तो उसको ज़रूर अपनाएंगे।
3: अप्रिसिएशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। और अपना भविष्य आप कैसे देखते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं भविष्य में?
5: मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ ताकि मैं ग्राउंड लेवल पर इसी तरीके से और लोगों को भी सपोर्ट कर सकूँ।
4: मैं भविष्य में फिजिक्स की फील्ड में रिसर्च करना चाहता हूँ और चाहता हूँ मैं कि भारत देश के लिए और देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए कुछ ऐसे सोल्यूशन ढूंढ के लाऊं जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए उसको सर्व कर सके और उनकी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सके।
3: क्या बात है, ज़रूरी ही आप अनुज एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढेंगे जो बहुत ज़रूरी और मानवता के लिए बहुत कारगर भी साबित होगा। आज की इस बातचीत के लिए मेघा और अनुज आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
4: धन्यवाद।
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा रितिका बिंजोला की आवाज़ में और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं गीत लापता लेडीज से अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: बैक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने फेवरेट पसंदीदा यानी कि खासम खास वाले कार्यक्रम युववाणी में। मैं रितिका और अतुल्य बने हैं आपके साथ। दोस्तों, आज की दुनिया में हमारी पढ़ाई, बैंकिंग, खरीदारी, यहाँ तक कि पहचान भी धीरे धीरे ना डिजिटल होती जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डिजिटल दुनिया की सुरक्षा कौन करता है?
1: बिल्कुल, हर दिन लाखों साइबर हमलों को रोकने के लिए विशेषज्ञ काम करते हैं दोस्तों। यही वजह है कि आज साइबर सिक्योरिटी दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते करियर क्षेत्र में शामिल हो चुका है।
0: साइबर सिक्योरिटी का काम केवल हैकर्स को रोकना ही नहीं, बल्कि लोगों के डेटा, ऑनलाइन लेन देन, सरकारी संस्थानों और बड़े उद्योगों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने रितिका। और दोस्तों, अगर किसी युवा की रुचि कंप्यूटर तकनीक और समस्याओं का समाधान खोजने में है, तो ये क्षेत्र आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। आज सरकारी विभागों, बैंकों, आईटी कंपनी, अस्पतालों और स्टार्टअप सभी को साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की आवश्यकता ही है।
0: और पता है अतुल्य, सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि इस क्षेत्र की शुरुआत ऑनलाइन कोर्स, प्रमाण पत्रों और नियमित अभ्यास से भी की जा सकती है। यानी सही कौशल और सीखने की इच्छा आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ती रही है, साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसीलिए ये केवल एक करियर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाने में योगदान देने का अवसर भी है।
0: बिल्कुल। और आज है दोस्तों बृहस्पतिवार यानी थर्सडे का दिन, और हम लेकर आते हैं आपके लिए रोजगार से जुड़ी खबरें। चलिए जानते हैं आज के रोजगार समाचार। एम्स ने नर्सिंग ऑफिसर के 2218 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 13 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है aims.ac.in।
1: पंजाब नेशनल बैंक ने 545 लोकल बैंक ऑफिसर LBO पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है दोस्तों। इसकी आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं।
0: वहीं भारतीय सेना ने लॉ ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए GAG यानी जैग एंट्री 125 के अंतर्गत 10 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 है। वहीं इसकी आधिकारिक वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in।
1: भारतीय सेना NCC स्पेशल एंट्री भर्ती 2026 के तहत 70 पदों पर

0: भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2026 तक है और इसकी आधिकारिक वेबसाइट दोस्तों joinindiaarmy.nic.in पर है।
1: और साथ ही राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RVUNL भर्ती 2026 ने जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट, अकाउंटेंट, टेक्निकल हेल्पर एवं अन्य सहित 2005 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2026 है और इसकी आधिकारिक वेबसाइट है energy.rajasthan.gov.in।
0: भारतीय डाक विभाग ने स्टाफ कार ड्राइवर के 11 पदों पर भर्ती निकालने के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026 है। आप इसकी वेबसाइट यानी कि indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
1: वहीं आयकर अपीलीय अधिकरण ITAT ने प्राइवेट सेक्रेटरी के 42 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक अभ्यर्थी 22 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसकी आधिकारिक वेबसाइट है itat.gov.in। वहीं उसी के साथ कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक फिल्म क्रू से दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में।

0: दोस्तों, आज हम बात करेंगे भविष्य के ऐसे ईंधन की जिसे स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल माना जा रहा है। और आज हम जानेंगे क्या है हाइड्रोजन फ्यूल।
1: दोस्तों, हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे हल्का और सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। जब इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है तो इसे हाइड्रोजन फ्यूल कहा जाता है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हाइड्रोजन फ्यूल से बिजली कैसे बनती है ना रितिका?
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए फ्यूल सेल नाम का एक विशेष उपकरण होता है दोस्तों। इसमें एक तरफ हाइड्रोजन गैस और दूसरी तरफ ऑक्सीजन डाली जाती है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बिजली बन जाती है। इसी बिजली से वाहन, मशीनें और अन्य उपकरण चलते हैं। इस प्रक्रिया में धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, बल्कि केवल पानी और थोड़ी सी ऊष्म बनती है। इसीलिए हाइड्रोजन फ्यूल को

0: पर्यावरण के लिए सुरक्षित और स्वच्छ ईंधन माना जाता है।
1: और आज दुनिया के कई देश हाइड्रोजन से चलने वाली कारों, बसों, ट्रेनों और उद्योगों पर तेजी से काम कर रहे हैं। भारत भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है।
0: हालांकि दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल के सामने कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इसे बनाने, सुरक्षित रूप से संग्रहित करने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में अभी अधिक लागत आती है। वैज्ञानिक इस चुनौतियों को कम करने के लिए लगातार नए शोध भी कर रहे हैं।
1: और भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना तथा भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।
0: दोस्तों, यदि भविष्य में इन समस्याओं का समाधान हो जाता है तो हाइड्रोजन फ्यूल ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति ला सकता है और पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता काफी हद तक कम हो सकती है।
1: तो दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल केवल एक नया ईंधन नहीं बल्कि स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं बहुत ही बेहतरीन सी रागर चैतन्य की आवाज में फिल्म चांद मेरा दिल से ये ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना ये गीत, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, है ना रितिका?
1: बिल्कुल, चांद मेरा दिल और राघव चैतन्य की आवाज़।
0: बिल्कुल दोस्तों, हमने आपके एंटरटेनमेंट का बिल्कुल ख्याल रखा और आपके साथ चर्चाएं भी की, जिसमें हमने न्यूक्लियर हमला समाधान नहीं है इसके बारे में भी डिस्कस किया, साइबर सिक्योरिटी में करियर क्या क्या है इसके बारे में भी डिस्कस किया, हाइड्रोजन फ्यूल क्या है ये भी हमने जाना दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चर्चाएं हमारी समझ आई होंगी, इससे आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। और उसमें हमने सुना एक परिचर्चा रितिका बिंजोला के साथ, जिसमें विषय था ईट राइट यूथ हैकाथॉन, और हमने रोज़गार से जुड़ी समाचार भी जाने। दोस्तों, आपको सब कुछ समझ आया होगा। और इसी के साथ दोस्तों, कार्यक्रम में हम आ पहुँचे हैं समाप्ति की ओर, और वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का।
1: मगर जाने से पहले आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारे पत्र लिखने का पता है युववाणी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून। हमारा पिन कोड है 24800124800।
0: दोस्तों, आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना सुझाव ज़रूर भेजें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731।
1: इसी के साथ मुझे यानी रितिका
0: और मुझे यानी अतुल्या को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी ज़रूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। तब तक के लिए नमस्कार,
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सायं के 5:45 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत सुनन वाल सभी श्रोताओं के गीता भंडारी की तरफ बटी नमस्कार प्रणाम पैलाग सेवा सौली स्वागत आपक अपन बोली भाषा के खास कार्यक्रम ग्राम जगत मा श्रोताओं यह कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी ब्याल भगत 5:45 बटी 6:50 तक प्रसारित हों। यह कार्यक्रम में हम लोकगीत लोक परंपराओं रीति रिवाजों हमर बोली भाषा पारंपरिक हमर वाद्य यंत्र पुराण हमर भानकुन और गोंक संस्कृति से जुड़ी जानकारियां आपक लीजिए लिबेरुनो। एक दगड़ ही खेती पाती स्वास्थ्य सरकारी योजनाओं की जानकारी मौसम और समसामयिक विषयों पर ले ज्ञानवर्धक जानकारी के सरल ढंग से अपूर्ण क्षेत्रीय भाषा में लिवे उनो और सबसे बड़ी बात पत्र के छू कि कार्यक्रम सुनन में आप अकले के फर्क नहीं पड़न किले की आप जो काम करण छा उके कर सका छा कार्यक्रम सुनने के दौरान किले की भाई आप रेडियो सुनना छा और रेडियो ध्वनि तरंगों के माध्यम सुनाई दूँ तो जरूर सुनिया कार्यक्रम ग्राम जगत। और अब इन बातों का दगड़ ही आपके बता दिनू कि आज कार्यक्रम में किचू खास श्रोतो आज छू विप्यार और आज कार्यक्रम में अंक हूँ चिट्ठी पत्रिक जमा आपक हफ्त भरक चिट्ठियों के जवाब के लेवे होनी और दगड़ मा चर्चा होली हथकरघा उद्योग और सतत खाद्यान्न प्रणाली पर दगड़ी हॉल गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी लोकगीत और गीत और खूब हल रंत रह बार तो इन छुई बातों का दगड़ ही आओ सबसे पहली कार्यक्रम की शुरुआत करनू ये सौनक महीनों के ही शिवजी के गीतक दगड़ और गीत मा स्वर्च अरविंद कुमारक

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी

0: जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें, और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
5: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
4: सच में, क्या क्या है उसमें?
5: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
6: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
7: श्रोताओ, आपल सुन अरविंद कुमारक आवाज मां गढ़वाली शिव भजन, और वी कदगड़ी सुनिन रैवार। उम्मीद छु कि आपको गीत और रैवार दुइये पसंद आए होनल। किले कि भाई, सबसे पहली हम अपना इष्ट देव को याद करनु और उसी लय सौणक मैंजु, और सौणक सार मैंजु छु ना हम शंकर भगवान की पूज अर्चना में करनी, और उसमें यह गीत सुनी जाए तो भल लागनु, है ना। श्रोताओ, आज छु वे प्यारक दिन, और आज कार्यक्रम में अंक हूँ चिट्ठी पत्रिक, और भाई आपक स्नेह, सुझाव और अनुभवों से सजी हमर चिट्ठी के कार्यक्रम सबसे ठुल ताकत हूँ। तो भाई अब भगत है गो कि यह चिट्ठी कोटोर को खोल दूँ और जानू कि के लेखरों को हमारे श्रोताओं चिट्ठी माँ अपन रैबारू माँ यह सार हफ्त और कोटोर खोलना के लिए जी छिन अरे ध्यानी जी। तो आओ सुनो चिट्ठी पत्री।

चिट्ठी पत्रिका आज का अंक का दगड़ी में छो विनय ध्यानी नमस्कार से वसोले आप सभ्यों थे भगवान बद्री केदार से आप सभ्यों की कुशलता की कामना का दगड़ी और इन भी बोलला कि साहब किले की चिट्ठी आप गए आचन और उकमे भी लिखी हुरन अत्र कुशलम तत्रास्तु है ना। तो जन हम छो तन आप भी रहें जन आप छन तन हम भी रहें यानी सब जगह अमन चैन मंगल बणुरा। बरखा बतौनी का बीच चिट्ठियों की संख्या कुछ कम हुई लेकिन अब तो हमार डाकवान भेजी भेजुद भी नहीं चे रोजुद भी नहीं चे आजकल तो खट ले घर खट पहुँच जन चिट्ठी लेकिन फिर भी चिट्ठियों की संख्या कम च लेकिन कम हुण और भल हुण मा फर्क छे भाई। अगर कम छन लेकिन भली चिट्ठी छन तो लगो छे कि हाँ हमारा सुनदरा हमारा दगड़ छन कोई बात नहीं छे गाँव जे बताए ली वे बस लिख लिया। लेकिन आज कार्यक्रम की शुरुआत हम विजय कार की जी जो कि हम तय चिट्ठी भेज दिन डिफेंस कॉलोनी देहरादून बटे के एक न बल्कि उनकी दुई चिट्ठियों का दगड़ी आज कार्यक्रम की शुरुआत। ये लिखना चन साहब कि किलकारी कार्यक्रम जो कि पर्यावरण विद्यालय अंजनी सैन द्वारा प्रस्तुत करे गया बहुत ही सुंदर छे और हैंक चिट्ठी में यू को लिखियों तजी चिट्ठी जो है ये लिखना चन कि ये हफ्ता का ई कार्यक्रम हम ते भला लगिन जो मध्य 31 जुलाई में रूपक वंदे मातरम बहुत सुंदर छो और 1 अगस्त तक उन्हें डॉक्टर ममता का प्रमाण से स्तनपान पर जो बातचीत छे वो काफी लाभप्रद लगी। 3 अगस्त तक उन्हें लोक गायिका जो छे उनकी प्रस्तुति भी सराहनीय छे मजा आ गया बल क्योंकि बबीता देवी एक अलग गायकी की लोक गायिका छन उनकी शैली बिल्कुल अलग छे हम तभी पसंद है। 4 अगस्त तक होनी गढ़वाली कविता धर्मेंद्र उनियाल की पसंद है और 5 अगस्त तक होनी जो आपन नए कार्यक्रम शुरू करी न्यार द्वार और उकमा जो धनंजय जी छा उनका दगड़ी बातचीत भी बहुत सुंदर यूं सभी प्रयासों का खातिर बल शुभकामना। कार्की जी आपक आशीर्वाद आपक दगड़ो हम ते इन मिल रहा क्योंकि आपन एक एक कार्यक्रम सुनी की हम ते अपनी राय लिखे भेजे यानी कुल मिलाकर आप तो सभी कार्यक्रम पसंद आ गए 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख।

देहरादून बटे भेज देन। चिट्ठी में भी एक अलग रोंस रहेंदियों की, शब्दों को चयन बहुत भलू रहेंद, पहली बोलियाल मिल हाँ चिट्ठी बाद में पढ़ूल, लेकिन पहल बताना आपते। लेखना से इनकी ग्राम जगत की कुटुम्बदरी थे, रोमकदा की सेवा सौली, स्वर्ग दिदा सोण मैन की सार्थकता पर मिस्यू, स्वर्ग दिदा सोण मैन की सार्थकता पर मिस्यू चुबल, उम्मीद च कि कोई जल भराव की घटना नहीं हो, दगड़ियों का दगड़ी हफ्ता भर पूर्व कार्यक्रम को आनंद ले हमन, किले की सास जी अस्वस्थ छे। ओहो, फिर भी सुंदर कविता की पंक्तियों का दगड़ी चिट्ठी पत्री को आगाज भलू लगी, वंदे मातरम की ऐतिहासिक महिमा को चिंतन बहुत उत्कृष्ट छो, धर्मेंद्र उनियाल जी की सभी कविता छपछपी दायक छे, और सबसे बेहतरीन डॉक्टर ममता कपूरवाणी जी का दगड़ी महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा भली छे। युवराज ने मेरी ग्राम जगत कुटुम्बदरी का सभी प्रतिभावान सदस्य सिमना मनोरमा रावत, बहुत बहुत आभार मनोरमा जी, और सभी कुटुम्बदरी तय आपन अपन आशीर्वाद दियूँ छे, तो वे का हम आभारी छू, और आप तक कार्यक्रम में सभी जो कार्यक्रम अपन सुनी पसंद करें, चाहे वो कविता पाठ हो या रूपक वंदे मातरम पर जो चाहे वो सभी कार्यक्रम आपते सुंदर लगे, और चिट्ठी पत्री को पिछले अंक भी हमन रामेंद्र रावत जी की जो सुंदर पंक्ति छे सोना में न की वैसे कार्यक्रम की शुरुआत कर। अब भगवान से ये प्रार्थना छे कि आपन बताइयाल कि कखी न कखी अस्वस्थता छा बल घोर मा, तो हम बोलला कि चटचटाकों को स्वास्थ्य लाभ हूँ था मिल और वो स्वस्थ हुई, फिर भी समय निकाल के आपन हम ये चिट्ठी भेजी और कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई, ये का खातिर मनोरमा जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम में हो रही चिट्ठी देखना भाई कह कह कहीं आछन कक कक बटे आछन, ये कंप्यूटर जी एथर बैठ लो दी अभिजीत नेगी हम तक कुजान कक बटे चिट्ठी पैटाना छन, लेकिन लिखना छन कि साहब हम तक प्रीतम भरतवान नरेंद्र सिंह नेगी और जौनसार बटे की रेशमा शाह का गीत पसंद आप कार्यक्रम में, तो नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तय हमारा जो लोक गीतांग छन और विवाह कई सभी नो अपना आप में अलग पहचान रख दिन, उनका गीत कहता नहीं भला लगता लेकिन आप था भी लग दिन, आप ये का वास्ता अनुरोध गीतों जो हमारे कार्यक्रम च गिरिगुंजन च वही माँ अपन अनुरोध कह सकते, ठीक छ, वही को पता भी जहाँ चिट्ठी gramjagat@gmail.com। और ये का अलावा हमारे दगड़ बलिदान और को होला विकास सकलानी से दिल्ली और बिचला बदलपुर दुया जगह बटे चिट्ठी लग दिन, बोल दिन कि साहब जो रूपक छा वंदे मातरम पर बहुत ही सार्थक और सुंदर छ, और सच में 150 वर्ष हुए जिन ये गीत था लेकिन यो गीत सदन ही राष्ट्रीयता को अमर गीत बनियो छ, और हम तो गर्व छ कि हम ये गीत से हर सार्वजनिक और राष्ट्रीय समारोह की शुरुआत करता, कखी न कखी हम तो पूरे देश से जुड़ यो गीत हम ते, तो बहुत आभार सकलानी जी कि आप तय हमारे यो लघु रूपक जो कि अपन दोबारा सुन, पहले हमें ये था पिछले दिनों प्रसारित कर छा लेकिन किला के कार्यक्रम बहुत सुंदर बनी हुई, तो वही था हमन दोबारा भी प्रसारित करी, आपका चिट्ठी का वास्ता बहुत बहुत आभार। और पीताम्बर सिंह चौहान हम तय कुजनी का बटे लिख दें चिट्ठी जाखन देहरादून बटे के बना जिन के साहब गढ़वाली बोली भाषा को युग कार्यक्रम लगातार लोकप्रिय होने च, और एक माह हम अपन पसंद का गीत भी सुन दा, आप जब स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कोई कार्यक्रम हम तो सुन दिन बहुत सुंदर लगनु च, और बधाई देना छन कि चला साहब अपन शुरुआत करी फोन इन की, तो हेलो जो ग्राम जगत च वो आप तय तुरंत ही सुनक मिलल कुछ दिनों बाद। और एक बात हम और भी बताना चाहूँ आप तय कि न्यारधार कार्यक्रम जो एक शुरुआत हो चुक गया, यही तरीके से ये साप्ताहिक कार्यक्रम च हर हफ्ता बुआ रख दिन आप थे सुनक मिलल जख में विभिन्न विषयों पर, चाहे वो समसामायिक हुई चाहे वो अलग जो हम इन बोल सकते नवाचार का मुद्दा छन उन पर आधारित रहा, कुछ लोगों से बातचीत करला, अलग अलग जो बोल दिन न कि एक थीम जो हम बोल दें वही पर आधारित हमारे यो कार्यक्रम न्यारद्वार को मतलब हमारे आस पास क्यों होने चाहिए हमारे इधर उतर क्यों होने चाहिए वही पर आधारित यो लगभग 20 मिनट को कार्यक्रम हम हमेशा आप तक बुआरा दिन सुनौला, तो धन्यवाद कि आप तय हमारा ये प्रयास पसंद आना चाहिए, और जिनके हमने बोल बिछा कि जब जब आप हम तय अपना सुझाव लेके भेज दें तब लगत कि हम तो कार्यक्रम में बदलाव करना चाहिए, तो चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी छाऊ आपका कि आप तो हमारा सभी कार्यक्रम पसंद आना छन, और ये के अलावा हमारा और भी श्रोता छन लेकिन उनते धन्यवाद जुगराज रहे हैं बाद में बोलला, जिनकी हमार परंपरा छे कि साहब हम चिट्ठी पत्रिका ये अंक में एक पूर्ण गीत शामिल करना, तो आज एक पूर्ण गीत हम लेके आया छाऊ आपक खातिर एक न जणा पछणा कलाकार को

जो कि अपन आप में एक प्रख्यात हास्य कलाकार छे, लोक कलाकार छे। सिर्फ अभिनेता ही ना बल्कि वो गायकी में भी अपनों अलग महत्व रखता छे। उनका कई गीत बहुत समय तक बहुत चर्चित रहे, जिनकी ब्योली खोजिए दिया, कख मिलली नौकरी, इना इना गीत उन गए जो कि आकाशवाणी देहरादून से लेके नजीमबाद, उत्तरायण, लखनऊ, वक बटक प्रसारित होना रहे और लगातार लोकप्रिय होना रहे। उन भी अपन एक ठेठ गायकी, जो कि ठेठ बोलना हम, एक लोक गायक का तौर पर उन अपने जगह बनाए। आज उमर बेच नहीं छन, लेकिन उनका गीत अमर छन, हमार पास छन, आकाशवाणी का पास छन। तो आजक ऊँ कयू हूँ यू गीत इन लगत अफरी में सयू छु क्या, किला के अब वही दुनिया में निछन। तो आवा सुनदा राम रतन काला का स्वर्मा यो गढ़वल गीत।

श्रोता भाई बंधु, अभी अपन राम रतन काला का शर्मा यु पुराण गीत सु और उम्मीद करना कि आज एक चिट्ठी पत्री जो कि हमारा दगड़े उन हम तक भेजी जिनके मन पहली बता कि सोन का ये मैं ना चक सरक बर्ख होना चे वग चिट्ठी नहीं बरखना छन कोई बात नहीं छे। अब एतवार दिन जो श्रोता बंधु हमारे दगड़ जुड़ी उतः हम धन्यवाद दूला इच्छन ऋषिकेश बटे की राजेंद्र सिंह पंवार पीताम्बर सिंह चौहान ये हम तय जाखन बटे चिट्ठी भेज दिन विनीता थपलियाल मनोरमा रावत जी विजय पार्क बटे की विजय कार्की जी भी हमारे दगड़े द्वारे दिन छ मंजू रावत जो कि हम तय चिट्ठी भेज दिन और यखी नजीक के बटे की ना तो वो हम तय चिट्ठी भेज दिन साहब चंद्रनगर देहरादून बटे की आभारी छो आप सभी का कि आप ये

शामिल होना चाहिए, जिनके आप तो पता चले। श्रोताओं का अनुरोध पर कार्यक्रम भी अब आप ईमेल पर भी पैठा सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पैठा सकते हैं। तो चौछोड़ अमन द्वार खोले आचन कक्की बुटीक भी भीतर आ जाओ, तो लेकिन आओ जरूर, किला कि आपक चिट्ठी पत्रियों को आपक दगड़ बिना यो कार्यक्रम निरस्त भय। आप अला हम तो सुंदर लागल, तो अब इन कर दा कि आप सब भी उठाए धन्यवाद दीन अपना नए श्रोताओं से, नए किला बने पुराना भी नए भी जो पहल दास होना चुन उकुण भी कि बारे जो कुछ भी उमाल खती होना चुन वे थे लिख दिया दुई आकर और मेल कर दिया व्हाट्सएप कर दिया बस लिखो चुके हाँ ग्राम जगत तक वास्ता तो हम टप टीप दू लगे थे। तो उम्मीद है कि आप हम तो चिट्ठी भेजला, हमार पता चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com हद तक लिखे चिट्ठी भी भेज सकते ना, कोई खैरी नहीं आनी चाहिए अगर न्यान दू व्हाट्सएप मोबाइल और ईमेल तो आप साधारण डाक से भी चिट्ठी भेज सकते हमार पता च ग्राम जगत अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन 248001 इंच बटक लिखण चिट्ठी पत्री। तो अब आज को चिट्ठी पत्री को यो अंक यखमी संपन्न करना छुआ आपक दगड़िया विनय ध्यानी फिर एकदा झोला लेकाल आपक भरी चिट्ठियों को तब तक खातिर मिथत अनुमति दिया सुनना रहा कार्यक्रम ग्राम जगत।

श्रोतो, आपक चिट्ठी हमार लीजी केवल चिट्ठी में लिखी शब्द नहीं होनी, बल्कि आपक अपन्यास और आपक पछा विश्वासक पहचान छू। यह हफ्तक चिट्ठियों के जवाब आपके मिल गए होनल और दूसर हफ्त आप फिर नई विचारों का दगड़ अपने रैबारों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से फिर से ग्राम जगत परिवार से जुड़ला। ये उम्मीद का दगड़ ही अब कार्यक्रम में शामिल करनू एक सुंदर सा कुमाऊनी गीत। स्वर छू दया शंकर फुलारा का और बोल छिन पार्वती को मैथ।

श्रोताओ, आप अलसुन दयाशंकर फुलारा का स्वर मां सुंदर सा कुमाऊनी गीत। भाई, जब हम उस शिव जी की बात करें तो पार्वती जी की बात करने लगी हमारे फर्ज छी, किले की दुई शिव और शक्ति छिन्न और दुई एक दूसरा भिन्न अधूरा छिन्न। जैसे हम आप और श्रोताओं का बीच जो बातचीत हो ना, और अगर श्रोता नहीं छिन्न तो फिर वक्ता के करोल हमले आपक भिन्न अधूरा छिन्न। तो श्रोताओं, बात किया करनी की मी, किले की आज दिन छो चिट्ठी पत्री को।

और आपको फिर एक बार अपना पता बता देना, चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com, या जो हमारा ननू नन झट झट आगवाल चिट्ठी पत्र उसी ले भाई। अब तो रुझण भिजण की जरूरत ले नहा, और चिट्ठी दिड़क लीजिए बहुत दूर जाने की जरूरत लेना। बस आप जत्ती छा उत्ती बटी एक मेल हमके जरूर भेज सक छा, और हमके भल लागू जब आप हमारे दिखे जुड़नी। सो तो अब थोड़ा बात कर लेनू हथकरघा उद्योगक बारे में। हमारे देश गो अपुर परंपराओं कला कारीगरी के लिए जानी जानी, यही पारंपरिक कला में हथकरघा उद्योग एक विशेष जग छू। यह उद्योग केवल कपड़ा बुनक माध्यम ना बल्कि हमार सांस्कृतिक विरासत ले छू। हमार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लाखों बुनकर परिवारों का आजीविका आधार ले छू हथकरघा। हथकरघा उद्योग में बिना बिजली के बटी चलण वाले मशीनल हाथों बटी कपड़ा बुने जानी, यह कला में सूती ऊनी रेशमी खादी जस सुंदर अंदर तैयार होनी। उत्तराखंड सहित हमारे देश कई राज्यों में बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी इन परंपराओं के अखिल बढ़ोण में लागी छिन। हथकरघा उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारक मौकले देनी, दगड़ी श्रेणियों के आत्मनिर्भर बनक मौकले यह हथकरघा उद्योग दूँ। स्थानीय कच्चे माल और पारंपरिक डिजाइनों कारण यह उद्योग हमारे ग्रामीण संस्कृति लोक कला में जीवित धरूँ। और सरकारल अलग अलग योजनाओं और मैसों के बढ़ती जागरूकता कारण हथकरघा उद्योग के लगातार मांग बढ़ने, और ये बटी बनी जो चीज छिन वेकले मांग बढ़े। हाथों की मेहनत अल बड़ी कपड़ केवल कपड़ नहीं हुन बल्कि हमारे संस्कृति परंपरा और ग्रामीण भारत तक पहचान ले छू। हमारे फर्ज छू कि हथकरघा उत्पादों को अपने बेर अपुण बुनकरों का सम्मान करो और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण में अपुण योगदान दियो। और कभी ना कभी कहले म्याल ख्याल में अगर जाऊँ तो वहाँ बटी शॉल साड़ी दरी कालीन थुलमा ऊनक बड़ी सामान धोती चादर या फिर हाथक बड़ी जो निगावक बड़ी टोफियार होनी या फिर निगावे बटी और ले सामान होनी ना उनके लिए भी जरूर आणचे। किले की एक तो हमको वहाँ समूण रहे कि वहाँ की यादगार रहे कि हम अला फला जागा कौथिक जर छी या अला फला जग जर छी और वहाँ बटी हम ये ले आई थी। और आप देखुनल कि जो भी हाथक बड़ी सामान होना वो वे जागे अपन एक पछाण होनी। जैसे आप पिथौरगढ़ की तरफ जाला जबू तो वहाँ आप देखला ऊनक बड़ी हाथक खूब सामान मिलनी, वह के अलावा वहाँ हमको थुलमा मिलूँ दन मिलूँ चुटुक मिलनी और वो कुनी ना कि बिल्कुल बड़ी मेहनत से बनाई रूँ। और उनको अगर हम जब अपन घर लेवे उन्हों तो मैं एक बहुत भल आनंद रूँ। वैसे अगर हम कभी यात्रा पर निकलूँ आप देखा होना निगावा बटी बहुत सारा सामान बनो, कहीं डक बढ़नी कहीं टोफियार बढ़नी कहीं और ले कुछ बढ़नी तो जरूर लेवे आना चाहिए। किले की पहली जमन तो केवल मुआट त्योथ ऐसा चीज बढ़न ची टोफियर बढ़न ची, लेकिन अब कलाकारों बहुत भल स्तर पर अपन पहचान बढ़ा है और अपन जो कला छो ना वही को बतौनी कि हम इधु कलाकार छिन और हमारे बनी सामान आप लीबे जरूर जाओ आपको भल लागल। इन छी बातों का दगड़ ही श्रोता अब कार्यक्रम के आखिर के बढ़ूनू गढ़वाल कुमाऊं और अब आपको ले जानू जौनसार और सुनूनू सूरत राम शर्मा का स्वरमा ये सुंदर चौमासी गीत।

0: શ્રોતો આપેલ સુણ યસુંદર સા જોનસારી ગીત ગીત માં સ્વર છી સુરત રામ શર્મા કા. ઉમ્મીદ છું કે આપકો ગીત ભલ લાગે હુનલ ઓર અબ યે ગીતા કા દગડ હી બગત હૈ ગો ઉત્તરાખંડ કા પ્રાદેશિક સમાચારો કા.
1: યાર સચ બતાઉં, અભી તો ગરમિયા શરૂ હુઈ હૈ ઓર 7-7 હજાર રૂપિયે કા બિજલી બિલ ભી આને લગા. वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है. मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ. जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार. पहले मुख्य समाचार. केंद्र सरकार ने 23,731 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दी. प्रदेश में पिछले 24 घंटों से बारिश का दौर जारी. मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मौसम की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए चार धाम यात्रा संचालित करने के निर्देश दिए. राज्य सरकार ने तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार के लिए चयनित नामों की घोषणा की और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की. राज्य में एनसीसी के विस्तार पर हुई चर्चा. स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार देहरादून 1 अगस्त से 15 अगस्त तक क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है. प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतिदिन शाम 6:30 के समाचार बुलेटिन में एक प्रश्न पूछा जाएगा. प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा. विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन के समाचार बुलेटिन में की जाएगी. हमारा आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार उत्तराखंड की यात्रा किस वर्ष की थी. प्रश्न एक बार फिर सुन ले, महात्मा गांधी ने पहली बार उत्तराखंड की यात्रा किस वर्ष की थी. श्रोता अपने उत्तर हमें व्हाट्सएप नंबर 7037888643 या ईमेल आईडी rnudehradun@gmail.com पर भेज सकते हैं. हमारा कल का प्रश्न था, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुली बेगार आंदोलन का प्रमुख केंद्र उत्तराखंड का कौन सा नगर था जहां लोगों ने बेगार प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन किया. सही उत्तर है बागेश्वर. सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले विजेता हैं बलबीर सिंह रावत, यमुना कॉलोनी, देहरादून. आकाशवाणी समाचार देहरादून की ओर से आपको हार्दिक बधाई.
3: नमस्कार, मेरा नाम बलबीर सिंह रावत है. मैं देहरादून के यमुना कॉलोनी से हूं और मैं कृषि विभाग में कार्यरत हूं. मैं विगत 35 वर्षों से आकाशवाणी से जुड़ा हूं. पहले मैं नजीबाबाद से समाचार सुनता था. जब से आकाशवाणी मोबाइल के माध्यम से सुनने का अवसर मिला तब से मैं मोबाइल से ही सुनता हूँ. एक दृष्टिबाधित व्यक्ति होने के कारण मेरे लिए आकाशवाणी का बहुत महत्व है और मैं इसका नियमित श्रोता हूँ. आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई एवं हार्दिक शुभकामना.
2: प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दी. इस योजना से 1.5 लाख रोजगार सृजित होने की आशा है. एक रिपोर्ट.
4: गोवर्धन योजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. योजना के अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगर पालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है. ये योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी. इससे कंप्रेसर्ड बायोगैस भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख आधार बनेगी. योजना का उद्देश्य घरेलू कंप्रेसर्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना, बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और देश भर में चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है. आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह.
2: प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर ग्रामीण संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने से आवाजाही बाधित है। लगातार हो रही बारिश से बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में कई ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित हो गए हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और पर्वतीय क्षेत्रों में गाढ़ गदेरे उफान पर हैं। वहीं हरिद्वार में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मौसम की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा का संचालन कराने के निर्देश दिए हैं। श्री वर्धन आज देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा मार्गों की स्थिति, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, यात्रियों की संख्या, विभिन्न धामों में उपलब्ध सुविधाओं और यातायात व्यवस्था की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि अत्यधिक बारिश अथवा मार्ग अवरुद्ध होने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोककर उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की आस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने तीलू रौतेली राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार के लिए चयनित नामों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 8 अगस्त को चयनित महिलाओं को पुरस्कृत करेंगे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए प्रदेश के सभी 13 जिलों से एक एक महिला का चयन किया गया है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार के लिए विभिन्न जिलों की 35 उत्कृष्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुना गया है। तीलू रौतेली राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कार उन महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने संघर्ष, साहस और समर्पण से समाज में नई पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण मंत्री ने कहा कि इस वर्ष चयनित महिलाओं ने संस्कृति, खेल, वैज्ञानिक शोध, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, स्वरोजगार, समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और दिव्यांगजन कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। श्रीमती आर्या ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी महिलाओं की उपलब्धियों को समाज के सामने लाना है ताकि उनकी प्रेरक यात्रा नई पीढ़ी को प्रेरणा दे सके। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, प्रारंभिक शिक्षा और महिला जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सरकार की सबसे मजबूत कड़ी हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर के विस्तार, सीमांत व दुर्गम क्षेत्रों तक एनसीसी की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने तथा संगठन की आधुनिक और सुदृढ़ आधारभूत संरचना के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास, राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता तथा सेवा भाव को प्रोत्साहित

0: रोकने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने चंबा विकासखंड के सुमन कॉलोनी स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नौनिहालों को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
1: आज एक्चुअली मेरे द्वारा SIR की जो हमारी कार्रवाई चल रही है उसमें जो सुनवाइयाँ हो रही हैं उसके लिए बूथ का निरीक्षण किया गया था। उस बूथ में एक आंगनवाड़ी भी हमारा इनफैक्ट चल रहा था तो उसका भी देखा गया। मात्र उसमें एक ही बच्चा पढ़ रहा था तो उसको वहाँ खाना मिला। उससे जब पूछा उसका हाइट और वेट भी मेरे द्वारा लिया गया तो वो ठीक वेट आंगनवाड़ी द्वारा नोट किया गया है। और जो भी उसको पढ़ाई बच्चे को कराई जा रही है वो भी मतलब तो बच्ची जो मैंने देखा कि सब पढ़ भी पा रही है तो अच्छा है। बट पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि हमें आंगनवाड़ी में हमारा इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। मात्र जो मैंने देखा कि पिछले 3-4 महीने में एक ही बच्ची आ रही है तो समा वो ना तो बच्चे की ग्रोथ के लिए, क्योंकि पियर और जब तक ग्रुप में और एक फ्रेंड्स में बच्चा नहीं ग्रो करता है तो वो सीखता नहीं है घर से बाहर जाना। तो आई थिंक मैंने जो मेरे निर्देश है वो आंगनवाड़ी विभाग को भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंटेक करने का प्रयास करें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 23,731 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों से बारिश का दौर जारी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मौसम की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए चार धाम यात्रा संचालित करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने तीलू रौतेली और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार के लिए चयनित नामों की घोषणा की और NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: TLI है ना।
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम स्वतंत्री बंधानी, जिला उत्तरकाशी है, उत्तराखंड। मैं जो खेती करती हूँ जिसमें सारे मिलेट्स है, हमारे बीमा करना इसलिए जरूरी है, जो किसान बीमा करते हैं, हम लोगों ने खुद बीमा किया है। पिछले साल हमने 40,000 प्रीमियम जमा करा और उसका हमें 4 गुना मिला।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: उत्तराखंड प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत छो आप सब श्रोताओं को बोली भाषा के कार्यक्रम ग्राम जगत मा। मिछू आपक दगड़ गीता भंडारी और मेरदगड़ चिन्ह हमार सब है नई पुराण श्रोता। श्रोताओं, अब बात करनु सतत खाद्य प्रणाली के बारे में, मतलब यश खेती और खान पान व्यवस्था, जैमा हम के आज ले पौष्टिक खाने मिल सको और आने वाले पीढ़ी के लिए ले माट पानी जंगल और पर्यावरण सुरक्षित ले रो। यह लीजिए हमार काश्तकारों किसानों के संतुलित मात्रा में रासायनिक खादों या उर्वरकों का उपयोग करण चे और फसल के बदल बेर जब हम फसल चक्र कुनी वैसी बूतण चे अपूर्ण स्थानीय जो वह जागमा बूती जानी उन फसलों के बढ़ावा देण चे और किले की जब हमार खेती सुरक्षित रोल तब स्वच्छ पर्यावरण रोल और हमार किसानों के लिए उचित आय मिल सकल, तब हमार खाद्य व्यवस्था सतत छू बोली जाल। स्वस्थ माट, साफ पानी, समृद्ध और पौष्टिक खान, यही तो चू सतत खाद्य प्रणाली पछाण। श्रोताओं, इन 6 बातों का दगड़ी अब आपको फिर से एक बार कुमाऊं छोर ले जानू और आपको सुनू ज्योति उप्रेतिका स्वर्मा यो सुंदर सा छपेली गीत।

ज्योति उप्रेतिका गाई ये छपेली गीता का दगड़ ही आज को ग्राम जगत को अंकित संपन्न करने की गीता भंडारी को दियो अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सायं के 6:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में शबनम मंगाई। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में लगातार होनी बरखा से सामान्य जनजीवन प्रभावित। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन होने से विभिन्न स्थानों की सड़क बंद। पिछले 24 घंटों बटी होनी बारिश का कारण नदियों को जलस्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमनन बोली कि प्रशासन ने स्थिति पर लगातार नजर लगे की बैठा छन। तेलू रौतेली राज्य स्तरीय शक्ति पुरस्कार और राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार का वास्ता सरकारन नामों की घोषणा करी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नई दिल्ली मां एनसीसी का महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्सन शिष्टाचार भेंट करी। राज्य मां एनसीसी का विस्तार और प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत संरचना का विकास पर चर्चा हुई। अब समाचार विस्तार से। मौसम मां भोल श्याम बटी लगातार होनी बरखा का कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित वाई। कई जगहों मां भूस्खलन का कारण सड़क मार्ग प्रभावित वेनी, जबकि प्रमुख नदियों को जलस्तर मां बढ़ोतरी वाई। मौसम विभाग के अनुसार भोल भी राज्य का विभिन्न हिस्सों मां हल्की सी तेज बरखा की संभावना चा। ये बगत हमारा सहयोगी रविन्द्र सिंह देहरादून बटी हमारे दगड़ जुड़िया छन, जो मौसम पर और अधिक जानकारी देना छन। जी रविन्द्र, बतावा की ये मौसम थे लेके प्रदेश भर में क्या स्थिति बनी जा?
2: जी शबनम, प्रदेश में लगातार होनी बरखा को असर अब साफ तौर पर जमीन पर दिखाई देनु छ। प्रदेश का कई पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन का कारण सड़क प्रभावित हुए। हालांकि राहत की बात यह कि चार धाम यात्रा मार्गों पर आवाजाही बनी छ। संबंधित एजेंसी बंद पड़िया मार्गों को जल्द से जल्द खोलन का काम पर भी लगी छन। वही मैदानी क्षेत्रों में अगर बात करा तो बरखा का चलती जल भराव की स्थिति देखने को मिली छे और सड़कों पर जो पानी भरी वैसी लोगों को आर जान में भी दिक्कत हुए। मुख्यमंत्री की अगर बात करा तो वो भी लगातार जो स्थिति छ प्रदेश में मौसम की वेगी निगरानी करना छन और उन सभी जो एजेंसी छन राहत एजेंसी उतें सतर्कता बरतन का भी निर्देश दिया छन। अब उन संवेदनशील क्षेत्र छन, हमारे गाड गदेरा छन, भूस्खलन संभावित क्षेत्र छन, वक विशेष निगरानी रखे जानी छे सरकार की तरफ से ताकि क्या भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करे जा सकू। जी शबनम,
1: धन्यवाद रविंद्र हमर दगड़ जुड़न का वास्ता और यू महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने का वास्ता। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमनन बताई कि प्रदेश में कुछ जगहों पर नदियों को जल स्तर बढ़ियों जा। उन बोली कि फिलहाल लगभग 150 सड़क मार्ग बाधित छन, जमा खुलने को कार्य भी जारी चा।
3: देखिए, बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है। कहीं कहीं वार्निंग लेवल के ऊपर चल रही है नदी। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जहां पानी का नजर लेवल बढ़ रहा है और आबादी को खतरा हो सकता है, वहां आबादी को आगाह किया जा रहा है, वहां से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 1869 के आसपास रास्ते बंद हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने मैक्सिमम रास्तों को खोल दिया है। जो रास्ते बंद हैं उसको खोलने की कार्रवाई चल रही है।
1: ये बीच देहरादून का मालदेवता, सौड़ा, सरोली और आसपास का आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से जारी छन। जिला प्रशासन क्षतिग्रस्त सड़कों को पुनर्निर्माण, सुरक्षा दीवारों को निर्माण और नदी तट संरक्षण को कार्यों में तेजी लेकी अधिकांश आवश्यक कार्य भी पूरा कैनी। प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी करे जानी चा। सुरक्षा दीवारों और अन्य सुरक्षात्मक उपायों को नियमित निरीक्षण करे जानु चा ताकि आवागमन सुरक्षित बनु रहो। अपर जिलाधिकारी के मिश्रण बताई कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों तथा सुरक्षा दीवारों का पुनर्निर्माण को कार्य लगभग पूर्व वे गयी। उन बोली कि प्रशासन विभिन्न विभागों का समन्वय से राहत और पुनर्वास कार्यों थे प्राथमिकता का आधार पर अग्नि बनानु चा।
4: मालदेवता के क्षेत्र में जो भी क्षति हुई थी उसमें भी पीडब्ल्यूडी ने अपना काम पूरा कर लिया है। साथ में कलिंगा में कुछ इरिगेशन के नहर का इशू था, जो कई जगहों पे पानी की सप्लाई करते हैं, उसमें इरिगेशन विभाग ने अपना काम कर लिया है और वहां पे जो सप्लाई है सुचारू है।
1: स्वतंत्रता दिवस का उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार देहरादून 1 अगस्त से 7 अगस्त तक क्विज प्रतियोगिता आयोजित करूचा। प्रतियोगिता का अंतर्गत प्रतिदिन शाम 6:30 का समाचार बुलेटिन में एक प्रश्न पूछे जालू। प्रश्न को सबसे पहले सही उत्तर भिजन वाला श्रोता थे विजेता घोषित किए जालू। विजेता का नाम की घोषणा अगले दिन का समाचार बुलेटिन में करे जाली। श्रोता अपना उत्तर हमारा व्हाट्सएप नंबर 7038886443 अथवा ईमेल आईडी rnudehradun@gmail.com पर भेज सक दिन।
5: गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र देहरादून बटिन प्रसारित होनु छे। ताजा समाचारों को आप हमारा सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सक दिन। दगड़ ही यो समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छन।
1: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभागन वित्तीय वर्ष 2025-2026 का तेलू रौतेली राज्य स्तरीय शक्ति पुरस्कार और राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार का वास्ता चयनित नामों की घोषणा कर दिया। तेलू रौतेली पुरस्कार का वास्ता प्रदेश का सभी 13 जिलों से एक एक महिला को चयन किए गए, जबकि राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार का वास्ता 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को चयन करे गई।
6: पुरस्कार 8 अगस्त हुए देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में प्रदान करे जाला। तिलू रौतेली पुरस्कार उन महिलाओं थे समर्पित जौन विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करेगी समाज में अपनी पहचान बढ़ाईच। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन बताया कि ये साल चयनित महिलाओं संस्कृति, खेल, वैज्ञानिक शोध, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, स्वरोजगार, समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और दिव्यांगजन कल्याण जन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दियुज। उन बोली की राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार का माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और प्रारंभिक शिक्षा का क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों थे भी सम्मानित करे जालू। आकाशवाणी देहरादून खुणे समाचार कक्ष बटे रुचि रावत।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्सन शिष्टाचार भेंट कैरी थे। ये दौरान उत्तराखंड में एनसीसी का विस्तार और प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत संरचना का विकास पर चर्चा हुई। बैठक में सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों में नई एनसीसी इकाइयों को गठन, प्रशिक्षण सुविधाओं थे सुदृढ़ बढ़ान और प्रस्तावित एनसीसी अकादमी की स्थापना सहित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करे गया।

0: लेण कवासा जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंघन देहात क्षेत्रों को निरीक्षण करी। ये दौरान उन नहर पटरी मार्ग रुड़की मंगलौर क्षेत्र में सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं की समीक्षा करी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से सतर्कता का दगड़ी कार्यकरण बरखा की स्थिति पर लगातार निगरानी रखन और कावड़ यात्रियों की सुरक्षा से प्राथमिकता देने का निर्देश भी दीनी। जिलाधिकारी के भी आवश्यकता की स्थिति में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करण पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखन का निर्देश दीनी। उखी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकन संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखन यातायात थे सुचारू बना रखन और कांवड़ यात्रियों थे आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्देश दीनी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश में लगातार होनी बरखा से सामान्य जनजीवन प्रभावित। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का चलदा विभिन्न स्थानों पर सड़क बंद। पिछले 24 घंटों बटी होनी बरखा के कारण नदियों को जलस्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमनन बोली कि प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर लगेगी बैठी चा। तीलू रौतेली राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कार और राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार का वास्ता सरकार नामों की घोषणा करी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह हमीन नई दिल्ली में एनसीसी का महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्सन शिष्टाचार भेंट की। राज्य में एनसीसी का वास्ता और प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत संरचना को विकास पर चर्चा हुई। यहां का दगड़ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक भी समाप्त हुई। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कृषि जगत।

कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाइयों और बहनों को आपकी बहन सुरुचि वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न होंगे और अपनी खेती किसानी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। साथियों, इस समय बरसात का मौसम भी है, तो ऐसे में हमें और भी जागरूक रहकर अपनी फसलों का और अपने पशुओं का बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि जब फसल सुरक्षित होगी और हमारे पशु स्वस्थ होंगे तो हमें उनसे लाभ भी अधिक मिलेगा। चलिए, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आज का सवाल भी हम आपसे पूछ लेते हैं, जिसका उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में जरूर बताएंगे, पर आप भी अपना उत्तर तैयार रखिएगा और फिर अपने उत्तर के साथ मिलान कीजिएगा कि आपने क्या जवाब दिया है। तो साथियों, आज का सवाल है कि बरसात के मौसम में फसलों में सबसे ज्यादा समस्या आपको क्या देखने को मिलती है। तो इस सवाल का जवाब आप ढूंढ के रखिए। साथियों, हम किसान खेती करते हैं लाभ के लिए, और अगर हम खेती अकेले करने के बजाय मिलकर खेती करेंगे तो हमारा लाभ और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कहते हैं ना कि एक और एक 11 होते हैं, यही बात खेती किसानी पर भी पूरी तरह लागू होती है, क्योंकि जब किसान अकेले खेती करने के बजाय मिलकर खेती करते हैं और अपनी उपज का सामूहिक रूप से विपणन करते हैं तो ना केवल उनकी लागत कम होती है बल्कि आमदनी भी बढ़ती है। आज हम जानेंगे कि सामूहिक खेती और सामूहिक विपणन किसानों के लिए कैसे लाभदायक साबित हो सकता है। साथियों, छोटे और सीमांत किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कम भूमि, महंगे कृषि यंत्र, बढ़ती लागत और उचित बाजार का अभाव। ऐसे में अगर आसपास के किसान मिलकर खेती करें तो कई समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। साथियों, सामूहिक खेती का मतलब है कि किसान अपनी अपनी जमीन का स्वामित्व अपने पास रखते हुए खेती से जुड़े कई कार्य जैसे जुताई, बुआई, सिंचाई, उर्वरकों का उपयोग, कीट प्रबंधन और कटाई मिलकर करते हैं। इससे

0: ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्रों का उपयोग मिलकर होता है, जिससे लागत काफी कम हो जाती है। अब बात करते हैं साथियों सामूहिक विपणन की। तो अक्सर हम देखते हैं कि किसान अपनी उपज जो है छोटी मात्रा में बेचते हैं, जिससे उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता। लेकिन अगर कई किसान मिलकर बड़ी मात्रा में अपनी फसल बाजार तक पहुंचाएं, तो वो सीधे मंडियों, बड़ी कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों और खुदरा विक्रेता से बेहतर दाम पर आप अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं। इससे जो है बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है और किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है। साथ ही परिवहन, पैकेजिंग और भंडारण का खर्च भी सभी किसान मिलकर उठाते हैं, जिससे प्रति किसान लागत कम हो जाती है। साथियों आज देश भर में किसान उत्पादक संगठन यानी FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसानों को इकट्ठा कर रही है और इनके माध्यम से किसान बेहतर गुणवत्ता के बीज, उर्वरक और कृषि यंत्र उचित मात्रा पर प्राप्त कर रहे हैं और अपनी उपज का बेहतर मूल्य भी प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपके गांव में अभी तक कोई किसान समूह या FPO नहीं बना है, तो आप अपने कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या सहकारिता विभाग से संपर्क करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए साथियों, हम किसानी कर रहे हैं तो हमें लाभ मिलना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम जब खेती करते हैं, मिलकर खेती करते हैं, तो हमारा लाभ भी जरूर बढ़ेगा। साथियों हम सभी जानते हैं कि पहाड़ी अनाज पोषण और स्वाद का खजाना है और इसी स्वाद के खजाने को अपनी मेहनत और लगन से एक उद्यमी महिला प्रीति मेंदोलिया जी पहाड़ी खानपान को आगे बढ़ा रही है। तो हमने की है उनसे बातचीत और उनसे जाना है कि उन्होंने कैसे सोचा कि पहाड़ी खानपान को आगे बढ़ाना है। तो आइए किसान साथियों सुनते हैं प्रीति मेंदोलिया जी से उनके अनुभव। नमस्कार किसान साथियों, आज किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आए हैं एक उद्यमी महिला के पास, जो कि हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक जो हमारे मोटे अनाज हैं उन पर काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छे व्यंजन जो हैं पूरी थाली वो परोस रही हैं। तो आज हम बात करते हैं प्रीति मेंदोलिया जी से। तो प्रीति मेंदोलिया जी, आप बताइए कि आपका क्या सफर रहा है, आपने क्या क्या चुनौतियों का सामना करा है और किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं उत्तराखंड के पारंपरिक जो अनाज है उनको लेकर कुछ काम करती हूँ। जी बताएं।
1: पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी
1: फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा ये कॉन्सेप्ट था,
0: जी
1: जब हम कॉलेज में थे तो अदर स्टेट के लोग फूड हर कहीं मिल जाता है,
0: बिल्कुल
1: लाइक जैसे लिट्टी चोखा हो गया, सरसों का साग हो गया, मद्रासी डोसा हो गया।
0: जी
1: तो हमारे उत्तराखंड का फूड कहीं नहीं मिलता था।
0: बिल्कुल
1: लोग आते थे कि यार यहाँ का भी खाना कुछ है क्या। तो जैसे ही मेरी फ्रेंड्स ने ये चीज बोली तो मुझे पिंच हुई।
0: हाँ,
1: अब तो कुछ करना है
0: जी,
1: अपने पहाड़ के कल्चर को प्रमोट करना है, तो क्यों ना खाने से ही शुरू किया जाए।
0: जी
1: तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है।
0: जी तो इस तरह से आपने सोचा कि मैं इसको स्टार्ट करती हूँ और फिर इसमें आपको बहुत से जो है रॉ मटेरियल, जो कि अनाज है रॉ, इनकी भी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, किसानों से किस तरह से संपर्क करते हैं, किस तरह से आपको ये अनाज जो है उपलब्ध हो पाते हैं, इस बारे में भी थोड़ा बताएं।
1: मैं खुद बेसिकली गढ़वाल से हूँ
0: जी,
1: तो मैंने खुद गांव में जाना स्टार्ट करा।
0: अच्छा।
1: एक्चुअली जब अगर आप इस पे काम कर रहे हो,
0: हाँ हाँ,
1: तो जो लोग इस रॉ को उगा रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों से मालूम लगेगा कि क्या चीज है और किस तरीके से बनाई जाएगी। तो मैं उन लोगों के बीच गई हूँ, उन लोगों से ही मैंने रॉ लेना स्टार्ट करा, लेकिन खेती बहुत ज्यादा कम हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा ये तो आप,
1: रॉ तभी मिलेगा जब खेती होगी और लोगों ने खेती करना बहुत कम कर दिया, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आनी स्टार्ट हुई हैं
0: जी।
1: तो हमने गांव-गांव जाके लोगों से राशन लेना स्टार्ट किया है, रॉ लेना स्टार्ट किया, और कुछ समूह हैं, महिला समूह
0: जी जी,
1: जो इन चीज़ों पर काम करती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो कुछ कॉन्टैक्ट हमने उनसे भी बनाए।
0: अच्छा।
1: तो कुछ हमने उनसे भी लेना स्टार्ट किया।
0: तो जैसे अब आपने अनाज की व्यवस्था कर ली, तो अभी जैसे होता है कि जो पारंपरिक जो खान पान है उसका जो स्वाद है वो तो दादी नानी जो बनाती थी उसी में बहुत रहता था। तो कुछ ना कुछ आपको जो बनाने के लिए आपके जो स्टाफ है, जो आपको काम करने के लिए कुक चाहिए, उसके लिए भी आपको देखना पड़ा होगा।
1: देखिए उत्तराखंड यूथ दो ही चीजों से जाना जाता है
0: जी,
1: या तो पहाड़ी फौज में होता है या फिर होटल लाइन में होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही।
1: तो स्टाफ मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है।
2: अच्छा।
1: स्टाफ मैनेज करने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि पहाड़ी खाना बनाना इजी भी बहुत है और उसको परोसना भी बहुत इजी है, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो टफ है।
2: बिल्कुल, वो किस तरह से है कि खाना जो है आंखों से खाया जाता है। बिल्कुल।
1: तो धीरे धीरे शुरुआत करी, लेकिन पूरी टीम ने साथ दिया, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि ऑथेंटिक खाना,
2: हाँ हाँ हाँ,
1: वो सच में ही दादी लोग ही बताते थे। मैं अपनी दादी को कॉल करती थी और कई बार मैं मम्मी दादी को से ही पूछती थी कि ये कैसे बनेगा,
2: जी जी जी,
1: कैसे चैसू बनेगा, ये कैसे काफली बनेगा। तो उन लोगों से पूछा, फिर उसे हमने रन करा कि इस तरीके से बनाना है। लाइक जैसे लोहे की कढ़ाई में हमारे यहाँ चैसू, भटवाणी, ये चीजें बनती हैं, उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो इस तरीके से शुरुआत करिए।
2: तो आपने बताया चैसू, भटवाणी, तो मैं जानना चाहूंगी कौन कौन से व्यंजन, कौन कौन सी चीजों पर आप काम कर रहे हो, किस तरह के व्यंजन हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं आप हमें।
1: देखिए, हमारे यहाँ गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, दो मंडल हैं।
2: अच्छा, हाँ हाँ।
1: तो जो कुमाऊं में है वो भटवाणी बहुत ज्यादा खाते हैं।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जो गढ़वाली है वो चौसा, हरी भुजी, मंडवे की रोटी ज्यादा खाते।
2: जी बिल्कुल, मतलब आपने दोनों तरह के। बिल्कुल।
1: जौनसारियों का जो फेवरेट है
2: जी,
1: पुरोलो का लाल भात।
2: लाल भात जो बहुत ही पौष्टिक भी है।
1: हाँ, और बहुत ही ज्यादा फेमस है
2: जी,
1: हमारी थाली की शोभा लाल भात ही बढ़ाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इस तरीके से हमने उसको डिस्क्राइब किया है।
2: अच्छा, तो लोगों का कितना रुझान आप देख रहे हैं कि आजकल जैसे कहा जाता मोटे अनाज है, इसको कहा जाता था कि ये तो गरीबों का खाना है, तो आज इस बात में कितनी सार्थकता है कि क्या ये अभी भी गरीबों का खाना है या इसको कितना रुझान मिल रहा है लोगों का?
1: गरीबों के साथ साथ ये हमारे पहाड़ों में
2: हाँ,
1: जानवरों का भी खाना था।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: हमारे यहाँ कहते हैं ना पहाड़ी में कि पेंडू बना एक दिन रचा मंडवा था।
2: जी जी जी।
1: तो ये चीजें अब जो मैं बोलूंगी, अब बहुत क्रेज है
2: जी,
1: क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वापस से अपने पुराने जमाने में जा रहे हैं
2: जी,
1: अपनी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। क्रेज तो इतना है पहाड़ी खाने का, बहुत ज्यादा, और हम मेहनत भी बहुत कर रहे हैं कि हर एक घर तक
2: जी
1: पहाड़ी खाना पहुंचा सके।
2: जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल क्रेज बहुत ज्यादा है मोटे अनाज को, जिन्हें हम श्री अन्न भी कहते हैं। हमारे मोदी जी ने इसको बहुत ही ज्यादा पॉपुलर किया है और आजकल इसकी मांग बहुत ज्यादा है। तो इस पे आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आप क्या कहना चाहोगे कि इसमें और कितना अभी काम होना बाकी है? आपको क्या लगता है कि क्या आज की जो युवा है उसको खेती किसानी में आना चाहिए और इसमें, क्योंकि देखिए मांग बहुत है मार्केट में।
1: देखिए, पहली बात, पहाड़ी खाना सारा मोटा अनाज में नहीं आता है
2: जी,
1: और जो मोटा अनाज है इसका नाम जो दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसी वजह से ये फेमस भी हुआ है
2: जी। बिल्कुल।
1: जो उत्तराखंड का खाना है ये रियल नेम से लोगों तक पहुंचना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा
1: कि उत्तराखंड का खाना
2: हाँ,
1: क्या है
2: जी।
1: और नंबर दूसरा, जो खेती की आप बात करें, खेती अब लोगों ने बहुत कम कर दी है
2: जी।
1: अब जो हमारा यूथ है या जिस तरीके से अब अवेयरनेस
2: हाँ,
1: आ गई है, कुछ लोग हैं कि जो अब खेती की तरफ वापस मुड़ चुके हैं।
2: बिल्कुल।
1: और कर रहे हैं, और बाहर अब तो ये कि आउट ऑफ इंडिया से भी
2: हाँ
1: लोग मंगाते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वही मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है इसमें ना।
1: और मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि वापस खेती भी करिए
2: जी,
1: अगर आप लोग खेती नहीं करेंगे तो हमल का गोटा बना।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल।
1: तो प्लीज आप लोग करिए, आप लोगों से ही हमें और हम साथ में ही मिलके काम करके ये चीजें प्रमोट कर सकते हैं
2: जी। तो कृति जी, जैसे आप खुद एक महिला हैं, आपने महिला होके इतना अच्छा जो है उद्यम स्टार्ट किया है पहाड़ी व्यंजन पे, तो आप पहाड़ों में भी गई हैं, तो वहाँ की महिला की क्या स्थिति है?
1: मैंने इस बार सच्ची में मैं एक बात कहूँ
2: जी,
1: अब पहाड़ की महिलाएं ना
2: जी
1: ठेठ पहाड़े ने बन चुकी हैं। वो इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं काम के प्रति
2: जी,
1: मुझे नहीं लगता कि अब महिलाएं घर पे बैठना पसंद कर रही हैं
2: जी।
1: वो अपना काम भी कर रही हैं, खेती भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, लेकिन पहाड़ों में ये स्थिति है कि जिस तरीके से समूह बनाए गए हैं
2: जी जी,
1: तो महिलाओं के ग्रुप्स
2: जी बिल्कुल
1: वो बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
2: जी। इसमें सरकार का भी बहुत सहयोग है कि अब महिला सशक्तिकरण की तरफ जागरूक हो रही है, पहाड़ की महिला भी अपने दम पर कुछ करना चाह रही हैं और कर भी रही हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कभी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: उम्मीद है आपने बातचीत को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा कुमाऊनी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: किसान साथियों, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, पेड़ है

0: तो जीवन है और पेड़ है तो समृद्धि है। आज के समय में यही बात खेती पर भी पूरी तरह लागू होती है। अगर हम खेतों में फसलों के साथ साथ उपयोगी वृक्ष भी लगाएं तो किसान अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं और इसी पद्धति को कृषि वानिकी कहा जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है साथियों, एक ही खेत में फसलों के साथ उपयोगी वृक्षों का वैज्ञानिक तरीके से रोपण करना। इसमें किसान अपनी भूमि पर ऐसे पेड़ लगाते हैं जो भविष्य में लकड़ी, फल, चारा, ईंधन और अन्य उपयोगी उत्पाद देते हैं, जबकि उनके बीच में नियमित खेती भी जारी रहती है। और साथियों, कृषि वानिकी का सबसे बड़ा लाभ है अतिरिक्त आय। जहां फसल हर मौसम में आय देती है, वहीं कुछ वर्षों के बाद पेड़ों से भी अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से किसान की आय के कई स्रोत बन जाते हैं और आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ जाती है। दूसरा बहुत जरूरी लाभ है मिट्टी का संरक्षण। जी हाँ साथियों, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती है, जिससे वर्षा के समय मिट्टी का कटाव कम होता है। साथ ही गिरी हुई पत्तियां सड़कर जैविक खाद बनाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और नमी बनाए रखने में भी मदद मिलती है। कृषि वानिकी का एक और बड़ा फायदा है, ये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में सहायक है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और तापमान को संतुलित रखते हैं, और इस तरह से जो है खेत का सूक्ष्म वातावरण भी अच्छा बना रहता है। इससे कई फसलों को तेज धूप और गर्म हवाओं से भी सुरक्षा मिलती है, और जो हमारे पशुपालन करने वाले साथी हैं, उनके लिए भी कृषि वानिकी बहुत लाभदायक है। खेतों में लगाए गए कुछ पेड़ की जो पत्तियां हैं, वो पशुओं के लिए पौष्टिक चारे के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही इससे चारे की उपलब्धता भी बढ़ जाती है और पशुपालन में भी लाभ होता है। अगर आप भी साथियों कृषि वानिकी अपनाना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुसार पेड़ों का चयन करें, खेतों की मेड़ों पर उचित दूरी पर जो है पेड़ लगाएं, ताकि फसलों को पर्याप्त धूप और पोषण मिलता रहे। आपके स्थान में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, वन विभाग है या कृषि विभाग है, उनसे भी आप सलाह लेकर पौधों का चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कृषि वानिकी अपना कर पर्यावरण की रक्षा भी जरूर करेंगे। अब साथियों, कार्यक्रम में समय हो रहा है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं ये गढ़वाली लोकगीत।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
7: पुतला बोल रहे?
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब?
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछ ना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
7: पर हम तो सब यही डाले हैं।
6: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
7: सच है?
6: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
7: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
8: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
9: साथियों, अब समय है आज के प्रमुख मंडी भाव जानने का। अगर आप अपने कृषि उपज को मंडी में बेचने की योजना बना रहे हैं तो आज के भावों की जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। सब्जियों की बात करें तो आलू है 898 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 1028 रुपए प्रति क्विंटल और प्याज 1862 रुपए प्रति क्विंटल। हरी मिर्च की बात करें तो 1895 रुपए प्रति क्विंटल, कद्दू की बात करें तो 784 रुपए प्रति क्विंटल। अब हम फलों की बात करें तो फलों में आम है 1683 रुपए प्रति क्विंटल, केले 1518 रुपए प्रति क्विंटल और सेब है 4894 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये थे कुछ प्रमुख मंडी भाव। ध्यान रहे साथियों, मंडी भाव फसल की गुणवत्ता, आवक, मांग और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए मंडी जाने से पहले अपने निकटतम कृषि उपज मंडी से भाव की पुष्टि अवश्य कर लें। साथियों, अब जानते हैं आज के मौसम की जानकारी। आज उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ तेज आंधी, पानी और भारी वर्षा होने की पूरी संभावना है। खास करके देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी में कुछ जगहों पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मध्यम से भारी या बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो मैदानी और कम ऊंचाई वाले इलाकों में जैसे देहरादून में आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पहाड़ी इलाकों में तापमान इससे काफी कम रहेगा। हवा में नमी 90 से 100% तक बनी हुई है, जिससे उमस महसूस हो सकती है। इसी के साथ मौसम विभाग ने पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा है। भारी बारिश के कारण संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और चट्टानें गिरने का खतरा है, तो इसलिए मौसम की जानकारी लेकर ही आप यात्रा पर निकले। तो साथियों, ये थी आज के मौसम की जानकारी। तो अब साथियों, समय हो रहा है आज के सवाल का जवाब देने का। तो आज का सवाल था कि बरसात के मौसम में आपकी फसलों में सबसे ज्यादा क्या समस्या देखने को मिलती है, जिसका उत्तर है जड़ सड़न की समस्या। क्योंकि साथियों, पानी अधिक भरने से मिट्टी में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिससे कि जड़ सड़न की समस्या फसलों में उत्पन्न हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। आज की सलाह भी यही है कि आप बरसात के मौसम में जल निकासी पर पूरा ध्यान दें, उसकी व्यवस्था अच्छे से करके रखें और साथ ही कीटों और रोगों की नियमित आप निगरानी कर रखें। कुछ समय खेत का निरीक्षण आप जरूर करें और बरसात में पशुशाला को भी साफ और सूखा रखें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। अपनी बहन सुरुचि वर्मा को अनुमति दीजिए फिर से आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आने के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखते रहिए। साथियों नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए सुनते हैं कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार औंगडगर मी ज्योति जोशी। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में लगातार होनी वाल द्योल सामान्य जनजीवन प्रभावित। पर्वतीय जागों में भूस्खलन का चलते अलग अलग जागों में सड़कें बंद। पिछाड़ी 24 घंटों बटी होनी द्यो का कारण नदियों का जलस्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमनल को प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बढ़ाई हुई छू। तिलु रौतेली राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कार और राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार अकलिजी सरकारल नामों की घोषणा की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे नई दिल्ली में एनसीसी का महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्सल शिष्टाचार भेंट की। राज्य में एनसीसी का विस्तार और प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत संरचना का विकास पर भी बातचीत। अब समाचार विस्तारल। प्रदेश में भोल ब्याल बटी लगातार होनी द्यो का कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है रो। कई जागों में भूस्खलन का कारण सड़क मार्ग प्रभावित है री, जबकि प्रमुख नदियों का जलस्तर में बढ़ोतरी भई छू। मौसम विभाग के अनुसार भोले राज्य का विभिन्न हिस्सों में मध्यम है तेज द्यो की संभावना छू। यो वक्त हमारे सहयोगी ममता पांडे देहरादून बटी हमार दगर जुड़ी छन, जो मौसम पर और ज्यादा जानकारी देन लागरी। जी ममता, बताओ यो वक्त मौसम को लेकर प्रदेश भर में की स्थिति छू?
2: जी ज्योति जी, यो बखत मैं देहरादून कारगी चौक पर मौजूद छूँ, और जहाँ पछिल कई बखत बतिल लगातार बर्ख होने। बर्ख कारण जो सड़कों पर वाहन चंद गाड़ी चंद बहुत सारी लंबी कतार देखने को लीजिए मिलने, और लोगों के ऊँड जान वाले बहुत ही परेशानी का सामना ले करने पड़ना। कई जगहों पर पानी भर गयो और यातायात की रफ्तार ले धीमी पड़ गए। अगर पूर्व देश की मैं बात करूँ तो लगातार रूंगाल बर्ख असर पर्वतीय जागो में ले देखने को लीजिए मिल रहा। कई जागों पर भूस्खलन की घटना जो बाढ़ छन वो प्रभावित हुई छन। हालांकि राहतक बात यो छ कि चार धाम यात्रा बाटों पर आवाजाही सामान्य बनी छू, और बंद पड़ी बाटों के खोलने के लिए प्रशासन और संबंधित विभाग लगातार मशीनों के दगर राहत कार्य में जुटी छन। वहीं मौसम की स्थिति के देखते प्रशासन भी पूर्व तरीके सतर्क छू, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल सपे आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों के संवेदनशील जगहों नदी नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों में लगातार निगरानी बढ़ाई रखकर और क्वेले आपात स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने निर्देश दी छन।
1: धन्यवाद ममता हमार दगर जुड़ना के लिए जी और यो जरूरी जानकारी बांटना के लिए जी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमनल बता कि प्रदेश में कुछ जगहों में नदियों का जलस्तर बढ़ी हुई छू। उन्होंने कहा कि फिलहाल लगभग 125

0: चार सड़क बाट बंद छन, जिनको खोलण काम जारी छू।
1: देखिए, बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है। कहीं कहीं वार्निंग लेवल के ऊपर चल रही है नदी। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जहां पानी का नजर लेवल बढ़ रहा है और आबादी को खतरा हो सकता है, वहां आबादी को आगाह किया जा रहा है, वहां से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 1869 के आसपास रास्ते बंद हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने मैक्सिमम रास्तों को खोल दिया है। जो रास्ते बंद हैं उसको खोलने की कार्रवाई चल रही है।
0: यो बीच देहरादूनक मालदेवता, सौड़ा सरोली और आसपास का आपदा प्रभावित जागो में राहत और पुनर्निर्माण कार्य तेजील जारी छू। जिला प्रशासन टूटी फूटी सड़कों का दोबारा बनून, सुरक्षा दीवारों के निर्माण और नदी किनार संरक्षण कामों में तेजी लीवे ज्यादा जरूरी कामों को पुरखर हली। प्रभावित जागो में सुरक्षा व्यवस्थाओं की लगातार देखरेख की जाने, सुरक्षा दीवारों और दुहर सुरक्षात्मक उपायों का नियमित निरीक्षण करी जानो। जैल ऊंड जाण सुरक्षित बनी रहो। अपर जिलाधिकारी के मिश्राल बता कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग द्वारा टूटी फूटी सड़क बाटों और सुरक्षा दीवारों पुनर्निर्माण काम लगभग पूर है गो। उन्होंने कहा कि प्रशासन विभिन्न विभागों के दगड़ेल राहत और पुनर्वास कामों को प्राथमिकता का आधार पर अगिल बढ़ूनो।
2: मालदेवता के क्षेत्र में जो भी क्षति हुई थी उसमें भी पीडब्ल्यूडी ने अपना काम पूरा कर लिया है। साथ में कलिंगा में कुछ इरीगेशन के नहर का इशू था, जो कई जगहों पर पानी की सप्लाई करते हैं, उसमें इरीगेशन विभाग ने अपना काम कर लिया है और वहां पे जो सप्लाई है सुचारू है।
0: स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार देहरादून 1 अगस्त बटी 15 अगस्त ताले क्विज प्रतियोगिता आयोजित करनो। प्रतियोगिता भीतर रोज ब्याल 6:30 तक समाचार बुलेटिन में एक प्रश्न पूछी जाल। प्रश्नक सबे पहली सही जवाब भेजण वाल श्रोता को विजेता घोषित करी जाल। जितनी वालक नौ की घोषणा अगिल दिनक समाचार बुलेटिन में की जाल। श्रोता अपन जवाब हमार व्हाट्सएप नंबर 7037888643 या ईमेल आईडी rnudehradun@gmail.com में ले भेज सकनी। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 का तीलू रौतेली राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कार और राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार लीजिए चुनी नामों की घोषणा कर हैली। तीलू रौतेली पुरस्कार लीजिए प्रदेश का सभी 13 जिलों बटी एक एक श्रेणी को चुनी गई छू, जबकि राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार लीजिए 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को चुनी गई छू।
3: 8 अगस्त के देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री उपस्थिति में प्रदान करी जाल तीलू रौतेली पुरस्कार उन श्रेणियों के समर्पित छू जनूल अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करवे, समाज में अपन पहचान बने रहे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्यल बता कि यह साल चुनी गई श्रेणियां संस्कृति, खेल, वैज्ञानिक शोध, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, स्वरोजगार, समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और दिव्यांग जन कल्याण जस क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे छू। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार माध्यम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करण वाल आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए सम्मानित करी जल। आकाशवाणी देहरादून अकलीजी समाचार कक्ष बटी मी गीता भंडारी।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिथे आज नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्सल शिष्टाचार भेंट की। यो बखत उत्तराखंड में एनसीसी का विस्तार और प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत संरचना विकास पर बातचीत भय। बैठक में सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों में नई एनसीसी इकाइयों गठन, प्रशिक्षण सुविधाओं को भल बनून और प्रस्तावित एनसीसी अकादमी की स्थापना दगड़े अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श करी गयो। मुख्यमंत्री कौकी राज्य सरकार युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति और सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध छू। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं का व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण में जरूरी भूमिका निभाणो। हरिद्वार में लगातार हुई दियो के बीच कांवड़ म्यालिक व्यवस्थाओं का जायजा लेणक लीजिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंगल देहात क्षेत्र की जांच करी। यो वक्त उन्होंने नहर पटरी मार्ग, रुड़की और मंगलोर क्षेत्र में सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षणक बखत अधिकारियों ड्यूटी पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्कता दगड़ काम करण, दियो की स्थिति पर लगातार नजर रखण और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना निर्देश दी। जिलाधिकारी कुएले आवश्यकता की स्थिति में झट कार्रवाई पक्की करण और जरूरी संसाधन उपलब्ध रखना निर्देश दी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संवेदनशील जागों में विशेष नजर रखण, यातायात को सुचारू बना

0: राखण और कावड़ यात्रियों को जरूरी सहायता उपलब्ध करोना निर्देश दी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दिसंबर है पहली अलग अलग विभागों 2477 पदों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करल। यह कदगड़ी पहली बटी विज्ञापित 1470 पदों की लिखित परीक्षाएं ले दिसंबर ताले आयोजित की जल। आयोग का अध्यक्ष जीएस मर्तोलियाल बता कि नई भर्ती प्रक्रिया में स्केलर, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिक सहायक, स्नातक स्तरीय विज्ञान वर्ग, पुलिस आबकारी और परिवहन विभागक वर्दीधारी पद, संस्कृत विभाग में सहायक अध्यापक और सहायक विकास अधिकारी दगड़े अलग अलग पद शामिल छन। उन्होंने बता कि जो 1470 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पहली पूरी है, उन्हें लिखित परीक्षाएं लें दिसंबर ताले करुणक लक्ष्य रखी गई छू। यमें व्यक्तिक सहायक, पशुधन प्रसार अधिकारी, सहायक लेखाकार, कृषि विभागक अलग अलग पद और दुहर स्नातक स्तरीय पद शामिल छन। पौड़ी में सितंबर मेड़ में होने वाले खेल महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरियाल समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी तैयारियां समयबद्ध ढंगल पूर्करण और आयोजन को सुव्यवस्थित और सहभागितापूर्ण बनुणक निर्देश दी। जिला युवा कल्याण अधिकारी पंकज तिवारी बता कि खेल महाकुंभक भीतर अंडर 14 और अंडर 19 आयु वर्ग का चल चली खिलाड़ियों की प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जल। 1/10 सितंबर ताले न्याय पंचायत स्तर, 11/20 सितंबर ताले विधानसभा स्तर और 21/30 सितंबर ताले संसदीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होली। यमें चुनी गई खिलाड़ी राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में जनपद का प्रतिनिधित्व करल। जिलाधिकारी खेल की जगहों को झट चुनण, जरूरी मरम्मत काम बखत पर पुरकरण और खिलाड़ियों के लिए खान पीण, स्वास्थ्य सेवाएं और दुहर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करुणा निर्देश दी। उन्होंने विद्यालय और जनप्रतिनिधियों के माध्यम जद नांतिनों की भागीदारी सुनिश्चित मेले जोर दे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लगातार होने वाले दियोल सामान्य जनजीवन प्रभावित। पर्वतीय जागों में भूस्खलन का चलते अलग अलग जागों में सड़कें बंद। पिछले 24 घंटों बटी हुई दियो का कारण नदियों का जलस्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमेनल को प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाई छू। तीलू रतेली राज्य स्त्री शक्ति पुरस्कार और राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार लीजिए सरकारी नामों की घोषणा की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे नई दिल्ली में एनसीसी का महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्सल शिष्टाचार भेंट की। राज्य में एनसीसी का विस्तार और प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत संरचना का विकास पर भी बातचीत। यह कदगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूं। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सायंग के 7:41 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत, ये रात फिर ना आएगी फिल्म से आशा भोसले की आवाज में। SH बिहारी के बोल हैं और OP नैयर का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गीत खामोशी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल हैं और हेमंत कुमार का संगीत।

0: किशोर कुमार के गाए खामोशी फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। पुनः आप फिल्म संगीत सुन सकते हैं रात्रि 8:30 पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सायं के 7:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति उम्मीद की किरण।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, सेवा, मानवता और करुणा, ये तीन ऐसे मूल्य हैं जो समाज को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जब भी कोई आपदा आती है, कोई व्यक्ति घायल होता है या किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तब सबसे पहले जो हाथ मदद के लिए आगे बढ़ते हैं उनमें रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी के इतिहास, उनके मानवीय कार्यों, समाज में उनकी भूमिका और आम नागरिक किस तरह इस सेवा अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। इन सभी विषयों पर जानकारी दे रहे हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला उत्तरकाशी के चेयरमैन माधव जोशी और आपसे बातचीत कर रही हैं रागनी बिंजोला।
2: श्रोताओं, आज के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला उत्तरकाशी के चेयरमैन श्री माधव जोशी जी। श्रोताओं, रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जो सेवा और करुणा के मूल्यों के साथ समाज के हर वर्ग तक सहायता पहुंचाने का कार्य करती है। हमारे साथ हैं माधव जोशी जी। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: जी। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि सोसाइटी की स्थापना जब हुई थी तो उसका क्या उद्देश्य है?
3: जो सर हेनरी डुनेंट, जिन्होंने इसकी स्थापना करी है, उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और 3 बार रेडक्रॉस संस्था को मिल चुका है। उन्होंने स्थापना इसलिए करी थी कि जो जरूरतमंद है उनकी सहायता हो सके। उनके 7 सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों पर चलने की उन्होंने बात कही थी। और रेडक्रॉस जो आज के दिन में जो काम कर रहा है उत्तरकाशी में, बहुत ही अच्छा कर रहा है। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी ने भी कई बार तारीफें की हैं उत्तरकाशी जिले की, तथा उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड में रेडक्रॉस के जो कार्य चल रहे हैं बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगा रेडक्रॉस के ब्लड डोनेशन प्रोग्राम की, जहाँ पर हम एक रजिस्टर में अपने नाम नोट करवा देते हैं। जितने भी हमारे लाइफ टाइम मेंबर रहते हैं या फिर जो भी संस्थाएं हमें सहयोग करती हैं, उनको भी हम साथ में लेकर रेडक्रॉस के ब्लड डोनेशन प्रोग्राम चलाते रहते हैं, जिसमें कि जितने भी जैसे एक्सीडेंटल प्रोग्राम हो गया या फिर डिलीवरी वाली कोई महिला है जो चिकित्सालय में पड़ी हुई है, तो तुरंत एक ग्रुप के माध्यम से हमारे पास कॉल या मैसेज आ जाता है कि उसको ब्लड की जरूरत है और हमारे वॉलंटियर्स तुरंत वहां पर जाके उसको ब्लड दिला देते हैं। और समय समय पर हम ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं, जिससे हमें त्वरित रक्तदान वाली कार्रवाई हो वो पूरी करने में काम आ जाते हैं
2: जी। और अगर मैं उत्तरकाशी जनपद की बात करूं तो वहां पे एक आपदा प्रभावित क्षेत्र और उत्तराखंड राज्य ही एक आपदा प्रभावित माना जाता है, तो अगर ऐसी कभी आपात स्थिति आ जाए तो इसमें रेड क्रॉस की क्या भूमिका रहती है?
3: उत्तरकाशी शायद जोन 4 और 5 में आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा आपदा ग्रस्त एरिया है। और यहाँ पर जब भी कोई आपदा आती है, आपने देखा होगा अभी धराली वाली आपदा आई, सिलाई बैंड पे आपदा आई, हर जगह, मतलब इतना बड़ा क्षेत्र है, आपदाएं आती ही रहती हैं क्योंकि आपदा ग्रस्त क्षेत्र है। इसलिए रेड क्रॉस सबसे पहले जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है वो फर्स्ट एड का चलता है। जैसे कोई बस गिरती है, कोई गिरती है, तो हम फर्स्ट एड के

0: माध्यम से उनकी सहायता करते हैं। हॉस्पिटल में जो भर्ती होता है उसकी हम सहायता करते हैं, और कई बार हमने देखा है कि जैसे गंगनानी में एक बस गिरी थी तो हम दून हॉस्पिटल तक उनको कराया। इसी प्रकार जैसे धराली वाली आपदा थी, हमारे जो वॉलेंटियर्स थे वो 24 आवर्स वहां पर रहे और धराली आपदा पीड़ितों की सहायता करते रहे, उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते रहे, और जिलाधिकारी महोदय जो हमारे प्रशांत आर्य जी हैं उनके जरिए हम हेली से वहां पर सामान जैसे कंबल, किचन सेट, कोई भी चीज हो, बरसाती थी उस टाइम या फिर छाता था, हमने वहां पर पहुंचाया है।
1: जी, फर्स्ट एड की आपने बात की, प्राथमिक उपचार, तो इसका प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण होता है और इसे कौन कौन प्राप्त कर सकता है?
0: बिल्कुल, कई बार आपने देखा होगा कि किसी मॉल में तुरंत कोई गिर गया है लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि क्यों गिरा है। तो कई बार वो गिरता है शुगर की वजह से, तो हम कहते हैं कि उसको अगर हम थोड़ा सा चीनी उसके मुंह में डाल दें तो वो उससे उठ सकता है। दूसरा CPR, अगर वो हार्ट संबंधी गिरा है तो हम CPR देके उसको उठा सकते हैं। तो हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है CPR और चोकिंग और बर्न, स्नेक बाइट, इस पे चलते हैं, और ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे उच्च स्तरीय चलते हैं वो सेंट जॉन्स एम्बुलेंस से हमारे पास जो हमारे पास ट्रेनर हैं वो देते हैं।
1: जी, और युवाओं और विद्यार्थियों की रेड क्रॉस की गतिविधियों में क्या भूमिका रहती है?
0: युवाओं और जो हमारे रेड क्रॉस वॉलेंटियर हैं या फिर विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों को हमने दो वर्गों में बांटा है, जिसमें रेड क्रॉस यूथ इसमें रखा गया है, और हर विद्यालय में हमें 2 रुपए रेड क्रॉस का जो मिलता है हम ट्रेनिंग प्रोग्राम विद्यालय में देते हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत हम स्वच्छता पे गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग रखना बच्चों को ये समझाते हैं। नशे के खिलाफ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं कि नशा हो तो खेल का हो। आप देखेंगे आज लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, नंबर 1 रैंकिंग पर विदेशों में खेल रहे हैं, और उसी प्रकार और ड्राइंग प्रतियोगिता कराकर या फिर विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार से पढ़ाई में मदद कर उनको सामग्री अवेलेबल कराकर हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं।
1: जी, अगर हम बात करें कि आम नागरिक रेड क्रॉस से अगर जुड़ना चाहे तो वो किस रूप में जुड़ सकते हैं और कैसे जुड़ सकते हैं?
0: आम नागरिक है, हर कोई रेड क्रॉस से जुड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं जुड़ सकता। देखिए, 5 साल का बच्चा भी जुड़ सकता है, 17 साल का जवान भी जुड़ सकता है, और 65-70 ईयर्स के बुजुर्ग व्यक्ति भी जुड़ सकते हैं, कि हर कोई इससे लाइफ टाइम मेंबर की फीस एक ही टाइम होती है।
1: जी, तो आप ये फीस देकर आप रेड क्रॉस का मेंबर बन सकते हैं।
0: बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा जो 1000 रुपए हम इनसे फीस के तौर पे लाइफ टाइम मेंबर की लेते हैं, उसमें जो हमारी जो ये प्रोग्राम है और ये जो सहायता वाली चीजें हैं, जैसे किसी को सामग्री दिलानी है, बच्चे की मदद करनी है, फीस दिलानी है, या फिर किसी को इक्विपमेंट दिलाना है, क्योंकि रेडक्रॉस अभी 5 हमारे पास जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे वो भी जो घर पे पेशेंट है उनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट जा रखे हैं, कई जगह हमारी बैसाखियां जा रखी हैं, कई जगह हमारी व्हील चेयर जा रखी हैं, तो रेडक्रॉस कुछ ना कुछ करता है और हम कहते हैं कि सब जुड़े।
1: अगर मैं भविष्य की बात करूं तो रेडक्रॉस सोसाइटी की आगे के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं?
0: आगे की जो योजना है, पूरे उत्तराखंड को हॉर्न फ्री जोन बनाना है, क्योंकि हॉर्न के कारण हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनकी परेशानी बढ़ जाती है, और गाड़ियां हॉर्न बजा बजा के चलती हैं, सुरंग के अंदर जो पैदल यात्री हैं वो हॉर्न से परेशान हैं, तो हॉर्न फ्री चाहते हैं। और दूसरा, गीला और सूखा कूड़ा, जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि गीला और सूखा कूड़ा की एक बाल्टी गीले कूड़े की होती थी, तो वेस्ट मटेरियल मतलब जो हमारा खाना बचता था एक बाल्टी उसमें रहती थी, वो पशु और पक्षियों को दिया जाता था, वो साफ सुथरी बाल्टी रहती थी, और सूखा कूड़ा दूसरी बाल्टी में रखा जाता था। तो यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। और तीसरा, हम नशे के खिलाफ, जो नशा बढ़ गया है, नशे के खिलाफ कर रहे हैं।
1: जी, जो उत्तरकाशी जनपद है वहाँ पर जो रेडक्रॉस की गतिविधियाँ हैं, क्या जो ग्रामीण है उनकी भी भागीदारी रहती है रेडक्रॉस में, या रेडक्रॉस किस तरीके से ग्रामीणों को अपने साथ अपना जो ये समाज सेवा का कार्य है उसमें जोड़ते हैं? जी,
0: जो ग्रामीण है वो ब्लड बैंक में आकर जब ब्लड मांगता है और कहता है कि हमारा बच्चा बीमार है, तो रेडक्रॉस उसे ब्लड देता है, तब उसे पता चलता है कि रेडक्रॉस क्या क्या चीज करता है। तो ग्रामीण भी आजकल रेडक्रॉस के साथ जुड़ चुका है, और अगर किसी को रक्तदान की जरूरत है तो वो तुरंत हाँ करता है।
1: जी,
0: इतना जागरूक कर दिया है रेडक्रॉस ने। तो हमने एक योजना चलाई, जैसे आपका कोई करी।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति उम्मीद की किरण। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज की कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानबड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्यमंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और

स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएम के सदस्य डॉक्टर एम थंबी दुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएमडी के सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारालू हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां

अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका ये व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। यह विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है, हालांकि UPI लेन देन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है, साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल

0: विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं डॉक्टर राधा रतूड़ी से रमेश चंद्रा की बातचीत। बातचीत का विषय है स्तनपान माँ और बच्चे के लिए जरूरी।
2: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर राधिका रतूड़ी को। आप प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राधिका रतूड़ी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्ते आपको और सारे श्रोताओं को, धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे स्तनपान माँ और बच्चे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जानना चाहेंगे आपसे स्तनपान क्या है और ये नवजात शिशु के लिए क्यों आवश्यक है।
3: हम अगस्त के पहले हफ्ते में, पहले से 7 तारीख तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं, जो कि वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एसोसिएशन है वाबा। वो हमें हर साल गाइडलाइंस बदलती हैं, हमें एक अवेयरनेस का मौका देते हैं, हमें पब्लिक से कनेक्ट करने का मौका देते हैं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान की इम्पोर्टेंस हम बढ़ा सकें, बता सकें क्या एडवांटेजेस हैं। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, स्तन का दूध, वो बच्चे के लिए सबसे पहला पोषण, सबसे पहला आहार बनता है। जैसे ही डिलीवरी होती है, पहले घंटे को हम गोल्डन आर कहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हर नवजात शिशु, अगर उसको कहीं NICU या ICU में ना शिफ्ट करना पड़े, तो बच्चे को मां के स्तन से लगाया जाए और स्तनपान का इनिशिएशन शुरुआत कराई जाए।
2: डॉक्टर साहब, आपने कोलेस्ट्रम की बात की, या जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसकी, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसे अमृत के तुल्य माना गया है।
3: कोलेस्ट्रम तथा खीस तथा लिक्विड गोल्ड, अमृत जो हम कहते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडीज में बहुत रिच होता है। अगर कोलेस्ट्रम बच्चे को मिला है तो बच्चे को कई तरह की एलर्जी से, निमोनिया से, कभी कभी अस्थमा से, इन चीजों से आगे चल के लाइफ में बचाव मिल सकता है। यहाँ तक कि टाइप 2 डायबिटीज, मधुमेह में भी, जो बच्चे माँ के स्तनपान से लगे हैं, जिन्होंने माँ का स्तन का दूध पिया है, उनको इन सब बीमारियों से ज्यादा जल्दी छुटकारा, मतलब इम्यूनिटी मिल सकती है कि उनको ये होने की संभावना कम होगी।
2: कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बचपन में जिसने माँ का दूध पिया है, वो बड़ी उम्र में बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षित रहेगा।
3: बिल्कुल, ये एक सुरक्षा कवच है हमारे बच्चे के लिए, खासकर नवजात शिशु जो कि प्री टर्म होते हैं, जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं किसी कारणवश, उनमें और इम्पोर्टेंट है ये देना, क्योंकि एक बच्चा जो नवजात है, जो टाइम से पहले, कुछ महीनों से, 9वें महीने से पहले पैदा हुआ है, उसमें तो बिल्कुल ही अमृत का काम करता है बच्चे के लिए।
2: डॉक्टर राधिका, केवल माँ का जो दूध है, कितने महीने तक बच्चों को दिया जा सकता?
3: इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला, शुरुआत सबसे पहले घंटे में, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, 6 महीने बाद आप ऊपरी आहार शुरू करें, 6 महीने तक हमें पानी भी नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध। मदर जो न्यूबॉर्न की है, वो एक सही तापमान पे हमें दे सकती है, सुरक्षित होता है, वो साफ होता है और उसमें आर्थिक समस्याएं भी नहीं होती, कहीं भी बैठ के पिलाया जा सकता है, उसमें बॉटल स्टरलाइज नहीं करनी, डब्बे के दूध का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी कॉस्ट कटिंग पे भी बहुत फर्क पड़ता है।
2: डॉक्टर साहब, पहले 6 महीने तक है केवल और केवल बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना है, लेकिन हमारे यहाँ तो परंपरा है, जब बच्चा पैदा होता है तो बुआ के हाथ से, या रिश्तों में कहते हैं ये मान्य है, इसके हाथ से कुछ खाने पीने की चीज उसे वो पिला दी जाए।
3: नहीं, ये बिल्कुल मना किया गया है। अधिकतर, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी जितनी देश हैं, जितने कंट्रीज हैं, सब कहते हैं दूध, घुट्टी, दही, शहद, कुछ नहीं देना बच्चे को, पानी तक नहीं देना। माँ का दूध ही पूरा पोषण है, उसमें पूरा आहार है जो बच्चे को चाहिए, एंटीबॉडीज हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बच्चे को उसी से अपना हाइड्रेशन, कि हमारा बच्चे का जो एक हाइड्रेशन लेवल होता है कि बॉडी में पानी की कमी ना हो, वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क से ही पूरी हो जाती है, पूरी कुछ नहीं चाहिए।
2: लेकिन जो लोग अपने बच्चे को कुछ खाने पीने की चीजें, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 1-2 महीने का, खिला देते हैं, या गाय का दूध या भैंस का दूध पतला करके पिला देते हैं, इससे कुछ फर्क पड़ सकता
3: उसमें है? कई बार बच्चे को निमोनिया के चांसेस हैं, गाय के दूध में, भैंस के दूध में कई बार उतनी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं।

0: तो बच्चा वो पचा भी नहीं सकेगा, और कई बार ऐसी तरह से बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, निमोनिया जैसी, अस्थमा जैसी कंडीशंस, कई तरह की एलर्जीज भी बच्चों में देखी गई हैं, रैशेज हो जाते हैं, आंखों में, नाक से भी पानी आना, आंखों से पानी आना, मुंह में जो है ओरो फंगल कैंडिडियासिस होना, फंगल इन्फेक्शन होना, ये सब देखे गए हैं, जो कि बाहर के पदार्थ अगर 6 महीने से पहले दिए गए हों, जो कि साफ सुथरे ना हो, और बच्चे भी की भी इम्यूनिटी बनने में उतना वक्त लगता है, तो हम बिल्कुल भी ये कोशिश करते हैं कि ये मैसेज दें कि ये सारी चीजें ना करी जाएं।
1: डॉक्टर साहब, जिन माँ को पर्याप्त दूध नहीं बन पा रहा है, ऐसी माताओं को क्या सलाह देंगे?
0: हम ये कोशिश करते हैं कि हर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान ही ये बताया जाए कुछ चीजों के बारे में, दो तीन, एक कि अगर स्तन का साइज छोटा हो तो ये ना सोचें कि दूध कम निकलेगा, या कुछ मदर्स में कई बार अगर मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, स्तनपान पिलाने के लिए अगर दूध देने के लिए नहीं निकलता, उसके कई बार तरीके आते हैं कि बच्चे को किस तरीके से छाती से लगाया जाए, फिर भी अगर माँ के खान पान में अगर कमी हो उसको भी अगर पूरा करा जाए, तब भी नहीं हो तब भी एक दूसरी महिला का भी दूध ह्यूमन मदर का दिया जा सकता है। ह्यूमन मिल्क बैंक्स भी कई कॉर्पोरेट्स में अवेलेबल हैं, बड़े शहरों में अवेलेबल हैं, और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जो शहर के हमारे नामी पीडियाट्रिशियंस हैं, जितने लोगों ने आईसीयू भी करे हैं, वो भी कई बार मदर्स से रिक्वेस्ट करते हैं, जो मदर्स आके डोनेट भी कर सकती हैं, ताकि ऐसे बच्चे जिनकी मदर्स को नहीं मिल रहा है वहां से भी हम अवेलेबल कर सकें।
1: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में शुरुआत में आपने बताया कि माँ के दूध से बच्चे को बहुत सारे लाभ होते हैं, क्या स्तनपान से माँ को भी कुछ लाभ होते हैं?
0: बिल्कुल लाभ होते हैं। सबसे पहले प्रसव के बाद जो बच्चेदानी का आकार होता है, बच्चेदानी सिकुड़ती है, धीरे धीरे अपने नॉर्मल साइज में आने की कोशिश करती है, तो जो माएं बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं उनमें, या कराती हैं उनमें, बच्चेदानी अच्छे से उस गोलाई में सिकुड़ती है। जो हमारा रक्तचाप बहता है योनि के रास्ते डिलीवरी के बाद, जो कहते हैं करीबन 30 दिन 40 दिन तक रहता है, जो माएं सिर्फ अपना दूध पिलाती हैं उनमें रक्तचाप भी कम जाता है, जो परिवार नियोजन के लिए भी ये काम करता है। अगर कोई माँ सिर्फ अपना ही दूध पिला रही है तो वो, उसके पीरियड आने बंद हो जाएंगे, लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं इसे, और
1: जी
0: उस में मदर को परिवार नियोजन का भी फायदा मिलेगा। हालांकि हम फिर भी कहते हैं कि नवरोध का इस्तेमाल करा जाना चाहिए, बिकॉज बर्थ स्पेसिंग, फैमिली स्पेसिंग भी बहुत जरूरी है। 1.5 साल तक, जब तक छोटा बच्चा ना पूरा हो जाए तब तक दूसरे के लिए कोशिश ना करें, मिनिमम 1.5 ईयर्स या एटलीस्ट 2 ईयर्स।
1: डॉक्टर साहब, आज के समय बहुत सारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो कामकाजी हैं, कहती हैं हमें तो समय ही नहीं मिल पाता क्योंकि वो अपने वर्क प्लेस पर होती हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे को कैसे स्तनपान कराया जाए?
0: ऐसी स्थिति में आजकल टेक्नोलॉजी हमारी इतनी बढ़ गई है कि ब्रेस्ट पंप्स अवेलेबल हैं, उसमें स्टोरेज पैक्स अवेलेबल आते हैं, आप आराम से फ्रिज में उसको स्टोर करके रख सकते हैं और उसको नॉर्मल तापमान में आने का वेट करें और बच्चे को कोई भी दे सकता है।
1: कितने दिन फ्रीज में स्टोर किया हुआ दूध बच्चे को पिलाया जाना सुरक्षित है?
0: अगर हमने ढंग से स्टोर किया है तो 6 महीने तक भी आप उसको यूज कर सकते हैं, अगर आइस पैकिंग में, वो आइस फ्रीजर में स्टोर किया गया हो तो।
1: कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं जिनमें जो माँ है या बच्चा है, दूध पिलाने को लेकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल लेनी चाहिए, जहां आपको लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझे लगता है कम्युनिकेशन, वार्तालाप से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स हैं जो कि हम बस्ट कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं, तो हर कोशिश ये की जानी चाहिए कि पहले बच्चे को माँ की छाती से ही लगाया जाए। तब भी अगर पेट नहीं भर रहा है, कम आ रहा है, हमारे पास 2 स्तन हैं, पहले एक से लगा के पूरी तरह एक को खाली किया जाए, फिर दूसरे पे लगाया जाए, सल्यूशन हर चीज का है अगर हम कम्युनिकेट प्रॉपरली करें।
1: स्तनपान को लेकर समाज में भी तमाम तरह की भ्रांतियां हैं।
0: स्तनपान लोगों को लगता है कराने से बच्चे को उतना इमोशनल अटैचमेंट लोगों को लगता है कि शायद ना मिले, जबकि इट इज द ऑपोजिट, जितना बच्चा माँ के स्तन से लगेगा उतना ही बच्चे का भावनात्मक अटैचमेंट होगा, वो मदर से होगा। बच्चे को इवन IQ वाइज, इमोशनल यू नो क्वोशेंट जो कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, उन बच्चों का बहुत अच्छा होता है जो स्तनपान करते हैं, कंपेरिजन जो नहीं करते हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं, बच्चे को उतना आहार नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, बच्चा कमजोर रह जाएगा, ऊपर से घुटियां पिलाई जाए, कैल्शियम दी जाए, बट अगर एक माँ अपना दूध दे रही है, बच्चे का पेट भर रहा है, बच्चा पेशाब दिन में ठीक कर रहा है, पॉटी कर रहा है, और बच्चे का वेट गेन और माइलस्टोन्स ठीक हैं, ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा कोई और सब्स्टिट्यूट है ही नहीं।
1: डॉक्टर साहब, जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, माँ हो गई, दादा दादी हो गए, अन्य लोगों का भी कुछ सहयोग चाहिए होता है, महिला जिसने

0: नवजात शिशु को जन्म दिया होता है।
1: परिवार बहुत बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इसमें। हमारी सास का रोल, हमारी माता का, इनफैक्ट न्यू फादर्स का रोल, कि मदर को एनकरेज करें, ब्रेस्ट फीडिंग कराना, उसको इनिशिएट कराना, उसको सीखना, हर माँ के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक नया अनुभव है, खासकर वो माएँ जो पहली बार माँ बनी हैं। हम एकदम से किसी को डिमोटिवेट ना करें, ये ना कहें अरे आप ढंग से नहीं पिला पा रही हैं, बच्चे का पेट नहीं भरा है, फटाफट ऊपर का दे दो। हमें कोशिश करना है कि हमें उसे एक क्लोज सेफ स्पेस देनी है, जहां वो बच्चे के साथ कनेक्ट कर सके। माँ को अच्छा आहार देना है, माँ को खुले एनवायरनमेंट में खाने पीने की सुविधा सब दी जाए, वो बीच में आराम कर सके, ये सब चीजों का ध्यान हमें रखना है, ताकि हम माओं को प्रमोट कर सके, वो डरे ना, हिचकिचाए ना बच्चे को स्तनपान कराने के लिए।
0: डॉक्टर साहब, आपने बोला कि जो माँ स्तनपान करा रही है उसे पर्याप्त तो पोषण दिया जाए, आहार दिया जाए, किस तरह का वो आहार हो?
1: हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए कैल्शियम के लिए, ताकि हड्डियां मजबूत रहें, और क्योंकि हमारे स्तनपान में भी जो ब्रेस्ट फीडिंग में जो मिल्क निकल रहा है उसमें कैल्शियम लॉस हो रहा है, हमें हमारे स्तन से कैल्शियम लूज हो रहा है, तो हमारा कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी उतना होना चाहिए। एंड यूजुअली कैल्शियम जब देते हैं उसके साथ विटामिन D3, रोटी दाल सब्जी दूध दही पनीर, हमें पेशेंट को हर 2-2.5 घंटे में माँ को कुछ ना कुछ खाने के पदार्थ देने चाहिए। हम उनको ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं आहार के लिए, फ्रूट्स भी हम दें, तो इन चीजों का, डेयरी प्रोडक्ट्स का हमें ध्यान रखना है कि हम उनका पालन करें, कि हम उनका खाने पीने का ध्यान रखें।
0: जो माताएं कामकाजी हैं उनके लिए क्या कहेंगी, वो कैसे अपने खान पान का ख्याल रखें?
1: जो माएं ऑफिस जाती हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगी कि आप छोटे टिफिन में पैक करके अपने लिए भी पोषण ऑफिस ले जाएं, आप अपना दूध निकाल के घर पे रखें। इनफैक्ट आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जगह जगह पे लैक्टेशनल बूथ्स भी बना रही है, हर ऑफिस में, हर सोसाइटी में, जहां ऑफिसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोशिश करके ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करने के लिए प्ले एरियाज भी बनाए गए हैं, जहाँ पे बच्चों को साथ ले जाने की सुविधा रहती है। और 6 महीने की मेटर्निटी लीव सबको ही आजकल हर विभाग में, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में दी जा रही है, 15-20 दिन की पेटर्निटी लीव भी, कि फादर भी उस प्रोसेस को इनिशिएट कराए, अपने पेशेंट के साथ रहे और इस चीज को शुरू कराए।
0: लेकिन डॉक्टर राधिका जी, आज भी समाज में कुछ धारणाएं प्रचलित हैं एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा, ये डिब्बाबंद दूध, इससे बच्चा स्ट्रांग हो जाएगा, बेहतर होगा, विकास उसका अच्छा होगा, ये सारी चीजें चलती हैं।
1: मुझे लगता है इसीलिए हम साल दर साल इन चीजों को और अवेयरनेस के रूप में और प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ताकि इसकी जागरूकता बढ़े, और जहां तक हो सके हमें नेचुरल चीजों से अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए। उन लोगों के लिए जो वाकई में किसी कारणवश नहीं करा पाए हैं, या प्रोडक्शन कम है, या बच्चा कभी हॉस्पिटल शिफ्ट हुआ है, उनके लिए फिर, क्योंकि हम एक सदी में आगे बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, इसीलिए सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट कैन नेवर बी ओरिजिनल, इट विल ऑलवेज बी कि आप ओरिजिनल कुछ और है और आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं जब आपको उस चीज की उपलब्धि नहीं है।
0: रिप्लेसमेंट ओरिजिनल से बेहतर नहीं हो सकता।
1: डेफिनेटली नहीं।
0: कुछ WHO की, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी सिफारिशें भी हैं स्तनपान को लेकर। कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें जो हमारे श्रोताओं को या जो माताएं स्तनपान करा रही हैं उन्हें जाननी चाहिए।
1: सबसे पहले घंटे में इनिशिएट कराइए ब्रेस्ट फीडिंग, ताकि मदर के लिए भी, जब बच्चा स्तन से लगता है तो भी मिल्क प्रोडक्शन का इंडिकेशन हमारी बॉडी में जाता है, इसीलिए चाहे एक बूंद आए लगाना जरूरी है। 6 महीने तक आप बच्चे को सिर्फ सिर्फ सिर्फ माँ का स्तनपान के लिए माँ का दूध दें, 6 महीने बाद आप आहार लें। और इसके साथ साथ WHO ये कहता है कि हर माँ को कम से कम 6 महीने, साल भर, 1.5 साल तक दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने बाद हम ऊपरी चीजें शुरू करेंगे, और घुट्टी, शहद, दही, ऐसी कोई भी पदार्थ, या गाय का दूध या भैंस का दूध नहीं देंगे।
0: जब गर्मियों का टाइम होता है तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यही कहते हैं कि नहीं, बच्चों को पानी पिला दो, इस तरह की तमाम कार्य वो बोलते ही बोलते हैं।
1: हम कोशिश करते हैं अब अस्पतालों में कि हम माओं को सिखाएं, जो हमारे ब्रेन का, ये जो मस्तिष्क का एरिया है आगे, एंटीरियर फोंटेनल कहते हैं इसे, बच्चों में ये बंद नहीं होता है, खुला होता है, तो जब हम हाथ रख के माओं को फील कराते हैं कि अगर किसी को लग रहा है बहुत गर्मी है और बच्चे को पानी की कमी है, तो पहले असेस करके देखें, अगर वो सर में हल्का गड्ढा बना रहा है तब हम डिहाइड्रेशन सस्पेक्ट करते हैं, और तब भी हम सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देंगे, पानी 6 महीने तक नहीं देना है।
0: डॉक्टर राधिका जी, कुछ ऐसी बातें जो हमारी चर्चा में छूट गई हों और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए जानना बहुत

0: जरूरी हो।
1: कि स्तनपान कराने से ओवरी के कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का प्रिवेंशन होता है, टाइप 2 डायबिटीज का प्रिवेंशन होता है, और माँ की भी बॉडी को इमोशनली बहुत अच्छा फील होता है, आपके बच्चे से आपका कनेक्ट बनता है, और आप बच्चे को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप उसे संपूर्ण बनाते हैं। बिल्कुल
0: डॉक्टर राधिका रतूड़ी जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और श्रोताओं को स्तनपान माँ और बच्चे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है विषय पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में डॉक्टर राधिका रतूड़ी से रमेश चंद्रा की बातचीत। बातचीत का विषय था स्तनपान माँ और बच्चे के लिए जरूरी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
3: शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, शर्मा

चौदहवीं का चांद फिल्म में अभी आप आशा भोसले और शमशाद बेगम को सुन रहे थे। बोल थे शकील बदायूनी के और संगीत था रवि का। आइए अब सुनते हैं मुगले आजम फिल्म का गीत, शकील बदायूनी की शब्द रचना और नौशाद का संगीत। आवाज लता मंगेशकर के साथ हैं शमशाद बेगम।

फिल्म संगीत का समापन गीत साहेब बीवी और गुलाम फिल्म से आशा भोसले और साथियों की आवाज में, हेमंत कुमार का संगीत और शकील बदायूनी के बोल

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आपसे फिल्म संगीत के साथ पुनः मिलेंगे रात्रि 9:30 पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में आप समाचार आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
2: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
3: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बहारा चारियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीज का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग

0: संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
1: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
2: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
3: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
4: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
5: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
4: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
6: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
0: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार

0: आज कहा कि ब्रिक्स वे बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वे बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
2: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर चार मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को पीओजेके में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक

है, आज फूल भी निखरे निखरे हैं, आज उनमें भी तेरा अक्स है। आज बादल काले घने हैं, आज चांद पर लाखों पहरे हैं, तेरी यादों के कुछ टुकड़े बड़ी देर से दिल में ठहरे हैं। आज हल्की हल्की बारिश है, सर्द हवा का रक्स भी है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं और कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सबके लिए।

आंगन की कली फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर और भूपेंद्र को सुन रहे थे। शैलेंद्र के बोल थे और पप्पी लहरी का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत खानदान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और रवि का संगीत। कुछ अनकही खामोश बातें भी सुनी जानी चाहिए, कुछ अनकही खामोश बातें भी सुनी जानी चाहिए। सुनो ना, अगर तुम्हें चाहने की कोई हद है तो समझो हमने पार कर ली।

किसी रात जागो तुम भी हमारी यादों में, किसी रात जागो तुम भी हमारी यादों में, समझ लेंगे इश्क हमारा भी मुकम्मल हो गया। कार्यक्रम का ये गीत दिल एक मंदिर फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

रचना सजना ओ सजना।

अभिनेत्री फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं अभिमान फिल्म का गीत। मसरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं और एसडी बर्मन का संगीत और आवाज लता मंगेशकर की। मैं तुम्हें चुनूं या तुम मुझे चुनूं, बात एक ही है। मैं तुम्हें सुनूं या तुम मुझे सुनूं, बात एक ही है। तुम मेरे ख्वाब बुनो या मैं तुम्हारे ख्वाब बुनूं, बात एक ही है।

अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आ रही है। ये है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और स्वाति खर्चे। इनके साथ हैं परी खर्चे। इसी गीत को सुनना चाहते हैं स्वाति, प्रयाग और चौधरी। कार्यक्रम का ये अगला गीत हमने लिया है हमारे इन सब श्रोताओं की पसंद पर। यह है रमेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, एस के पप्पी, एमएलबी रोड ग्वालियर से। ये श्रोता है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। ये फरमाइश आ रही है हमारे श्रोता है सुनील पाठक, कमल पाठक, दिव्या मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव अनारकली बाजार जलगांव पंजाब से हमें फरमाइश कर रहे हैं। ये हमारे श्रोता है वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, द्रिवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है। ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार। ये अगली फरमाइश है पिते खालसा नई बस्ती अमरोहा से बारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासिन अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। कार्यक्रम की ये फरमाइश है झारखंड से। ये हैं अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली निशा और इनके सभी साथी। इसी गीत को खेल बाजार पानीपत से सुनना चाहते हैं नरेश मल्होत्रा नीटू, भावना मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, नानू का लाडला, भाविक सिक्का। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत आप सबके लिए। यह है फिल्म जहां आरा। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने।

इसी गीत को सुन रहे हैं वारसी क्लब सिंघोली मीरगंज बरेली से जिशान वारशे, इमरान शेख, रेहान शेख और सदाबहार रेडियो क्लब करूला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और सोएब खान।

श्रोताओ, कार्यक्रम की ये फरमाइश हमारे पास आ रही है, ये है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर। कार्यक्रम की ये फरमाइश अगली हमारे पास आ रही है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से, ये हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मेन बाजार। ये हैं हमारे श्रोता, कुछ श्रोता हमारे बार बार मैसेज करते हैं, अगर आपका एक बार नाम आ गया तो प्लीज़ आप ऐसा करा करें कि दूसरे श्रोताओं को भी मौका दीजिए, इससे हमारे लिए भी आसानी होती है गानों को सुनाने की और हमारे श्रोता भी हमसे नाराज़ नहीं होते। ये अगली फरमाइश है सनावत से, शेख मूसा मोहसिन।

में अशोक वर्मा और राजकुमार बुडाना की। ये हमारे श्रोता हैं कमल मजनू का टीला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। ये हमारे श्रोता हमें फरमाइश कर रहे हैं, ये हैं सांगरी जिला जत शहर से, ये हैं अल्ताफ हुजरे, शेफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख। कार्यक्रम की ये फरमाइश है अनिल उषा बुराड़े, धनुश्री बुराड़े और साथ में है पांडव कड़वा, जिला यवतमाल से हमारे यश होता है। कार्यक्रम की ये फरमाइश उत्तम नगर दिल्ली से भेजी है कमला रानी, गीता खोरवाल और बोधराज खोरवाल ने। ये अगली फरमाइश है गणेशपुर गंज डुडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख समा परवीन, शायमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से महबूब बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और बेबी अलशिफा अंसारी। कार्यक्रम की ये फरमाइश है दिग्दर्शन और कविता गौड़ की मेरठ कैंट से। हमारे ये श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये फरमाइश भेज रहे हैं। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश आ रही है यशमीत यीशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह की। ये अगली फरमाइश है नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओम कुमार गायकवाड़ की, साथ में इनके हैं साई गायकवाड़। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत हमने लिया है याराना फिल्म से, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने।

इसी गीत को झारखंड सुपाही साही गांव से सुन रहे हैं देवेंद्र ताती, प्रकाश निशा, कुमारी रेशमा, कुमारी दीपाली, कुमारी देवेन जी और साथ में हैं देवेन जी।

श्रोताओ, कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है शेरवानी स्कूल गंजटू द्वारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैब, अनवर मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी की। हमारे अगले श्रोता हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा की। ये हमारे श्रोता हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोट के, रोहदास चौक, पंढरपुर सिटी से। कार्यक्रम के ये हमारे श्रोता हैं चौटाला हरियाणा से दारा सिंह, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। कार्यक्रम में ये गीत को सुनना चाहते हैं मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूपी भारती, एकता भारती और दिव्या भारती। इसी गीत को टैगोर गार्डन नई दिल्ली से सुनना चाहते हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। ये अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है, ये है लक्सर रोड ग्राम सुवाहेड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद साहिब, कहकशां और इनका पूरा परिवार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश राकेश और ऋषिता, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से ये श्रोता हैं। इसी गीत को सुनना चाहते हैं खालापार मुजफ्फरनगर से साहिबा प्रवीण और फातिमा, साथ में है खुशबू, आयजा, मोहम्मद अदीब और मसरूर अली। कार्यक्रम की ये फरमाइश चंडीगढ़ से है शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा की। और इनके परिवार के कुछ और सदस्य हैं हर्ष, विनय, विनीत और रोजस। ये फरमाइश हमें भेज रहे हैं, ये है कस्बा उगेती बदायूं उत्तर प्रदेश से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता और कार्तिक गुप्ता, साथ में है निर्भया गुप्ता। ये अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है, ये हमारे श्रोता हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा, इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा है। तो आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत पाकिजा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। इसी गीत को लाल कुर्ती रुड़की कैंट से सुन रहे राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश आ रही है एकता कॉलोनी चिलकाना से अरहम अंसारी आरिफ अंसारी और अतीक अंसारी की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नलेश्वर नगर नरबरे महाराष्ट्र से पी एस नुहानकर निर्मला नुहानकर और विशाल नुहानकर मलकापुर महाराष्ट्र से हैं नारायण इंगले सोपान ताइड़े आशीष मुहेरकर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं राही नगर गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही शाहीन फातिमा अनु खान अदनान खान फैजान खान उस्मान अंसारी कलीम अंसारी। ये अगली फरमाइश है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज खोरवाल भानु प्रकाश की। ये अगली फरमाइश एम खलील कुरेशी नुसरत बेगम एजाज कुरेशी बेबी अरिबा हबीबा की है पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। चक्राता रोड देहरादून ईदगाह मोहल्ला से हैं सुनील चावला मीना चावला साक्षी चावला दिनेश चोपड़ा तनु नानू राधिका रानी अंशुल गुप्ता स्मिता रानी दीक्षा चावला कृतिका कविता आर एस आहूजा रजत आहूजा सोनिया आहूजा तनीषा सीमा द्वार से साथ में हैं इनके। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे कुछ और श्रोता ये हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी जिंदल पप्पू मह खुशदिल सुनीता रानी जिंदल आरजू पप्पू खुशदिल हंसमुख लाल जिंदल बुलबुल शक्ति खुशदिल संजीव बंटी जिंदल। इसी गीत के लिए फरमाइश आ रही है ये हमारे श्रोता है कस्बा अग्रवाल मंडी टिटरी बागपत उत्तर प्रदेश से आरिफ अली खान मोमिना नाज मुस्काम आरिफ सादिक अली खान सारिक अली खान। ये श्रोता हैं हमारे कुशेश्वर कांति गुप्ता राजनगर मधुबनी बिहार से और इनके परिवार के सदस्य हैं रुद्रा भाई रुद्रा रिद्धि सिद्धि गुप्ता ऐशबाग लखनऊ से हैं रानी मुकेश गुप्ता रश्मि गुप्ता नीलम गुप्ता कुसुम गुप्ता और रूपा इलाहाबादी। ये हमारे श्रोता हैं शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी कलीम बाकी अलीम बाकी अजीम अदीम अब्दुल गनी अलमीर मोहम्मद जैन जन्नत और विष्णु अग्रवाल। ये हमारे श्रोता हमें कुछ और मैसेज कर रहे हैं ये हैं किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान सहीबा जुबैर अंजुम खान। हमारे कुछ और श्रोता हैं ये हैं रानीगंज तिलक नगर नई दिल्ली से आर एस स्वीटी और रानीगंज बंगाल से आर के शुक्ला। आप सबकी फरमाइश पर सत्ते पे सत्ता फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

कार्यक्रम की ये फरमाइश टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप की है। कालका से हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। ये हमें फरमाइश भेजी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं संघ मित्र श्रोता संघ वार्ड नंबर पुफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। इसी गीत के लिए फरमाइश भेज रहे हैं विशाखा और कमल मुरादाबाद से। ये अगले श्रोता हैं, ये हैं ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और आलोकिक चंसोलिया। वर्ली मुंबई से हैं नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अली अजीम खान। ये श्रोता हैं जमशेदपुर झारखंड से कुमारी प्राची ठाकुर, मोना ठाकुर, देविका ठाकुर, बसंत कुमार ठाकुर, सरोजबाई ठाकुर, इमराज पप्पू ठाकुर। ग्राम भिरई नारपाड़ा बालोद से कुमारी प्राची और इनका पूरा परिवार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एस एम अलम सेफी, जेबुनिसा बेगम, सद्दाम सेफी, सोनी सेफी, जाहिद सेफी और आदाब खान। ये अगले श्रोता हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरान फारिया, ताहिरा कस्बा गुन्नौर यूपी से।

हमें मैसेज कर रहे हैं। ऊपरकोट बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार। ये अगले श्रोता है संभलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा और प्रहलाद राजेंद्र वर्मा। ये अगले श्रोता है ए एच रही, गुड़िया बेगम, वकीत प्रेमी, हम्माद जमील, तहसील रोड गंज टुडवारा से फरमाइश भेज रहे हैं। मेन रोड तेलहारा से हैं प्रकाश पोहारकर, नर्मदा पोहारकर और कुमारी सुजाता पोहारकर। ये श्रोता है नूर नगर गंज टुडवारा से उज्मा शेख, शिफा शेख और रिफा शेख। कार्यक्रम में ये फरमाइश नर्मदा पाल मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल और इनके पूरे परिवारजन। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: मैसेज भेज रहे हैं हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्नी बुर्ज पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनम और आशीष विश्वकर्मा इसी गीत को सुनना चाहते हैं आशा नारंग सोनाली और सुरेश नारंग सहारनपुर से। कार्यक्रम की ये फरमाइश है राजेश खन्ना चन्ना पासी सुनीता राज भानु राज अमित खन्ना उनकी अम्मी और प्यारा बिल्लू ये है तेलंगाना से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं राजेश सामले पाटिल राजेंद्र राजदीप राजेश राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश छत्रपति संभाजी नगर से। कार्यक्रम की ये फरमाइश है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा की। हमारे ये श्रोता हैं ये हैं गांव फांसी हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। कार्यक्रम के ये श्रोता कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतो निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता। ये अगली फरमाइश है डॉक्टर रमेश कुमार जांजोरिया गीता रानी जांजोरिया गगनदीप जांजोरिया आरजू जांजोरिया पटेल नगर मलोट से हमारे श्रोता हैं और इनके साथ हैं इनका गुड्डू। इसी गीत को सुनना चाहते हैं तुलसी मस्कीन बीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मस्कीन मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना रचिता खुराना केशु और रिधान खुराना। अगले श्रोता हमारे हैं बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर रजवाना परवीन अब्दुल्ला आजाद अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी राजिया बेगम अंसारी मोहम्मद सादिक अंसारी। कार्यक्रम की ये फरमाइश रिंगनी छत्तीसगढ़ से है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की। कस्बा चिलकाना से जारिफ अंसारी नईम अंसारी डॉक्टर आमिर अंसारी दानिश राजा मुन्ना नाजिम अंसारी। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा फरमाइश कर रहे हैं। कृष्णा की नगरी मथुरा से हैं शबा अंसारी शकील अंसारी हिना अंसारी बुशरा अंसारी गुलिस्ता रानी नंदिनी और अंजलि। ये फरमाइश है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा पूनम गंगनेजा विशाल प्रिया दिशानी निमिता होजा की। ये फरमाइश हमारे श्रोता कर रहे हैं ये हमारे श्रोता हैं जो हमें फरमाइश कर रहे हैं झीलों के नगरी उदयपुर से रमेश नाचानी विनीत नाचानी मिथिल नाचानी और प्रगति नाचानी। आप सबके लिए कार्यक्रम का ये गीत 20 साल बाद फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज़ में।
1: जरा नजरों से कह दो जी

कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है परी महल कासगंज से आदाब खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलफ सेफी और मास्टर जाहिद अली की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम डाकघर निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और इनका पूरा परिवार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा। ये अगली फरमाइश है दीप रोड लिसनर्स क्लब लेह गांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े, दीपक कुरहाड़े की। ये श्रोता है बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ये हमारे श्रोता है ग्राम खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा। ये श्रोता है छोटा पूरन, पार्वती, बाला प्रसाद, सूरज बाली और भानुराज, ये हैं तेलंगाना से। मोहम्मद आमिर अंसारी, समीम अंसारी, नसरीन अंसारी, शमा अंसारी, माहिनूर अंसारी ग्राम करेली जिला बरेली से हमें फरमाइश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हैं मोहम्मद इशराक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, निरोफर फातिमा, आशा नारंग, सोनाली नारंग और सुरेश नारंग है सहारनपुर से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमी, तीशो, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह। कार्यक्रम में कुछ और फरमाइशें जिन्हें हम शामिल कर लेते हैं, ये हैं हमारे श्रोता। कई श्रोता हमारे ऐसे हैं ना जो बार बार मैसेज करते हैं, ये हैं देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से परवेश शेख, याकूब शेख और इनका पूरा परिवार। आप सबकी फरमाइश पर शोर फिल्म का ये गीत जिसे आवाज़ दी है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

कार्यक्रम में ये फरमाइश बस स्टैंड छतरपुर बुंदेलखंड से आई है। ये हमारे श्रोता हैं बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, बड़े भैया हरे राम, बड़े भैया दशरथ, काजल, करण, अनुष्का, मोहिनी, गोलू, नीरज और समस्त बुंदेलखंड निवासी इस मैसेज को कर रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं नाच पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमानाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी। ये अगली फरमाइश है श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित वायाल मुताला से हैं, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख करार सिरोर से हैं, कुमारी सर्वत, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी हर्षिता देशमुख और इनका समस्त राजे जाधव परिवार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता। ये हैं ये कुछ श्रोता हमारे ऐसे ना कि अपना नाम लिखना भूल जाते हैं, ये लिख रहे हैं कि हम उत्तराखंड से हैं, कोई भी गाना हमें सुना दीजिए। ऐसे ही एक फरमाइश भेज रहे हैं हमारे श्रोता हैं तेलंगाना स्टेट करीमनगर से लक्ष्मी नारायण, विजया, अभिनय, साई किरण। ये अगली फरमाइश है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण

सोनी पूजा पायल और जगदीश चोरी की। ये श्रोता हैं बगड़ बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता। ये हैं गांव जाखौत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। इसी गीत के लिए फरमाइश भेज रहे हैं सिविल लाइन रामपुर से सुनील कुमार सक्सेना और मयंक, साथ में हैं नक्श। आप सबकी फरमाइश पर गुलामी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और सबीर कुमार की आवाज़ में।

इसी गीत को सुन रहे थे मदरसा गेट भावपुर मड़िया हुजौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद, अजरा तबस्सुम। रायपुर अनेरिया जिला बनारस से सुन रहे थे मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन। हमारे कुछ और श्रोता थे दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से, इस गीत को सुन रहे थे बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शो, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता और पिरहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया टूसी, आयुषी अनुरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शो, जयप्रकाश शो, बसंत लाल शाओ, हीरा मोती, पन्ना लाल शाओ। इसी गीत को सुन रहे थे हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और पूरा ही रामेकर परिवार रहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। ये श्रोता थे बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। कुछ और श्रोता थे रहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से श्याम किटे, वंदना किटे और कार्तिक किटे। इसी फरमाइश के साथ श्रोताओं आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, अब कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी।

0: असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोबरधन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 करोड़ रुपीस टू द national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across